FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 की वैशाख माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 35 सेकंड हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड आल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के

0: फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिज़ुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। नीचे प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हम शून्य हैं, शक्ति हो तुम। हम परेशान हैं, अभिव्यक्ति हो तुम। हम भटके हुए एक राही हैं, और हमारी मंजिल और हमारी भक्ति हो तुम।

प्रभु की वंदना से जाग उठी है हमारे मन की हर एक उमंग। आइए डूबते हैं उस भक्ति की पवित्र रंग में, स्वर और प्रेम के संगम के साथ प्रभु के दरबार में एक नई शुरुआत करते हैं।

संगीत का हर सुर तेरे चरणों की धूल है, हमारी हर प्रार्थना तुझे स्वीकारा हुआ एक फूल है। हमें ना ले की समझ है, ना ही किसी ताल का ज्ञान है, बस तेरे नाम की लगन ही हमारी पहचान है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए रामचरित मानस गान, स्वर दिया है महेंद्र कपूर ने और संगीत है सतीश भाटिया का।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्यावासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, स्वर दिया था महेंद्र कपूर ने और संगीत था सतीश भाटिया का। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आज के पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, यानी कि 17 मई सन 2026। साथियों, अब हम आपको बता देते हैं हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम का समय रहेगा रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल पुकारे अब सुन पाएंगे प्रातः 7:10 पर। बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा प्रस्तुत होगा सुबह 10:30 पर।

जय जवान ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:30 पर। 7:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता।

युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत होगा शाम 5:30 पर। कार्यक्रम स्वरांजलि का समय रहेगा सुबह 9:30 पर।

0: अन्नदाता ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 6:23 पर। श्रोताओं, ये थी हमारी आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, अब सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रही थी देश कान FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। उसके बाद 7 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार, और फिर 7:05 पर आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। पञ्चदेशानां यात्रायाः द्वितीये दिने ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीदरलैण्ड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह अनेकेषु कार्यक्रमेषु सहभागम् अकरोत्। अत्र सामुदायिक सम्पर्कः, डच राजपरिवारेण सह मेलनं च अन्यतमे आस्ताम्। हेगनगरे भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी प्रवर्तमानं दशकम् आपद्दशकत्वेन वर्णितवान्, यद्धि बहुविधैः संकटैः ग्रस्तमस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैण्ड्स देशौ वैश्विक समाह्वानानि सम्मुखीकर्तुं विश्वस्तायाः, पारदर्शिन्याः च भविष्यापूर्ति व्यवस्थायाः निर्माणार्थं सम्भूय कार्यरतौ स्तः। सः अवदत् यत् विश्वं सर्वादौ कोविड 19 महामारीं तदनन्तरं च युद्धं सम्मुखीकृतवत्। साम्प्रतम् एतत् ऊर्जा संकट समं विकट समाह्वानं सम्मुखीकरोति। सः सावहितम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या यदि निराकरणं न भवति चेत् वैश्विक विकासलाभः प्रपादितः भविष्यति, जनसंख्यायाः विशालः भागः च निर्धनताग्रस्तः भविष्यति। आर्थिकस्थितिव्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विकान् प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत नीदरलैण्ड्स देशो संयुक्तरूपेण सुदृढापूर्तिश्रृङ्खलायाः निर्माणाय कटिबद्धौ स्तः। ध्यानास्पदमस्ति यत् एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बद्धेभ्यः अधिका महत्वपूर्णा वर्तत। नीदरलैण्ड्स देशस्य यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य स्वयात्रायाः तृतीय चरणे स्वीडन देशस्य यात्रां करिष्यति। सः अद्य गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एकदिवसीया यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिक-2000-तमाब्दीयायाः राष्ट्रियशिक्षानीतेः 23-अधिक-2000-तमाब्दीयस्य राष्ट्रियविद्यालयशिक्षापाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीयमूलकं भवेत्। भारतीयर्थविभागेन अद्य अण्डमान निकोबारद्वीपसमूहाय, पश्चिमबङ्गाले हिमालयस्य अधोवर्तिक्षेत्रेभ्यः, सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारङ्गवार्णकी सञ्चेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीये निर्णायक द्वन्द्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम्, अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये गीत आप सभी सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था नया दौर। लीजिए अब सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को फिल्म देवता से।

ये गीत आप सभी सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम था धूल का फूल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार को फिल्म जमीर से।

ये गीत आप सभी सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था हमराज। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म मधुमती से।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल पुकारे FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार हैं राजबीर, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी लोक संगीत का कार्यक्रम बाजियाई नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार थे राजबीर। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से सबसे पहले आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद 8:15 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य

0: में बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
8: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई। कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
10: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
9: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
0: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
9: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson, to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission, Ursula von der Leyen. This engagement represents the third leg of the Prime Minister's broader European tour and his first visit to the continent since the landmark India-European Union Free Trade Agreement, FTA, took effect in January 2026. The visit follows a high growth trajectory in economic engagement, with bilateral trade reaching a record $7.75 billion in 2025 and Swedish FDI into India totaling $2.8 billion between 2000 and 2025. More from our correspondent.
2: Sweden, one of the world's most innovative economies, finds a natural synergy with India's digital talent pool. Currently, over 280 Swedish companies operate in India, while 75 Indian firms have established themselves in Sweden. A unique highlight of the visit is the joint address by the Prime Minister to the European Roundtable for Industry alongside the European Commission President. Defense and security cooperations have evolved into a central pillar moving towards industrial integration. This relationship is anchored in a 2009 Defense Cooperative Agreement and 2019 General Security Agreement. Industrial trust is exemplified by Swedish major establishing a fully owned production facility in Haryana under Make in India. It may be noted that such investment drive local employment and capacity building. Collaboration in artificial intelligence and emerging technologies provide the bedrock of this partnership. Future cooperation prioritizes AI, digital and the Internet of Things. Furthermore, the two nations are collaborating on space exploration, with the Swedish Institute of Space Physics providing instruments for ISRO's Venus Orbiter mission. The green energy transition is central to the bilateral agenda. A standout success is the LEED IT initiative launched in 2019 to guide the heavy industries towards a low-carbon economy. It may be noted that at COP28, the two prime ministers launched LEED IT 2.0, emphasizing technology transfer and the industry transition platform to mobilize technical support. Sakshi Singh, Akashwani News, Gothenburg, Sweden.
9: India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. This deep-rooted bond is marked by historic milestones such as the centenary of Nobel laureate Rabindranath Tagore's 1926 visit to Sweden. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashwani, Indian Ambassador to Sweden Anurag Bhushan emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations.
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense, but this relationship has now outgrown from a buyer-seller relationship to more of defense partners. And both countries, companies, each other, India and Sweden, they are looking to co-develop and co-produce equipment. They have been galvanized by Honorable Prime Minister's initiatives such as Atmanirbhar Bharat, Make in India, and also infrastructure development that has happened.
9: Within days of levying high customs duties on precious metals, the government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. The government on Wednesday had hiked import duty on precious metals from 6% to 15%. The goods under restricted category needs government license for imports. The Delhi government has taken a significant decision to reduce the value-added tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. The Chief Minister informed that the concessional rate will initially remain in force for a period of 6 months. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Archaeological Survey of India, ASI, has granted the Hindus an unrestricted access to the monument at Bhotshala complex in Dhar district of Madhya Pradesh for worship and other purposes. The ASI's decision came a day after the Madhya Pradesh High Court ruled that Bhotshala in Dhar was a temple of goddess Saraswati. More from our correspondent.
11: Quoting the ASI's order, an official said that Bhotshala was a center of learning and research on Sanskrit language, grammar and literature besides being a temple. The official further said that the Hindu community shall have an unrestricted access to the complex in connection with the ancient practice of learning and worship of goddess Saraswati. Earlier on Friday, the Madhya Pradesh High Court declared that the Bhotshala complex in Dhar district is a temple dedicated to goddess Saraswati, and the center and ASI can decide on its administration and management. The High Court's Indore bench also quashed the April 7, 2003 order of the Archaeological Survey of India that allowed Muslims to offer namaz inside the Bhotshala complex every Friday. The bench, which was hearing the case, also said that Muslim community, which called the 11th century ASI protected monument Kamal Mola Mosque, may approach the state government for allotment of separate land in the district for construction of a mosque. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
9: Central Bureau of Investigation has arrested another key accused from Pune in connection with the NEET paper leak case. The accused, Professor Manisha Mandhare, is a botany teacher at a college in Pune. According to the CBI, National Testing Agency had appointed her as an expert in the examination process. Earlier on 14th of May, another accused, Manisha Vaghmare, was also arrested from Pune. Both the accused were produced before a Pune court yesterday and later taken to Delhi for further investigation. The Arjikar Medical College rape and murder case will be heard by the division bench of Justice Shompa Shorkar and Justice Tirthankar Ghosh of the Calcutta High Court. Earlier this week, Justice Rajshekar Mantha and Justice Rai Chattopadhyay recused themselves from the case, citing heavy roster. Sanjay Roy, the lone convicted in this case, was sentenced to life imprisonment in January 2025. The India Meteorological Department, IMD, said that the southwest monsoon has advanced into some parts of Arabian Sea, Bay of Bengal, many parts of Andaman Sea and Andaman Islands, and entire Nicobar Islands. According to the IMD, southwest monsoon is likely to set in over Kerala on the 26th of this month. In badminton, Indian pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Indonesian duo Leo Roli Karnantko and Daniel Martin in the men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. This will be the Indian pair's first final of the season and their third final appearance at the tournament, having won the title in 2019 and 2024. Earlier, the Indian duo stormed into the men's doubles final after defeating Malaysia's Goh Si Fei and Nurizuddin in a thrilling semi-final clash by 19-21, 22-20, 21-16. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
12: Thank you, Sunil. Pune botany professor held for NEET leak was NTA's subject expert, is the top headline in the Indian Express. She is the second member of the National Testing Agency's paper-setting committee who allegedly disclosed botany and zoology questions at coaching classes she conducted at her Pune residence, writes the Hindustan Times. The Asian Age reports that the Narcotics Control Bureau has seized the first ever consignment of Captagon, also known as jihadi drug, worth 182 crore rupees on way to the Middle East. In its editorial piece titled Plugging Leaks, the Statesman argues that recurring examination paper leaks in India are not merely policing failures but signs of a deeply outdated and fragile exam system. It says the answer lies not in harsher punishment alone but in the thorough redesign using secure, adaptive and carefully tested technological systems alongside stronger institutional transparency and accountability. The editorial warns that unless India reforms how competitive exams are conceived and administered, public trust in merit itself will continue to erode. Dailies have prominently reported the decision of

0: Bajrang Kiredi and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

साथियों, वैसे तो हमारी सुबह बिना गरम गरम अदरक वाली चाय से शुरू नहीं होती, पर इस गर्मी ने अब मजबूर कर दिया है कि चाय की जगह पर हम अब ठंडी ठंडी लस्सी या छाछ का गिलास हाथ में ले लें। इसी के साथ स्वागत है आपका मई के इस महीने में चमकती और थोड़ी सी गर्म सुबह में, और आज मैं हूँ कीर्ति, आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी के साथ।

श्रोताओं, अब हम आपसे पूछ लेते हैं हमारे आज का प्रश्न। आज हमें आपको आपने हमें ये बताना है कि संघ बजट सन 2026-27 में महिला उद्यमों के लिए घोषित नए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। आज आपको हमें बताना है कि संघ बजट सन 2026-27 में महिला उद्यमों के लिए घोषित किए गए एक नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। आपको हमें उस नए प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जो महिला उद्यमों के लिए घोषित किया गया था। साथियों, आपको इस प्रश्न का उत्तर केवल 8:45 तक ही देना है। हमारा फ़ोन नंबर है 9466021336। इस नंबर पर SMS के ज़रिए आप हमें इस प्रश्न का सही उत्तर भेज सकते हैं।

साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज के दिन आपका इंटरनेट बंद हो जाए या फोन काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? शायद जिंदगी ही थम सी जाएगी, क्योंकि आज है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। साथियों, ये दिन मनाया जाता है सन 1865 में बने इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की याद में। इसका मकसद है लोगों को ये बताना कि कैसे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट हमारी दूरियों को खत्म कर रहा है। सन 2026 में हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्चुअल रियलिटी में मिल रहे हैं और 6G की दहलीज पर खड़े हैं। आज गांव का एक किसान हो या शहर का एक स्टूडेंट, सब एक क्लिक से दुनिया से जुड़े हुए हैं। सन 2026 का यही फोकस है सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मकसद है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और दुनिया का हर एक कोने तक पहुंच जाए। आज हम AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर में हैं, जहां डाटा ही हमारा सब कुछ है। डाटा सेव करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसका मुख्य आयोजक है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। हालांकि हर साल थीम बदलती रहती है, लेकिन यदि हम इस साल की बात करें तो इस साल में यही फोकस रहेगा AI फॉर ऑल, यानी कि ग्रीन डिजिटल फ्यूचर, जिससे हर कोई इंटरनेट से जुड़ा रहे।

साथियों, जहां 5G ने हमें स्पीड दी, वहीं 6G अब इंस्टेंट कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। सन 2026 में हम ऐसे दौर में हैं जहां इंटरनेट की स्पीड 100 गुना तक बढ़ गई है, जिसके कारण होलोग्राफिक कम्युनिकेशन अब सपना नहीं रहा है। और अब तो इंटरनेट के साथ साथ AI का बोलबाला है। अब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT तक नहीं रह गई है, बल्कि अब प्रोसेसिंग आपके फ़ोन के अंदर ही होती है, क्लाउड पर भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे प्राइवेसी भी बढ़ती है और आपका जो काम है वो भी बहुत जल्दी से हो जाता है। यहाँ तक कि रेडियो स्टेशन पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लिसनर्स की पसंद के गाने और न्यूज़ रियल टाइम में मॉडिफाई किए जा रहे हैं। अब पहाड़ हो या रेगिस्तान, हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद है। स्टारलिंक और वन वेब जैसे प्रोजेक्ट्स ने भारत के दूर दराज गाँव में भी फाइबर लाइक स्पीड पहुंचा दी है, जिसके वजह से अब नो सिग्नल जो बहाना था वो अब नहीं रहा है। हर बड़ी चीज़ के लिए डिजिटल ट्विन होता है। आज शहरों का ट्रैफिक मैनेजमेंट और बिजली की सप्लाई एक डिजिटल मैप पर रियल टाइम कंट्रोल होती है। एजुकेशन में बच्चे मेटावर्स के जरिए घर बैठे वर्चुअल क्लासरूम में जा रहे हैं। साथियों, सन 2026 में सबसे बड़ा बदलाव है एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, यानी कि अब ऐसे चिप्स और सर्वर्स बनाए जा रहे हैं कि हम कम बिजली खर्च कर सकें। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज अब नेट जीरो कार्बन इमिशन की तरफ बढ़ रही है। साथियों, कहते हैं ना कि पहले हम यही कहते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर इस दौर में तो दीवारों में सेंसर्स और इंटरनेट है। आज हमारे घर हमारी आवाज़ पर चलता है और हमारा फ़ोन हमारी सेहत का ख्याल भी रखता है। ये है नया भारत और एक नया डिजिटल समाज। इस विषय पर हम और भी चर्चा करेंगे। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक और गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, आज हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि संघ बजट सन 2026-27 में महिला उद्यमों के लिए घोषित किए गए उस नए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, और हमारे बहुत से श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है। इसका उत्तर है कि संघ बजट सन 2026-27 में महिला उद्यमों और स्वयं सहायता समूहों के लिए घोषित किए गए उस नए प्लेटफॉर्म का नाम है शीमार्ट, जिसका पूरा अर्थ है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। ये सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट हैं जो कि ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमों को सीधे बाजार और बेहतर ब्रांडिंग से जोड़ेंगे। यह पहल लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है, ताकि महिलाओं को सिर्फ ऋण आधारित आजीविका से निकाल कर उनके अपने उद्यमों का मालिक बनाया जा सके। और इस प्रश्न का सबसे पहले जो जवाब है वो हमारे पास आया है, आप हैं नाहन हिमाचल प्रदेश से योगी ठाकुर और हेमा ठाकुर, जिन्होंने हमारे इस प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब हमें भेजा है। इसके बाद हमारे पास नाम आया है योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अंबाला से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और गुरशब्द सिंह राहुल का। अगला नाम है साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति छत्तीसगढ़ से, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है दंत रेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा और पारस मणि वर्मा ने। इसके बाद हमारे पास नाम आया है धानवा सहारनपुर से, गुन्नू तनु चुन्नू मुन्नू हार्दिक भारद्वाज ने। अगला नाम है आकली दीवान मध्य प्रदेश से, भाई राम लाल चंद्रवंशी और श्रीमती कृष्णा, हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह ने, आप हैं पद्मा टॉकिस नेपा नगर से। अगला नाम है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान आशा सबीहा अनस और रिहान का। इसके बाद हमारे पास नाम आया है राजाजी नगर बेंगलोर से, NR प्रसाद और अखिला प्रसाद का। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है मामूल बाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान तायड़ी और विजय तायड़ी ने। अगला नाम है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन फीना और मेघा। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है गाँव कलकाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से, विक्रम सचिन योगेश और युद्धव ने। अगला नाम है शकरपुर तहसील बराड़ा अंबाला से, राजीव कुमार गोल्डी और विनोद। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र से, जगपाल हुडा सानिध्य और सुनेना ने। अगला नाम है आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर का, शेरवानी स्कूल गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है बीपी गौतम ने, सरिता गौतम एटा रोड उत्तर प्रदेश से। अगला नाम है चौहलादा बागपात से, संजय और नमन का। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है झारखंड से, उत्तम कुमार श्वेता कीसु तासु अर्नब और सत्यम आनंद ने। अगला नाम हमारे पास आया है रश्मि झरना भरत कुमार का, राजकोट गुजरात से। अगला नाम है ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से है, रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा का। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है कविता साहू प्रमोद कुमार साहू का, कद्दू आपड़ा जगत सिंहपुर ओडिशा से। अगला नाम है भाना ब्राह्मणा वाला नरवाना से, मेघराज शर्मा। अगला नाम है बेंगलोर से, जयश्री और सुनील का। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद साईद अली सैफी, मोहम्मद जोहान सैफी, लीबा मलिक और आबाद खान। अगला नाम है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, ध्वनि और सानवी। अगला नाम है गौतम का कुरुक्षेत्र से। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है छत्तीसगढ़ बोटसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू ने। अगला नाम हमारे पास आया है डेर पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी का। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है ग्राम पंचनोया जिला जालौन उत्तर

प्रदेश से सत्येंद्र कुमार का। अगला नाम है सरोज सैनी, राकेश सैनी, यादवेंद्र सैनी का, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है बिहार से डब्लू उल्ला, वली उल्ला और सोनम उल्ला। अगला नाम है दरियारपुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप और विश्वदीप। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें दिया है कुरुक्षेत्र से माखीराम सैनी और पूनम सैनी ने। अगला नाम है सब्जी मंडी जीन से सुरेश, किरण, लव्या, आरव और एसपी। अगला नाम है सरिता गौतम, बी प्रकाश, कुश गौतम, बिहार रामपुर से। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है गांव बांडी वाला फजिल का, पंजाब से ओम पटगरिया, क्रियांश और बेबी करीमा। अगला नाम हमारे पास आया है नरेश मल्होत्रा, नीटू, भावना, अनिल, खैल बाजार, पानीपत से। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी और निशांत ध्रुव ने, छत्तीसगढ़ से। अगला नाम है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम और निमित का। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा और अमित कुमार। अगला नाम है नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता और सोनल प्रसाद। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है संबलपुर कांकेर से फांगूराम यादव, ज्योति और ओजस्वी। अगला नाम है हमारे पास जो आया है वो है मोहम्मद यसीन अजनान, साइमा शरीफ नवाज, झारखंड से। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है हयात कॉलोनी बिहार से फैसल इमाम का। अगला नाम है रामनगर कैथल से सुनील दत्त, विनायक दत्त और आशा रानी। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है वाडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी और लवलिका। आप हैं रेलवे रोड गंगदूत गुरुद्वारा से हैं मोहम्मद कलीम, नजवा बेगम और फातिमा। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू जी ने। जमशेदपुर से हैं हरजिंद्र भाटिया, एंजल और सोनू भाटिया। आप हैं मदनपुर छत्तीसगढ़ से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल। अगला नाम हमारे पास आया है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से बलिया से उषा राय, ओम प्रकाश और हैप्पी राय। आप हैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय, अंजनी रानी, रवि और शिल्पा गर्ग। अगला नाम हमारे पास आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता और सुभाष योगी ने। आप हैं कृष्ण कुमार गुप्ता, भट्टीपड़ा, उत्तर प्रदेश से। अगला नाम हमारे पास आया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ, अर्चनाताई, हिरमन और प्रणय। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी और नौशाद सलमानी जी का। आप हैं छत्तीसगढ़ बलोदा से दिलहरन गौतम, अंजलि आनंद और समृद्धि पटेल। अगला नाम हमारे पास आया है यमतमाल से सिंधेश्वर नगर पंजाब, रामटेके, योगेश धरा और श्रव्या। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, गीतिका भानो ने। आप हैं रेसन करनाल से रजनीश बत्रा, दीपक और इनाया बत्रा। अगला नाम हमारे पास आया है शास्त्री नगर बीट से किसान सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया विशाल। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है गांवथानी कुतुपुर जिला हांसी से रामधारी अवना, अनाया और ओजस ने। अगला नाम हमारे पास आया है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, बक्सर बिहार से राज एस डी अंसारी। आप हैं गांधी ग्राम गुजरात से प्रवीण,
अहमद भाई, जगदीश और लड्डू कुमारी। अगला नाम हमारे पास आया है राजकोट से, परवीन, जगदीश और हिरेन। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है किशोर की नगरी खांडवा से, डीपी सैनी और गौरव सैनी जी का। श्रोताओं, आप सभी का हमारे इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चार्ज कर अपना।
1: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
0: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
1: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
0: बुद्धू सुधर जा।
1: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
1: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: साथियों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस की। यदि हम डिजिटल इल्यूजन की बात करें तो इसका मतलब है कि इंटरनेट और डिजिटल सुरक्षा दुनिया का हर एक इंसान तक पहुंच सके, चाहे वो किसी भी गांव, शहर, उम्र या किसी भी स्थिति में हो। इसको समझना इतना ज़रूरी है कि सिर्फ इंटरनेट होना ही काफ़ी नहीं है, इंटरनेट का दाम इतना कम होना चाहिए कि एक आम मजदूर आदमी भी इसे अफोर्ड कर सके। लोगों के पास सही डिवाइस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के हाथ में महंगा फ़ोन दे दिया जाए पर उसे चलाना ना आए तो वो डिजिटल इंक्लूडेड नहीं है। उसे ऐप्स, डिजिटल पेमेंट और सुरक्षित ब्राउजिंग की जानकारी भी ज़रूरी होनी चाहिए। इंटरनेट पर सारी जानकारी सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी, कन्नड़ा, तमिल और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में भी होनी चाहिए ताकि उसे हर कोई समझ सके। साथियों, डिजिटल इल्यूजन से एक दूर दराज के गांव में बैठे बच्चा भी वही क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है जो बड़े शहर के बच्चे को मिलती है। AI ट्यूटर्स और वर्चुअल क्लासेस ने पढ़ाई के मौकों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। कई बार गांव में बड़े डॉक्टर्स नहीं होते हैं लेकिन डिजिटल इल्यूजन की वजह से ही रिमोट डायग्नोसिस और वीडियो कॉल के जरिए इलाज मुमकिन हो पा रहा है। इसके साथ ही आजकल राशन कार्ड, पेंशन और किसान सम्मान निधि जैसे फायदे डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में आते हैं। जो लोग डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं उन्हें दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते और इससे भ्रष्टाचार भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। डिजिटल इल्यूजन ने घर बैठे महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खोल दिए हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, रीसेलिंग हो या फिर डिजिटल मार्केट हो। दोस्तों, तारीख वही है जो सबको साथ लेकर चले। अगर इंटरनेट सिर्फ शहरों तक मौजूद रहेगा तो वो डिजिटल इंडिया नहीं बल्कि डिजिटल सिटी बन जाएगा। डिजिटल इल्यूजन का मतलब यही है कि हर हाथ में स्मार्टफोन हो और हर दिल में ज्ञान हो। इसके साथ ही डिजिटल इल्यूजन की बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं, जैसे कि नए लोगों को डिजिटल फ्रॉड से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में अब भी नेटवर्क टावर्स की कमी है। आज भी कई घरों में महिलाओं के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है। इसके साथ ही यदि हम कल तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें डिजिटल के साथ, डिजिटल दुनिया के साथ ज़रूर जुड़ना होगा। कई बार हमारे आसपास के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्मार्टफोन तो है पर उन्हें ऑनलाइन टिकट बुक करना नहीं आता या डिजिटल पेमेंट करना तक नहीं आता। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या हमारी, अगर हम उनकी मदद करें तो हम उन्हें ये सब सिखा सकते हैं। तो श्रोताओं, सिर्फ 5 मिनट निकालिए, उन्हें एक नई ऐप चलाना सिखाएं, उन्हें साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके बताएं, क्योंकि जब तक हर एक इंसान डिजिटल दुनिया से नहीं जुड़ेगा तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती है। इसके साथ ही श्रोताओं, हम आज के दिन एक वादा करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जोड़ने के लिए करेंगे, नफरत फैलाने के लिए नहीं। गलत जो जानकारी है वो हम नहीं फैलाएंगे, दूसरों को भी जागरूक रखेंगे और हम भी जागरूक रहेंगे।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: साथियों, आज है 17 मई और आज के दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद है लोगों को हाइपरटेंशन के खतरों के प्रति जागरूक करना। इसे साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्सर इसका कोई साफ लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये दिल का दौरा और स्ट्रोक का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके साथ ही सन 2026 का थीम भी यही है कि डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। साथियों, क्या आपको पता है कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दबे पाव आता है और हमारे शरीर के सबसे प्यारे हिस्से यानी कि हमारे दिल पर चोट कर देता है। आज किसी सभी की एक भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना इंटरनेट स्पीड, अपना करियर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट, सब कुछ। लेकिन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है हमारा बीपी, जिसे कंट्रोल में करना बेहद ही ज़रूरी है। साथियों, हाई ब्लड प्रेशर को बेहतर समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब हमारा दिल खून को पंप करता है तो खून की जो नसें हैं वो दीवारों पर एक दबाव यानी कि प्रेशर बनाती हैं। अगर ये दबाव लगातार ज़्यादा रहे तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक यानी कि ऊपर का नंबर, जब दिल धड़कता है और खून पंप करता है। डायस्टोलिक यानी कि नीचे का नंबर, जो कि 80 तक होना चाहिए, और ऊपर का नंबर यानी कि सिस्टोलिक 120 mmHg तक होना चाहिए। नीचे का नंबर जब धड़कनों को के जो बीच में दिल आराम करता है उसे कहा जाता है। साथियों, जो हाई बीपी होता है वो दो तरह का होता है। एक है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसका कोई एक साफ कारण नहीं होता, ये उम्र और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से धीरे धीरे बढ़ता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये किसी बीमारी की वजह से यानी कि किडनी की बीमारी, थायराइड की बीमारी या किसी और दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट से हमारे शरीर में आ जाता है। और जो आम वजह है, जो हमारे लाइफस्टाइल से आती हैं जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है, वो है सोडियम यानी कि नमक का ज़्यादा सेवन करना। ये शरीर में पानी को रोकता है जिससे खून का दबाव बढ़ता है। फिजिकल इनएक्टिव जो लोग होते हैं यानी कि जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उससे दिल की नसें कमज़ोर और सख्त होने लगती हैं, जिससे भी उन्हें हाई बीपी रहता है। और सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण है जो हर व्यक्ति में पाया जाता है वो है स्ट्रेस यानी कि टेंशन। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो नसों को सिकोड़ देते हैं। इसके साथ ही ओबेसिटी भी इसका एक मुख्य कारण है। ज़्यादा वज़न का मतलब है दिल को खून पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे अधिक जोर पड़ेगा और बीपी भी बढ़ सकता है। अगर परिवार में हमारे किसी माता पिता को हाई बीपी है तो इससे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथियों, अगर अक्सर लोगों को लगता है कि बीपी बढ़ने पर सिर दर्द या चक्कर आते हैं, लेकिन 80% मामलों में ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके जो मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं वो हैं सिर के पीछे के हिस्से में तेज दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, आंखों से धुंधला दिखना, नाक से खून आना या फिर चक्कर आना। और जब बहुत ही ज़्यादा बीपी हाई हो जाता है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं, किडनी तक डैमेज हो जाती है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसे हम कुछ अपने लाइफस्टाइल के में चेंजेस करके अपने बीपी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, यदि आपका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है तो दवाइयों से पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, जैसे कि अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, नट्स और साबुत अनाज को बढ़ाएं। इसके साथ ही दिन भर में एक छोटा चम्मच से ज़्यादा नमक का सेवन ना करें। पापड़, अचार, नमकीन और जो भी कैंड फूड होते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि इनमें सोडियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ ही पोटेशियम से जो फूड होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है वो लें, जैसे कि बनाना, नारियल पानी और पालक। पोटेशियम शरीर से फालतू जो हमारा सोडियम होता है हमारे शरीर में उसे निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही रोज़ कम से कम 30 मिनट तक तेज़ चलें, साइकिलिंग करें या फिर स्विमिंग करें। यदि आप सिर्फ 1 किलो भी वज़न कम करते हैं तो आपका बीपी लगभग 1 mmHg तक कम हो सकता है। तो साथियों, आज के दिन ये मंत्र अपना लें कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, सोडियम को यानी कि नमक को हमारे खाने में कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और साथियों, टेंशन लेने से बीपी तो बढ़ता ही है, इसलिए टेंशन को बाय बाय कह दें और अपने दिल को खुशी से धड़कने दें।

साथियों, आप अपनी अमूल्य प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं, चाहे वो शिकायत हो, सुझाव हो या फिर कोई प्रशंसा हो। बस हमारी ईमेल आईडी पर आपको हमें भेजना है। ईमेल आईडी है aapkibaat@gmail.com। कार्यक्रम आपकी बात में हर मंगलवार शाम 7:30 पर। इसी के साथ मैं कीर्ति आप सभी श्रोताओं से अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि, और ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में।

0: संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अंदर। अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहेगा।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। दर्द

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम शक्ति मंच।

वाली सारी बहना ने राजेश बहन की राम राम। भनो कसूती गर्मी पड़ रही है, दिन के वक्त घर तक बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा, तड़के भी 9 बजे अच्छी तेज धूप हो जाए और आड़ा ताई भनो आंदे आंदे ना पसीने छूट जाए। लेकिन भनो गर्मी के मौसम का भी अपना ही न्यारा मजा है, बस थोड़ा सावधानी रखें क्योंकि खाने पीने का जो है उसका आप ध्यान रखें। मन ने तो भनो ये मौसम आहा बहुत बढ़िया पसंद है, क्योंकि गर्मी के दिनों में भनो मतलब गर्मी के दिनों में क्या, गर्मी के दिन लगा लो कितने बड़े बड़े दिन हैं, आप कितना ही काम कर लो और दिन में भनो थोड़ी बहुत देर आरामदारी भी हो जाए, क्योंकि रात ने तो 11-11 बजे तक कोई सोंदा नहीं और तड़के 5 बजे या 4 बजे फिर उठ ले हैं, तो दिन में थोड़ा सा अड़कस हो जाए, काम करके थकान हो जाए, तो आप दिन में 1-2 घंटा आरामदारी कर सको हो। और भनो फिर सांझ ने फिर अपना काम पर जुट जाओ और वो घर के जितने काम बाकी थे वो निपटा लें, क्योंकि भनो जो सूरज देवता है ना पूरी कृपा रखा है कि घर के हर कोने में आपके धूप ने पहुंचा दे। भनो कपड़े लत्ते किसी भी टाइम आप धो लो, 1 घंटे में सूख जाएंगे और आगा आगे तो ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगी भनो, क्योंकि जेठ का महीना है ना, तो जेठ के महीने में क्यों है भनो घूंघट तली कड़ेगा बात सही है भनो, देखो हंसी मजाक तो चलता रहेगा। इफ जेठ का महीना है तो यह कहावत तो मशहूर है ना भाई, जेठ तक घूंघट काट दिया करें थी पहले, आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो सूरज है ना जेठ के महीने में जब उसकी तपन इतनी हो जाए तो चाहे उसमें ब्याह हो है चाहे कोई कुमारी है सबके घूंघट लिकट जाए। आप देखते होंगे ना जब स्कूटी चलावा है छोरियाँ या कोई भी महिला चला रही है तो सारे मुँह अपने ना ढक कर जब चल रहे हैं ताकि गर्म हवा ना लग जाए, तो बड़ा जब हंसी मजाक में कह भी दे है कि जेठ का महीना है तो घूंघट तो करना ही पड़ेगा, तो बड़ा हंसी मजाक की बात तो ठीक है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में इस महीने में थोड़ा सा हमने अपने खान पीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो गर्मी में देखो पसीना तो आवा ही है और दूसरा पानी कितनी से लग है, बार बार पानी पीने का जी भी करता रहा है और इसे में कुछ ईसा पीने अगर मिल जाए जिस तरह के शरीर ठंडक मिले, या इस करके कि इस मौसम में आमतौर पर लोग सादा मसालेदार या जिस तरह लस्सी है वो उसमें ज़्यादा पीना चाहेंगे कि बिलासी में अच्छा नून मिर्चा गेर करना वो पी ले ताकि तीस मिट जाए। और पहले हम तो ये देखा थे थोड़ा टाइम पहले की बात है कि कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने लग गए थे, लेकिन ईव थोड़ा सा फिर बदलाव आया है कि कुछ ऐसा पीण ना मिले कि जिससे शरीर में ठंडक भी जा और हमारी जो सेहत है वो भी ठीक बनी रहे ताकि सेहत पर भी उसका कोई असर ना पड़े। इसे करके इस जो पानी पीना है उसमें कुछ ऐसा मिला लिया जाए जिससे मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही बना रहे, तो इस पर कुछ आपने रेसिपी बताओ भनो जिसके हम पानी में मिला कर पी लें या लस्सी में मिला कर पी लें तो उससे क्या होगा हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा और जो पानी पी कर फिर भी प्यास लगती रहती उसमें भी आपने थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो भनो सबसे पहले हम बात कर लें हाँ चुकंदर, चुकंदर आपने देखा ही होगा ना कितना बढ़िया दिखा है लाल लाल, तो चुकंदर की अगर हम लस्सी बनावा, चुकंदर और लस्सी का मतलब भनो आमतौर पर क्या देखा कि जो लस्सी है वह सफ़ेद रंग की हो है, वही है जब दूध सफ़ेद है तो लस्सी भी सफ़ेद होगी ना, तो भनो अगर उसमें हम थोड़ा सा चुकंदर मिलावा हाँ तो उसका रंग गुलाबी सा हो जाएगा, और जो बालक न्यू का ना अभी मैं कौन दूध पीता या मैं नहीं लस्सी पीता तो वो क्या करेंगे जब उसका रंग बदला दिखेगा ना उनका भी जी करेगा कि हम पी लें, और इसका भनो जो स्वाद है वो भी बढ़िया है और इसमें आयरन फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स है भरपूर बनो जो चुकंदर है उसमें है, लेकिन इस तरह जो हम छाछ बना वहाँ वो पीने ते हमारे शरीर ने एनर्जी भी मिला है और दूसरा खून बढ़ाने के काम भी आया है, और भनो दही में जो मौजूद प्रोबायोटिक्स डाइजेस्टिक सिस्टम ने मजबूत करे हैं, और भनो बात सही है ना कि डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है, इब दही और चुकंदर ने जब एक साथ मिला है तो इन दोनों के भनो जब गुण मिला तो इससे यह शरीर की जो गर्मी है उसने हाइड्रेट तो रखा ही है, इसके साथ साथ जो हमारी त्वचा है उसने चमकदार बनावा है और हमारी हेल्थ ने यानी हमारे स्वास्थ्य ने भी बेहतर बनावा है। तो इससे खास बात भनो और क्या होगी कि इसमें चुकंदर मीठा हो है, तो जब आप लस्सी में इसने मिलाओगे तो क्या होगा कि आपने चीनी गिरने की भी ज़रूरत नहीं है ताकि वो मीठा बना रहे, लेकिन इसने किस तरीके से हम बनावा बनो इसके बारे में थोड़ा सा आपने बता दूँ। इसके लिए आप क्या करोगे, एक छोटा उबलाया चुकंदर यानी एक चुकंदर अगर आपने घर ले रखे हैं नहीं तो आप मार्केट से ले लो या सब्जी मंडी से ले लो, और उसने उबाल कर ना धर लें 2 कप दही के और 10-12 भनो पुदीने की पत्तियाँ हो वे ले लें, और अदरक अदरक भनो अगर कोई खाता हो तो ले लो, कई भाणी सी हैं कि अदरक नहीं खाती कहेंगे ना मेरा तो गैस बन जा है इस तरह,
तो बात सही है भाणो, जिस तरीके से अपना अच्छा लगा वो लेवें। और उसके बाद थोड़ा सा जो डेढ़ एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, यानी घर जीरा भून लियो और उसने ठा कर चकड़े बेलन पर पीस ले। पाउडर ले आने की भी ज़रूरत नहीं, घर में है सारा कुछ। और काला नमक एक चम्मच उसका ले लें, थोड़ा सादा नमक। आप कई ऐसे हैं कि थोड़ा फिक्का पी में या कई थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल रहे हैं तो वो नमक आप रख लें, और आधा कप पानी का और थोड़े से बर्फ़ वो धर ले या टुकड़े धर ले उसके तोड़ कर पहले में। उसके बाद सबसे पहले क्या करें भाणो, जो चुकंदर है जो उबाल रखा था उसके छोटे छोटे से टुकड़े काट लें और उसने मिक्सर में गेर लें। उससे क्या होगा कि साथ में जो पुदीना है उसकी पत्तियाँ, हरा धनिया है, वो सारी चीज़ मिला कर पीस लें। और अगर आपने थोड़ा सा तीखापन चाहिए उसमें तो हरी मिर्च वो गेर कर उसने पीस लें, और फिर पीसियाँ पीछे भाणो उसने काट लें। फिर जो दही है उसके साथ उसने मिला कर ना अच्छी डाल लासी की तरह घमोड़ दे ठाक है, और उसमें भाणो फिर बनाने के बाद गिलास में काट लें और थोड़ा सा भुनाया जीरा पाउडर और जो काली मिर्च है वो थोड़ी सी उसमें मिला लें ताकि वो पीने में भी अच्छा लगे। और उसके बाद मान लो कोई घर पर आ रहा है तो फिर क्या करें, उसमें थोड़ा सा जीरा और गेर दे ऊपर तय, पुदीना है वो अच्छी डाल थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर कर ना वो उसमें गेर दें ताकि देखने में भी सुथरा लग गया और पीने में तो भाणो पौष्टिक है और पी का तो जी सा आ जाए। लस्सी है ना, तो जब वह लस्सी आप पियोगे तो देखो कितना फ़ायदा हो उसका, आपका पेट है उसकी गड़बड़ सही, और दूसरा आपकी जो त्वचा है उसमें चमक आवेगी, और तीसरा आपके खून में बढ़ोतरी, यानी इससे खून भी बनेगा। तो भाणो इसी तरह कुछ हुए और रेसिपी हैं आपने बताऊं कि भी जो फटाफट बन जाए, जिस तरह आम पन्ना, नींबू पानी, छाछ और तरबूज कुलर, ये सब भाणो इसे पेय हैं जो शरीर ने ठंडकता दे हैं, साथ के साथ हमारे शरीर में नमी भी बना कर रखा है। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद करी जा है जिस तरह आम पन्ना है, यानी कच्चे आम उबाल कर भाणो उसमें पुदीना, जीरा पाउडर या काला नमक और मिश्री मिला कर ना अच्छी डाल उसने करें। यो आपने लू ते भी बचाव है, क्योंकि आगे आगे जिस तरह जेठ का महीना है तो अच्छी लू भी पड़ेगी, तो उस टाइम पे आप इसने ले सके हैं। और दूसरा है भाणो तरबूज कूलर, इसमें क्या है कि तरबूज के टुकड़े हैं जो वो काट लें और उसमें नींबू का रस, काला नमक और पुदीना जो है वो पीस कर ना मिला लें और उस पर वो छिड़क लें, थोड़ी देर उसने बर्फ में धर दें, यानी फ्रिज में रखें हम, तो ये ठंडा अगर खाओगे ना तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाए, क्योंकि बाहर धरेंगे तो उसमें थोड़ा गर्म रहे और उस गर्म में फिर आप जब ये नींबू का रस और मसाला मिलाओगे तो उसका वो टेस्ट नहीं बन पाता। ताकि इसने आप फ्रिज में रखोगे ठंडा रहेगा, और ठंडा जब आप खाओगे ना तो आपकी प्यास भी मिटेगी और आपका स्वास्थ्य भी हेल्दी रहेगा। और इसी तरह भाणो पुदीना नींबू पानी, इसकी स्कंजी में भी आप बना सको हो, यानी ठंडे पानी में नींबू का रस, भुनाया जीरा, काला नमक और थोड़ी सी चीनी या मिश्री उसमें मिला लें और फिर वह आप पानी पी सके हैं। और भाणो इसी तरह है मसाला छाछ, यानी दही, पानी, काला नमक, भुना जीरा, ये सारी चीज़ मिला कर आप इब दही आप घर जमा लो, बाजार तक ले आओगे उससे अच्छा है कि घर दही जमा कर थोड़ी बहुत उसकी के लिए भाणो जब लस्सी बना कर ना आप आराम से रोटी भी खा सको हो दिन में, तो वो ज़्यादा बढ़िया है, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और पानी की जो कमी है वो भी पूरी होती रहेगी। और इसी तरह भाणो दो चीज़ और आपने बताऊँ, एक तो बेल का शरबत और दूसरा है भाणो के समझे गोंद कतीरा, गोंद कतीरा तो आप समझ रहे होंगे ना, ये दोनों ही मतलब इनकी जो तासीर है भाणो वो ठंडी है, और गर्मियाँ में सबसे ज़्यादा अगर गोंद कतीरा है ना वो इस्तेमाल करा जाए ताकि आपके जो शरीर है, जो आपका स्वास्थ्य है वो सही बना रहे, और उसका जो तापमान है ये भी इतनी गर्मी में वाई है ना कि गर्मी इतनी लागे, लेकिन इससे आपका शरीर ठंडा भी रहेगा और आपने कोई नुकसान भी नहीं होगा। भाणो बेल का शरबत किस तरह बताऊँ, ये तुम्हारे घर में पे डाला गया भाणो एक, तो मैं तो जब जी करा जब तोड़े और ताजे ताजा अपना बना लिया, तो किस तरह बना वो आपने बता दूँ। इब दो बेल पत्र का ले डे थे तो मैंने तो ठाका है, और भाणो उसमें क्या करा कटोरा ले लिया बड़ा सारा थोड़ा, उसमें मसाला वो जितना भी गुद्दा था उसके अंदर वो चम्मच गेला काटा, काट का अच्छी तरह इसमें एक गिलास पानी में घोल लिया, घोलिया पाछा बनो एक पास है के करा जग में थोड़ा सा चीनी गिर का ना मीठा अपना घोल कर धर दिया, फिर जो बेलपत्र भी रखा था उसने अच्छी तरह हाथ गला घोल ले, और उसमें तो जो वो जाले से निकलेंगे ना उसके बीज हैं या उसका अंदर जो भी गोंद के साथ साथ इसमें निकलेंगे लकड़ियाँ सी वो काट कर ना उन्हें छान ले अच्छी तरह, छानने के बाद फिर आप उसने उसमें जो चीनी घोल रखी थी उसमें मिला लें,
यानी जितना मीठा आपने पीना है या पतला रखना है या गाढ़ा पीना है वो आपकी मर्जी है। उसमें अगर कोई नमक या नींबू मिलाना चाहे वो भी मिला सके, लेकिन भाणो हम तो नींबू नहीं डाल लिया करते, हम तो नहीं पी लिया, वो बढ़िया लग गया और ताज़ा ताज़ा बेलपत्र है तो और भी स्वाद। तो इस तरह वो आप पियोगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है और पीने में तो स्वाद है ही भाणो, दोनों काम हो जाएंगे ना। और इसी तरह गूंद कतीरे का है, गूंद कतीरे खातर क्या करें भाणो, आप तो करते होंगे ना घर में, जब गूंद कतीरा आप ले आई लिया कर वो साँझ ने भेना पड़ा ठीक है ना, तो क्या करोगे उसने बारीक सा कूट लिया। अच्छा कूटने के बाद उसने एक कटोरे में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, दो चम्मच भी भिगो दोगे वो निरा हो जाएगा फूल का ना। तो अगले दिन सवेरे उसने आप दूध में लेना चाहो तो थोड़ा सा दूध मीठा करके ठंडा रखा पर उसमें घोल लें अच्छी तरह मिक्स करके उसने, और या फिर आप पानी में सिकंजमी बना कर उसमें मिलाना चाहें नींबू पानी की सिकंजमी बना कर उसमें थोड़ा सा गूंद कतीरा है वो अच्छी डालतर डालें उसमें ताकि बारीक हो जाए सारा, वो रला कर फिर पीगा देखो भाणो आप कितना स्वाद आएगा। और दूसरी बात, अगर आप दूध में ही पीना चाहें तो दूध ठंडा हो या थोड़ी सी उसमें बर्फ गेर लें और गूंद कतीरा मिला कर ना वो आप ले सके हैं। और भाणो किसी ने वो भी खाना है ना, बालक बैठा हो दोरा वो भी खा ले जब भी ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ तो ऐसी हैं कि जो गर्मी में भाणो ये अगर हम रोज़ नहीं तो दूसरे दिन तो आप खा ही सको, ये हम पेय पदार्थ अगर लेते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो शरीर की गर्मी है जो उसकी तासीर है वो मतलब गर्मी कम हो जाएगी लेकिन जो स्वास्थ्य है भाणो वो भी सही बना रहेगा। इससे क्या होगा कि आपने एनर्जी मिला है, आप गर्मी तक थकान महसूस नहीं करोगे, भी पसीना आ गया और थकान सी महसूस हो और आप सोचोगे थोड़ी देर आरामदारी कर लो, नहीं भाणो ये पी कर तो आपने काम करना पड़ेगा, लगे रहेंगे तो कितनी अच्छी बात है कि आपका काम भी नहीं रुकेगा और काम करते रहेंगे भाणो, काम तो करते रहेंगे। लेकिन मैं भी भूल गई कि आपने गीत भी सुनाना है, तो पहले सुनाऊँ आपने एक गीत और बाकी चर्चा हम करेंगे बाद में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: तो भानो, बात सही है ना? आप ब्याह में तो पहुंच गए हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना भी जरूरी है। बेशक आप घर में हैं, लेकिन मौसम की साहब वो देखो, गर्मी का महीना है और इसे में आप अगर तली हुई ज़्यादा भुनी हुई ये चीज़ें खाओगे तो क्या होगा? आपने कहोगे ना, पकौड़े खाए थे, पेट में दर्द सा हो रहा, बाई होगी, गैस बनेगी, ये सारी चीज़ हो है ना। तो थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि इस मौसम में हमने थोड़ा हल्का फुल्का सा भोजन करना चाहिए, ज़्यादा तेल आला ना खावे ताकि वो सही तरीके से पच सके। और भाणो, पाचन की गड़बड़ी ना समस्या भी ना बनन दो कि आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत खा ले, खाना भी जरूरी है ना, तो जी कर जा। लेकिन यूँ ना हो कि आप खाते रहो ना, यो नहीं तो गेल के करेंगे, चलो गोलगप्पे ना जी कर रहा है वो भी खा लें, फिर ना चाउमीन भी खा लें वो भी खा ली, तो चाउमीन खा के भाणो क्या होगा, पेट में हजमा हो जाएगा ना ना ना ना। फिर आपने के देखा नान बन रही है, पूरी बन रही है, तो क्या खाऊँ, पूरी ये स्वाद लागा करा रही सी, वो खा लिया आपने, और फिर चाली मीठे का नहीं, थोड़ा सा मीठा भी खा लें, मीठा खाया पाछे, यानी वो तो गरम गरम रसगुल्ले खाए ना, फिर का गर्मी हो रही है, चल थोड़ी सी आइसक्रीम खा लिया, फिर आपने आइसक्रीम भी खा ली, और जब नहीं सोचा ना इतले तेरा टाइम हो लिया, घंटा 2 घंटे हो गए घूमते हुए, फिर कहेंगे घर चलना वार होने लग रही, ये डर जा मड़ी सी कॉफ़ी पी लूँ या चाह पी लूँ भी, यूँ तो देख लो आपने आइसक्रीम खाई है और गेल की गेल आपने क्या करा, चाह पीनी शुरू कर दी, ये ना तो फिर कॉफ़ी भी, आए घर जाना है, घर जाकर पीने की बजाय अड़े तो पी के चल पड़ेंगे। लेकिन भाड़ो घर तक जाते जाते क्या होगा, जाते अपना सोचा ये डर जा बड़ी सी, पहला बाथरूम जाए मैं भी या पहला मैंने जा, क्यों भाई, जो आपने खाया है वो पचाया था नहीं है ना, तो इस करके थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत जो है वो सही बनी रहे और आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, तो आप जिबे घर के काम कर पाओगे ना आकर ना। तो सबसे पहला तो आपने अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, तो खाना ऐसा खाओ यानी हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ये चीज़ें खाने में आप शामिल करोगे, इसमें की है फाइबर, भोजन ने धीरे धीरे चबा के खावें, खूब पानी पीवें, और इसके साथ ही भाणो जो तली भुनी चीज़ें हैं उनका थोड़ा सा परहेज रखें, और नियमित टहलने और तनाव मुक्त रहने से भाणो पाचन क्रिया बेहतरीन बना है, यानी कि घूमना फिरना भी जरूरी है, घूमना फिरना नहीं क्या, बाजार चले जाओ, सैर करना जरूरी है, सवेरे वक्ते उठो या फिर सांझे टाइम आप सैर करेंगे वो ज़्यादा बढ़िया है, और उसके साथ साथ भाणो जिस तरह फाइबर है जिस खाने में उसने आप ज़्यादा खावें, अपने भोजन में साबुत दाल अनाज ताजे फल हरी सब्जियां भाणो ये आपने नियमित मात्रा में लेनी है, और दूसरा दिन भर में पर्याप्त मात्रा में अपना पानी पीना है जो कि आपको भोजन के जो भोजन को पचाने में और शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन बाहर निकालने में आपकी मदद करें, और इसी तरह दही है लस्सी है इस तरह के जो पदार्थ हैं भाणो वो अपने खाने में शामिल करें, और जो मतलब आप खाते हो उसकी आदत भी आपने सही बनानी है, खाना जो आप खा रहे हो यानी चबा कर खाना खाए, भोजन को हमेशा छोटे छोटे से कोर में बांट कर हो, ऐसा ना हो दाल सब्जी दिखी और बड़ी सी बुरकी तोड़ी और वह अपना मुँह में ले गल की गल अपना पानी पीना शुरू कर दिया या लस्सी पीनी शुरू कर दी, पहले उसने अच्छी ढंग चबा कर खा कर उसके बाद आप पानी पियो या लस्सी। फिर छोटे भोजन में जिस तरह एक बार आप कोई भारी भोजन करने की बजाय दिन में 2-3 बार आप थोड़ा थोड़ा खाना खा लो वो ज़्यादा बढ़िया है, इस तरह मतलब एक तो पेट भारी हो जाए घना खाना खाया था और दूसरा क्या होगा एसिडिटी की समस्या बन जाए तो वो नहीं रहेगी, और एक है कि समय का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किस टाइम खाना खा रहे हो, इब रात ना आप भोजन कर रहे हो जो भी वो सोने से कम 2-3 घंटे पहले हमने खाना चाहिए ताकि जो हमने खाना खाया है वो आपका पच सका, और दूसरी बात है भाणो को जो आपकी जीवन शैली है उसने भी थोड़ा सा आप बदलो, जो आपका लाइफस्टाइल है यानी शारीरिक सक्रियता अंतों की कार्य प्रणाली को बेहतर बनावे और रोजाना घूमना, सैर करना, योग करना आपके पाचन के लिए बनो बहुत लाभदायक है। और तनाव से दूर रहें, मानसिक तनाव यानी आप थक रहे हो, शारीरिक तनाव तो मान लिया, लेकिन आप अगर मानसिक तनाव है तो उससे क्या होगा कि आपका जो तन है वो जल्दी थकना शुरू हो जाए। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, आप मान लो किचन में ही हो और रोटी बनाने लग रहे हो, बनाए जाओगे ठीक है, आपने कोई थकान नहीं, लेकिन कोई ना कोई बात इसी आपके दिमाग में आ जाए तो आप उसने सोचने लग जाओ, तो रोटी बनाते बनाते आपका दिमाग वो काम कर रहा है और आप खाना भी बनाने लग रहे हो तो वो थकान थोड़ा जल्दी होगा। उससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है ना उसमें भारीपन आना शुरू हो जाए और आप सोचने लग जाओगे कि भाई यूँ काम तो रह गया मेरा, यूँ नहीं करया वो रह गया। तो इस करके जो तनाव है उसने छोड़ो, जो अपना काम कर रहे हो वो करो। अगर फिर भी कोई बात इसी मन में आ जाए तो आप क्या करो, गहरी लंबी सांस लें, ध्यान लगाएं थोड़ा सा और पाचन तंत्र ने उसने शांत रखें। और भाणो कई ना आदत है ओक्का पीने की, बीड़ी पीने की, लुगाई भी पीवे हैं भाणो, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं कई महिलाओं ने आदत है कि हुक्का पीना है, नहीं कहेंगे ना खाना हजम नहीं होता, या फिर लुके छिपे बीड़ी पी लेंगी भी कदे किसी ने बेरा पड़ जाए, लेकिन बड़ा ये बात सच्ची है। तो ये चीज़ आपने छोड़नी पड़ेगी, इससे क्या होगा कि पेट में एसिड बढ़ जाए और इससे क्या होगा पाचन तंत्र कमज़ोर होगा। तो उससे फिर आप नहीं सोचोगे मन तो पिया भी था लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं हुआ, तो इस करके इन बातों ने भी छोड़ दें ताकि आप किसी के रीस में बैठे तब भी ना पीवें, अगर आपका मन कर रहा है तब भी ना पीवें। और भाणो अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो उसके के लक्षण हैं उसके भी थोड़ा सा बताऊं आपने, यानी पेट में लगातार भारीपन रहना, गैस बढ़ना, एसिडिटी बढ़ना, कब्ज या दस्त लग गए, या पेट में मरोड़ सा महसूस होगा, आप टॉयलेट तो जाओगे पर फिर भी मरोड़ा सा उठे जा। और इसके अलावा अनजाने में कई बार वजन कम हो जाए है, लगातार आपने थकान महसूस हो है, भूख नहीं लगती, और जो आपकी त्वचा यानी जो चमड़ी के समस्या है वो हो जाए, और खाने के बाद आपने असहज महसूस हो है यानी कि बस खा लिया और सोचे कि बस इफ तो पड़ जा, ये मेरे पर काम नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं भाणो, तो थोड़ा सा अगर हम इन पर ध्यान देंगे तो अपने स्वास्थ्य का हम ध्यान रख सकेंगे। तो जब भी आप इस मौसम में खाना खा रहे हो तो हरी साग सब्जी हैं उनका सेवन करें, कुछ इसी तरह की बात इस गीत में भी कह रहे हैं भाणो।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए कार्यक्रम शक्ति मंच FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब सुनिए बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।

0: विरोधी दिवस है। आतंकवाद से आप सभी मतलब समझते हैं ना, टेररिज्म। अब देखिए कि हमने बुद्ध पूर्णिमा मनाई है, तो महात्मा बुद्ध ने वैसे ही शांति का संदेश सारी दुनिया को दिया था, तो भारत तो शुरू से ही वैसे भी शांति प्रिय देश है, और आप सभी ने भी शांति को आगे बढ़ाने में, शांति की दुनिया में ही अग्रसर होना है। आपने ध्यान रखना है कि आतंकवाद जो है वो दुनिया को समाप्ति की तरफ ले जाएगा, और दुनिया समाप्त हो गई तो फिर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। आतंकवादी विरोधी दिवस मनाने का जो हमारा उद्देश्य है कि वो हमारे राष्ट्रीय हित जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएंगे अगर आतंकवाद यूं ही बढ़ता रहेगा। तो आतंकवाद के कारण आम जनता परेशान हो जाती है, तो आम जनता को जो परेशानी हो रही है उससे बचाने के लिए आतंकवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए, मार पिटाई से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, कुछ नहीं मिलता है इन बातों से। इसी उद्देश्य से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आतंकवाद और हिंसा के खतरों पर परिचर्चाएं भी की जाती हैं, वाद विवाद भी किए जाते हैं, कविता प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं, व्याख्यान भी दिए जाते हैं। तो आप सबको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा आतंकवाद विरोधी दिवस कब है, 21 मई को। और जिस तरह से हम हर दिन को, हर एक जो हमारा विषय है, जो भी गंभीर विषय हैं, उनको याद करने के लिए, यूं तो हमें याद है कि आतंकवाद एक अच्छी बात नहीं है, हिंसा एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस दिन के लिए, उस विषय को एक कहते हैं ना, उभारने के लिए एक दिन नियत कर दिया जाता है। तो 21 मई को हम आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। तो अब बच्चों, ये तो हमने आपको जानकारी दी, और अब चलते हैं पहले बच्चे की तरफ। क्या नाम है आपका?
1: एकलव्या।
0: एकलव्य, बड़ा प्यारा नाम है आपका एकलव्य। आप क्या सुनाएंगे?
1: कविता।
0: कविता सुनाएंगे, सुनाइए।
1: माँ भी लड़की, बहन भी लड़की, सारे गुणों से बरी है लड़की, फिर भी कहते हाय लड़की हाय, कि लड़की पैदा होने पर अरे तुम क्यों रोते हो, लड़की बिना दुनिया चलेगी, ऐसा तुम क्यों सोचते हो, आओ हम सब कसम उठाएं, लड़के लड़की का भेद मिटाएं, लड़का लड़की एक समान, तभी बनेगा भारत महान। जय हिंद।
0: बहुत ही सुंदर कविता एकलव्य आपने हमें सुनाई, कि लड़का लड़की एक समान है, दोनों में हमें भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके मम्मी पापा भेदभाव तो नहीं करते?
2: नहीं दीदी,
0: बिल्कुल नहीं करते होंगे, क्योंकि आजकल कोई भी लड़का लड़की को अलग अलग नहीं समझते। लड़कियों के लिए भी उतने ही अवसर हैं, उतने ही अवसर उनको मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, जितने की लड़कों को मिलते हैं। लड़का और लड़की एक समान समझ कर ही मम्मी पापा उनका लालन पालन करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली कलाकार की तरफ। क्या नाम है इस बच्ची का?
3: अनुष्का।
0: अनुष्का, अनुष्का क्या सुनाएंगी आप?
3: चुटकुले।
0: चुटकुले सुनाएंगी। तो पहले ही भाई, हमें तो चुटकुले का नाम सुनकर ही खूब हंसी आ जाती है, तो आप अच्छे अच्छे चुटकुले लेकर आई हैं?
3: जी दीदी।
0: चलिए सुनाइए और सारा वातावरण गुदगुदा दीजिए।
3: मम्मी तू बाल क्यों नहीं कटवाता है? लड़का, ओ मम्मी इट्स फैशन। मम्मी नालायक, तेरी बड़ी बहन को देखने आए थे, वो तुझे पसंद करके ले चले।
0: ओहो क्या बात है, क्या बात है भाई, आजकल लड़के जो बाल बढ़ा लेते हैं उस पे सही कटाक्ष है अनुष्का ये तो। चलिए अगला चुटकुला सुनाइए।
3: पति तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? पत्नी हाँ करूंगी, क्या करना होगा? पति कुछ नहीं, बस नदी में जाकर खड़ी हो जाना। पत्नी फिल्म का नाम क्या है? पति गई भैंस पानी में।
0: गई भैंस पानी में, क्या बात है अनुष्का, बहुत ही बढ़िया चुटकुला था, बहुत ही बढ़िया। और बच्चे तो अभी तक हंसते ही जा रहे हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ाएं अगर आपकी हंसी खत्म हो जाए। चलिए अगला चुटकुला सुनाइए।
3: सास जमाई राजा, अगले जन्म में क्या बनोगे? जमाई जी छिपकली बनूंगा। सास वो क्यों? जमाई क्योंकि आपकी बेटी सिर्फ छिपकलियों से ही डरती है।
0: क्या बात है, क्या बात है अनुष्का, बहुत ही अच्छे चुटकुले थे। जी हाँ, आपकी बेटी सिर्फ छिपकलियों से डरती है, इसलिए वो अगले जन्म में छिपकली बनना चाहेंगे, यानी कि अपनी पत्नी को डराना चाहते हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं अगले कलाकार की तरफ। क्या नाम है इस बच्चे का?
4: कर्मण्य।
0: कर्मण्य क्या सुनाएंगे आप? कर्मण्य
2: पहेलियाँ।
0: अच्छा पहेलियाँ पूछेंगे।

0: तो सबके दिमागों की वर्जिश हो जाएगी। सभी तैयार हैं पहेलियां बूझने के लिए?
1: जी दीदी।
0: अपने अपने दिमागों के ताले खोल लीजिए, क्योंकि अब आ रहे हैं कर्मण्य कुछ पहेलियां लेकर।
2: लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा भागता जाए, बताओ कौन?
0: लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा भागता जाए, कौन बताएगा, कौन बताएगा? जी हाँ, आपको इसका जवाब आता है, बताइए।
3: रेलगाड़ी।
0: रेलगाड़ी सही जवाब है कर्मण्य।
2: जी दीदी।
0: तालियां हो जाए नन्हे मुन्ने बच्चे आयान के लिए। तो कर्मण्य तैयार है अपनी अगली पहेली के साथ?
2: जी दीदी।
0: हाँ जी पूछिए।
2: बीमार नहीं रहती मैं, फिर भी खाती हूँ गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते सुनकर उसकी बोली, बताओ ये क्या है?
0: बीमार नहीं रहती। हाँ जी, तो कौन बताएगा इसका सही जवाब? लावण्या बताएंगी। लावण्या, क्या जवाब है इसका?
3: बंदूक।
0: बंदूक सही जवाब है।
2: जी दीदी।
0: तालियां हो जाए लावण्या के लिए, बहुत सही। तो तैयार है अपनी अगली पहेली के साथ?
2: जी दीदी।
0: और सभी के दिमागों के ताले खुल रहे हैं, धीरे धीरे सब सोचते जा रहे हैं, अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, कोई यहाँ से सोच रहा है, कोई वहां से, क्लू मिल जाए और हम जल्दी से पहेली का जवाब दे दें, ऐसा ही हो रहा है ना यहाँ पर?
1: जी दीदी।
0: चलिए कर्मण्य, अगली पहेली जल्दी से पूछिए।
2: गर्मी में तुम मुझको पीते, मुझको पीना हरदम चाहते, मुझसे प्यार बहुत करते हो, पर बाप बनूं तो डर जाते हो।
0: ये तो थोड़ी मुश्किल पहेली लग रही है। सोचिए सोचिए, हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोचो सोचो सोचो सोचो। ये एक बच्चे को जवाब सूझा। हाँ जी आइए आइए, आप बताइए।
3: बर्फ।
0: बर्फ सही जवाब है?
3: गलत।
0: गलत जवाब है। तो एकलव्य इसका जवाब देना चाहते हैं। एकलव्य क्या जवाब है?
3: पानी।
0: पानी सही जवाब है?
2: जी दीदी।
0: तालियां हो जाए एकलव्य के लिए, क्या बात है। तो आपकी पहेलियां मुझे लगता है अब खत्म हो चुकी हैं।
2: नहीं दीदी।
0: नहीं अभी रहती हैं। चलिए पूछिए।
2: वह कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है?
0: पानी पीकर मर जाती है? ऐसा तो सोचो सोचो सोचो। अनुष्का को इसका जवाब आता है। अनुष्का आइए और बताइए क्या जवाब है इसका?
4: आग।
0: आग सही जवाब है?
2: जी दीदी।
0: तालियां हो जाए अनुष्का के लिए, बहुत ही अच्छी पहेलियां पूछी। और अब हमारे सभी कलाकार, बाकी के कलाकार भी तैयार हैं। अगली कलाकार अपनी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ बैठी हैं। क्या नाम है इस बच्ची का?
5: जनहिता।
0: जनहिता, अरे जनहिता तो बहुत प्यारा सा नाम है। किसने रखा, मम्मी ने पापा ने?
5: मम्मी ने।
0: मम्मी ने रखा, तो मम्मी जी के लिए भी एक बार तालियां हो जाए। बहुत ही प्यारा नाम मम्मी ने चुन के रखा है, जनहिता। जनहिता क्या सुनाएंगी?
5: कविता।
0: कविता, स्वागत है आपकी कविता का, सुनाइए।
5: एक बचपन का जमाना था, जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था, खबर न थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था, एक थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था, माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था।
0: क्या बात है, जोरदार तालियां। बच्चों के कार्यक्रम में इस प्यारी सी बच्ची ने ये याद दिलाया कि जब बड़े हो जाते हैं इंसान, तो वो अपने बचपन को किस तरह से याद करते हैं। सब अपना खेलना कूदना, स्कूल में जाना, क्या ऐसी कोई याद है बचपन की जो हम याद नहीं करते? मुझे लगता है कि सभी, जितने भी हम बड़े हो जाते हैं, जो जो हम बड़े होते जाते हैं, त्यों त्यों हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने ही बचपन में वापस जाना चाहते हैं। तो जनहिता बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई। अब चलते हैं अगली कलाकार की तरफ। क्या नाम है इस बच्ची का?
3: लावण्या।
0: लावण्या, लावण्या क्या सुनाएंगी?
3: पहेलियां।
0: पहेलियां पूछेंगी आप भी। चलिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए, अपने अपने दिमागों के ताले खोल लीजिए, दिमागों की वर्जिश होने वाली है। चलें शुरू करें पहेलियां पूछनी।
1: जी दीदी।
0: चलिए लावण्या, सभी तैयार हैं, आप भी तैयार?
2: जी दीदी।
0: चलिए।
2: जितना ज्यादा मैं बढ़ूंगा, उतना कम आप देख पाओगे, मैं हूँ क्या?
0: जितना ज्यादा मैं बढ़ूंगा, उतना ही आप मुझे नहीं देख पाओगे। अरे, चीज जब बड़ी होती है तो हम उसे देख पाते हैं, और ये तो कह रही हैं कि चीज जब बड़ी हो गई तो उसे कोई नहीं देख पाया। आया किसी को जवाब? सूझा? इशिता को शायद जवाब सूझ गया है। इशिता जवाब दीजिए।
6: अंधेरा।
0: अंधेरा सही जवाब है?
6: जी दीदी।
0: तालियां हो जाए इशिता के लिए। और अब अगली

0: पहेली के लिए लावण्या तैयार है?
1: जी दीदी।
0: हाँ जी पूछिए।
1: लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं पर कभी खाते नहीं हैं, बताऊं क्या हूँ मैं?
0: खाने के लिए खरीदते हैं और खाते नहीं हैं। इधर से किसी को जवाब नहीं सूझा, सब मना कर रहे हैं और खुशबू को जवाब आ गया है शायद। आइए खुशबू बताइए।
2: प्लेट।
0: प्लेट, प्लेट सही जवाब है।
1: जी दीदी
0: सही जवाब है ये। प्लेट क्या था, एक बार पहेली दोबारा दोहराओ।
1: सब मुझे खाने के लिए खरीदते हैं पर कभी खाते नहीं हैं।
0: क्या बात है, जोरदार तालियां मुझे खुशबू और लावण्या दोनों के लिए। अब अगली पहेली।
1: अगर नाक पर चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, बताओ क्या?
0: इसका जवाब तो बहुत सारे बच्चों को आता है, तो सभी इकट्ठे बोलेंगे, क्या जवाब है इसका? बोलिए बोलिए।
3: चश्मा।
0: इशिता को सबसे पहले, इशिता ने जवाब दिया, इशिता को जवाब शायद आता था अच्छे से। और चलते हैं अगली पहेली की तरफ। अगली पहेली के साथ लावण्या तैयार है?
1: जी दीदी।
0: पूछिए।
1: मैं मरूं, मैं कटूं, तुम क्यों रोते हो, बताओ क्या?
0: मैं मरूं, मैं कटूं, तुम क्यों रोते हो। खुशी को इसका जवाब आता है। खुशी बताइए इसका जवाब।
3: प्यास।
0: सही जवाब है।
1: जी दीदी
0: सही जवाब के लिए तालियां हो जाए, और लावण्या के लिए भी तालियां हो जाए, इतनी अच्छी अच्छी पहेलियां पूछ रही है भाई। हाँ जी लावण्या अगली पहेली।
1: आप मुझे पानी में देख सकते हो पर मैं कभी गीला नहीं होता, बताओ क्या?
0: पानी में देख सकते हैं और गीला नहीं होता, इसका जवाब शायद किसी को नहीं आता, आप ही बताइए सही जवाब।
1: परछाई।
0: परछाई सही जवाब है, तालियां हो जाए लावण्या के लिए। अब आपकी पहेलियां मुझे लगता है खत्म हो चुकी हैं।
1: जी दीदी।
0: तो चलते हैं अगले नन्हे मुन्ने कलाकार की तरफ। क्या नाम है इस कलाकार का, देखते हैं?
1: युक्ता।
0: युक्ता, तो युक्ता आज आप क्या सुनाएंगी?
4: कविता।
0: कविता सुनाएंगी, स्वागत है आपकी कविता का, सुनाइए।
4: जब मैं छोटी बच्ची थी, माँ की प्यारी दुलारी थी, माँ तो हमको दूध पिलाती, माँ भी कितनी भोली, माखन मिश्री घोल खिलाती, बड़े मजे से गोद में सुला, माँ तो कितनी अच्छी है, सारी दुनिया उसमें है।
0: वाह क्या बात है, माँ कितनी अच्छी है, सारी, मुझे लगता है सब कविता में खो गए हैं और तालियां बजाना भूल गए हैं। तालियां। तो आपकी कविता देखो सबको बहुत पसंद आई, सभी ने खूब तालियां बजाई हैं, और सभी अपनी माँ को सम्मान देते हैं कि नहीं देते?
3: जी दीदी।
0: माँ बाप का हमें सम्मान करना चाहिए। और बहुत ही सुंदर कविता थी कि माएँ भोली भाली होती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, बच्चों के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती हैं, और बच्चों को बहुत प्यार दुलार करती हैं, लाड लड़ाती हैं, और माँ के दम पर ही जीवन आगे बढ़ता है। तो चलते हैं अगली कलाकार की तरफ। क्या नाम है इसका?
1: खुशबू।
0: खुशबू, आपके आने से खुशबू चारों तरफ फैलती हुई नजर आ रही है मुझे, और क्या सुनाएंगी आप?
1: संस्कृत के श्लोक।
0: संस्कृत के श्लोक, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। संस्कृत के श्लोक कभी कभी कोई कोई बच्चा यहाँ पर लेकर आता है, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीन भाषा है, और कहते हैं कि काफी भाषाएं, हिंदी जो भाषा है हमारी वो भी संस्कृत से ही निकली है। तो संस्कृत भाषा में आप श्लोक सुनाएंगे हमें?
1: जी दीदी।
0: और उनके अर्थ भी बताएंगे?
1: जी दीदी।
0: तो सुनाइए, स्वागत है आपका।
4: नमो नमः सुंदरोऽपि सुशीलोऽपि कुलीनोऽपि महाधनः शोभतेन विना विद्या विद्या सर्वस्य भूषणम्। अर्थात सुंदर, सुशील, कुलीन और बहुत धनवान होने पर भी कोई विद्या के बिना शोभा नहीं पाता, क्योंकि विद्या ही सबका भूषण है।
0: बहुत ही सुंदर सा श्लोक था कि विद्या ही सही आभूषण है, तो इसीलिए कहते हैं ना। अभी देखिए बच्चों को जब मम्मी पापा पढ़ने के लिए कहते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, ऐसा है ना? ऐसा है, बताइए।
3: जी दीदी।
0: जी दीदी, थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हो, लेकिन बोल रहे हो जी दीदी, तो ठीक है। मम्मी पापा तो आपको कहेंगे ही पढ़ने के लिए, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं, वो जानते हैं विद्या ही एक ऐसा आभूषण है जिसे पहनकर आप बड़े होने के बाद मान सम्मान की इस पूरी दुनिया में प्राप्ति कर सकते हैं। तो विद्या सभी को ग्रहण करनी चाहिए, दिल लगाकर पढ़ाई किया कीजिए। यहाँ आए बच्चों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, और सुनने वाले बच्चों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि विद्या ही सबसे बड़ा आभूषण है, और यही एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा भी नहीं सकता। तो अगला श्लोक हमें सुना रही है हमारी खुशबू।
4: नमंती फलिनो वृक्षाः नमंती गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्क मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग नम्र होते हैं, परंतु सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा सा आपने ये हमें श्लोक सुनाया कि जो फल वाले वृक्ष है वो झुक जाते हैं। बहुत ही सुंदर बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको जब गुस्सा आए, जब कभी आपकी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है, अक्सर हो जाती है ना बच्चों की आपस में, लेकिन आप उसका बुरा मान के ये नहीं कि आपस में बोलना ही बंद कर दें। आपने बोलना बंद नहीं करना है, बल्कि अपने दोस्त को मना लेना है, क्योंकि अभी जैसे खुशबू ने कहा, फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। और क्या बताया?
4: गुणवान लोग नम्र होते हैं।
0: गुणवान लोग नम्र होते हैं, जिन लोगों को हम गुणवान लोग कहते हैं ना, तो वो लोग झुक जाते हैं। और झुकने से ये याद रखिए कि कभी किसी का कुछ कम नहीं होता, घट नहीं जाता, बल्कि आप और बड़े हो जाते हैं। अपना दिल इंसान को बड़ा रखना चाहिए और हमें अपने अपने दोस्तों को मना लेना चाहिए। आगे से यही करेंगे आप?
3: जी दीदी जी।
0: चलिए खुशबू अपना अगला श्लोक अब प्रस्तुत करेंगी।
4: पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तगतं धनम्, उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम्। अर्थात पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय आने अथवा जरूरत पड़ने पर सहायता नहीं करते हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये भी कि पुस्तकों में बहुत सा ज्ञान लिखा है, लेकिन अगर आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे तो वो किस काम का। तो इसलिए पुस्तकों में लिखा हुआ जो ज्ञान है, जो अच्छी बातें पुस्तकों में लिखी हैं, वो हमें ग्रहण करनी चाहिए, उन्हें अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। और अंतिम श्लोक खुशबू।
4: सुखार्थी ने कुतो विद्या विद्यार्थी ने कुतो सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।
0: बहुत ही सुंदर, ये अंतिम श्लोक तो बहुत ही सुंदर था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से खुशबू आपने अपने श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत किए, और मुझे लगता है सुनने वाले श्रोताओं को भी बहुत पसंद आए होंगे कि विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। तो अभी आप लोग विद्या ग्रहण कर रहे हैं?
3: जी दीदी।
0: आप लोगों ने अपना सुख छोड़ दिया है?
3: जी दीदी।
0: खूब मेहनत करते हैं?
3: जी दीदी।
0: पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर आएंगे?
3: जी दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बच्चे लगता है पूरा अपने आप में एक दुनिया सी समेटे हुए हैं और बहुत ही अच्छे नंबर ही नहीं लाएंगे बल्कि ये एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। तो अब मुझे लगता है सभी बच्चों की बारी हो चुकी है।
3: नहीं दीदी,
0: अभी कौन रहता है? अच्छा, एक प्यारी सी बच्ची रहती है अभी,
4: इशिता।
0: इशिता, बहुत ही सुंदर नाम है इशिता। तो आप ये बताइए हमारे लिए क्या लेकर आई हैं?
4: कविता।
0: कविता लेकर आई हैं, तो सुनाइए अपनी कविता। स्वागत है आपकी कविता का।
4: हे पिता, समर्पित है तुमको ये जीवन जो तुझसे पाया, जीवन की हर कठिन घड़ी में साथ सदा तुझको पाया। माँ है यदि ममता की मूरत, प्रेम पिता की शीतल छाया, और इस छाया में मैंने खुद को सदा पलते पाया। जीवन की हर कठिन राह पर उंगली पकड़कर चलना सिखाया, शिक्षा दी जीवन संघर्ष की, भले बुरे में भेद कराया। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मैंने इतना स्नेह पिता का पाया, यही कामना है जीवन भर सिर पर रहे सदा ये साया। धन्यवाद।
0: बहुत ही अच्छी कविता, और पढ़ने का ढंग इतना कोमल, इतने सुंदर तरह से आपने ये कविता हमें सुनाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ पर तो हम कविता अक्सर सुनते हैं और पढ़ते हैं, आपने ये कविता पिता के ऊपर सुनाई कि पिता, आप, हे पिता, आपका साया हमारे सिर पर हमेशा बना रहे, और आपकी ही जो हमें, आपने ही हमें सही राह पर चलना सिखाया, और आप ही हमें आगे बढ़ा रहे हैं, और भले बुरे में भेद करना भी सिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कविता, अपने आप में एक सुंदर सा भाव समेटे हुए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इशिता के लिए। और बच्चों, अब चलते चलते आपको एक देशगान सुनवा दें?
3: जी, जी, जी।
0: तो आइए सुनते हैं ये देशगान।

0: तो कैसा लगा आपको ये देशगान?
1: बहुत अच्छा।
0: बहुत अच्छा लगा ना ये देशगान?
1: जी।
0: मुझे भी बहुत पसंद आया। अब चलते हैं अगले बच्चे की तरफ। क्या नाम है?
2: मेरा नाम अर्जुन है।
0: अर्जुन, तो क्या सुनाएंगे आज अर्जुन हमें?
2: हम आपको संस्कृत श्लोक सुनाएंगे।
0: संस्कृत श्लोक सुनाएंगे, तो सुनाइए।
2: नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तप, नास्ति रोग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थात इस संसार में विद्या के समान कोई दूसरी आँख नहीं, अर्थात विद्या ही सबसे बड़ी आँख है। सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं, अर्थात सत्य ही सबसे बढ़कर तप है। रोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं, अर्थात रोग ही सबसे बड़ा दुख है। त्याग के समान कोई दूसरा सुख नहीं, अर्थात त्याग ही सबसे बड़ा सुख है। धन्यवाद।
0: बहुत ही अच्छा श्लोक आपने हमें सुनाया और उसका अर्थ भी सभी को समझाया। त्याग ही सबसे बड़ा सुख है, बहुत ही अच्छा श्लोक था। और विद्या सबसे बड़ा धन है। तो जिस तरह से आप सभी लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं
1: जी,
0: और अच्छे से पढ़ाई करते हैं
1: जी,
0: पढ़ाई से मन तो नहीं चुराते
1: जी,
0: हाँ हो गए ना थोड़ा सा कंफ्यूज, है ना? तो आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, पढ़ाई से अगर मन चुराते हैं तो आज ही प्रतिज्ञा कीजिए कि हम पढ़ाई से मन बिल्कुल नहीं चुराएंगे, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है ना? और अब चलते हैं अगली बच्ची की तरफ। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम लक्षिता है।
0: लक्षिता, तो लक्षिता क्या सुनाएंगी आज हमें?
3: मैं आज आपको स्पीच सुनाऊंगी।
0: आप स्पीच सुनाएंगी, सुनाइए।
3: ट्रीज कीप एन इम्पोर्टेंट कनेक्शन बिटवीन दी लाइफ एंड दी नेचर। विदाउट ट्रीज आवर इंटायर लाइफ एंड इंटायर एनिमल्स आर इन डेंजर। वी ह्यूमंस आउट ऑफ ग्रीड डिजायर फॉर मोर and destroying these valuable priests of the nature. We need to take immediate steps to prevent these further our damaging trees and prevent these trees and save trees. Saving tree is a way to save our environment. How to save trees? Plant more trees. In common, some old trees are getting died due to their old age and getting destroyed due to thunderstorms and strong winds. So, this is an answer to this big and very large reduction of trees that we can grow more and more trees. Now, use tree guards. When the tree is small, it has a small trunk which can be easily broken down by animals and machines. So, we can cover the trees with the tree guards. Use organic fertilizer. Do not use chemicals and fertilizers when you grow a tree. Only use natural fertilizer so that tree not prone to disease. Thank you.
0: बहुत ही अच्छी स्पीच आपने भी एक संदेश दिया हमारे श्रोताओं को, हमें भी दिया और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी एक संदेश दिया कि धरती माँ पर जो प्रदूषण के बादल छाए हैं उन बादलों को हमें कैसे हटाना है और पेड़ पौधे लगाने हैं। अब चलते हैं अगली बच्ची की तरफ। क्या नाम है?
4: मेरा नाम गीतांजलि है।
0: गीतांजलि, क्या सुनाएंगे गीतांजलि?
4: मैं हिंदी में एक गाना सुनाऊंगी।
0: हिंदी में गीत सुनाएंगे, तो कहाँ छिपी बैठी थी आप अभी तक? जल्दी से सुनाइए और पूरा माहौल संगीतमय कर दीजिए।
4: प्यार

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गीत को प्रस्तुत किया। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सबको पसंद आया गीत?
1: जी दीदी।
0: सब उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगा होगा ये गीत। और अब जैसा कि आप जानते ही हैं, कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, तो लेते हैं अनुमति अपने श्रोताओं से। सब बच्चे मिलकर बोलेंगे।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा FM बैंड 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सुन यार पिंकी, ठीक 3 बजे मॉल पे मिल। वो क्या है ना, सेल चल रही है और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है।
1: अरे देख यार, तू कोई और टाइम रख लेना, 3 बजे तो मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ।
0: कहीं आती जाती नहीं? ऐसा क्या करती है तू 3 बजे?
1: अरे तू इतना नहीं जानती, 3 बजे तो सारी सखियाँ कहीं आती जाती नहीं, क्योंकि वो सुनती है
2: सखी सहेली।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी श्रोताओं को अमरकांत
1: और मनीषा जैन का नमस्कार।
0: मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूँ कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं।
1: बिल्कुल सही फरमाया
0: आप लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है
1: और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये बहुत ही मशहूर शेर है।
0: जी बिल्कुल सही शेर है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर नियत अच्छी है, आप में हिम्मत है, आप में लगन है और अगर आपने इन सब के साथ एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को।
1: बहुत सही फरमाया आपने और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी, उनका ये बहुत मशहूर शेर है।
0: जी, और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो
1: ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी।
0: अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता
0: जी।
1: तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, श्रोताओ 24 मई उनकी याद का दिन है।
0: लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब का।
1: जी जी।
0: और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया।
1: लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस जी बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मल्लिक, आर डी बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते आते आते आते पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं, यानी लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा।
0: यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है और पिता के जमाने में जो फिल्में थीं वो भी उनकी कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब।
1: बिल्कुल,
0: तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको, मनीषा जी, जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई, यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने।
1: जी जी जी।
0: एक जमाना कुंदनलाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना करियर शुरू किया
1: जी।
0: तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुस्तकिल, अरे साहब, नौशाद साहब का संगीत,
1: क्या बात है,
0: और यहाँ तक उनको पहुँचाया था कारदार साहब ने।
1: बिल्कुल। और एक गजल है मजरूह साहब की, हमें लगता है कि फिल्मों में शायद ही कोई दूसरी गजल हमारे सुनने में आई है जिसमें शायर का नाम, यानी जो गजल का मक्ता होता है जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं, अपना तखल्लुस लिखते हैं, वो गजल है फिल्म दस्तक की, हम हैं मताए कूचाओ। आइए इस गजल को सुनते हैं लता जी की आवाज में, संगीत मदन मोहन साहब का, और दे दे हैं अपने श्रोताओं के दिलों पे एक

0: मजरूह लिख रही हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। क्या लाफानी गजल, वाह।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अगर गुनहगार की तरह खड़ी नहीं होना चाहती हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द से जल्द मजरूह साहब की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाइए, वरना हमें गुनहगार करार दे दिया जाएगा।
0: तो श्रोताओं, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वही रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग की खास बात है, हम अपने श्रोताओं की ही फरमाइश पर इस रिकॉर्डिंग को इसके पूरे अनाउंसमेंट के साथ सुनवा रहे हैं। एक जमाने में चित्रशाला प्रोग्राम हुआ करता था, 5 मिनट का, याद है ना अमर जी?
1: मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था
0: जी,
1: और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है
0: जी। हाँ।
1: लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउसहोल्ड माना जाता था, हर घर में वो नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता
0: जी। हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं, आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज।
2: चित्रशाला, आज इस कार्यक्रम में सुनी मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल।
3: अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस के बदौलत उस थोड़े से अरसे को जिसे जिंदगी कहते हैं बड़ी कारामत, बहुत खूबसूरत बना लेता है ये जानने के बावजूद। तो चूंकि गजल की जबान इश्क की जबान है, इसलिए हमारी अलामतें भी जो होती हैं उसी तरह की होती हैं इश्क और माशूक की अलामतों से। लेकिन उसमें सिर्फ मैं महबूब का जब जिक्र करता हूँ तो गोया वो सिंबलाइज करती है हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो अर्ज किया है कि गो रात मेरी, रात जिसे बुजुर्गों ने उम्र कहा है, जिंदगी कहा है, गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सुबह तक चलेगी जरूरी नहीं है शायद सुबह ना देखे, सुबह के साथ खत्म हो जाएगी। गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। ये रंगे है ना, ये हमारे एस्थेटिक सेंस को प्रवोक करने वाले मज़ाहिर, ये चीजें जो जब तक जिंदा हैं, हमारी रात रात रहे, हमारी जिंदगी रात रहे, सुबह हम देखें या ना देखें हम इसी में उजाला पैदा कर लेते हैं। कि गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। इंसान साहब बड़ा ही खुदगर्ज है, तो इतना गम और इतना रंज जो हमें गवारा है वो शायद उसमें भी कोई लाग है कि इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, काकुल जुल्फ, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, कि कुछ जख्म ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, कुछ जख्म ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, कुछ जख्म ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है। चाहे वो किसी का हो लहू, अर्ज किया है कि चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू दामने गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। देखिए एक शेर मुलाहजा कीजिए कि हमारे यहाँ गमे दुनिया और गमे इश्क को दो खानों में रखा गया है। खुद गालिब ने भी कहा है कि गमे इश्क गर्न होता गमे रोजगार होता, मुझे दोनों में एक रिश्ता नजर आया। देखिए शायद ये चीज आपको पसंद आए, कुछ नया एक अंगिल है इसमें, मुझे दोनों एक ही लगे हैं कि अब कार गए दहर में लगता है बहुत दिल, अरे दोस्त कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। अर्ज किया है कि इसमें देखिए हम लोग जब मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मैं एक सिंबल होता है एक मैनकाइंड का, आम इंसानियत का। तो ये कहा है कि इस कायनात के जो मौजूदात हैं, ये जो मौजूदात हैं इनमें इंसान अहम तरीन चीज है, उसने दुख भी सबसे ज्यादा उठाए हैं सुख भी सबसे ज्यादा उठाया है। तो अर्ज किया है कि सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, सहरा में बगुला भी है मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवारे आलम तो नहीं है। शुक्रिया।
1: तो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने कांता जी के साथ भी काम किया है
0: जी।
1: और अब ये चीज तो क्लियर हो गई मनीषा जी, कि हम अपने वादे के अनुसार न सिर्फ गाने सुनवाते हैं बल्कि ऐसी शानदार और जानदार आवाजों में उनकी अपनी बातें, उनके अपने ख्यालात तक हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं
0: जी। हाँ।
1: तो अब आप ये बताइए कि मजरूर साहब की अपनी आवाज में जो ये रिकॉर्डिंग हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है, कुछ और भी है आपके पास?
0: बिल्कुल है, और यही हमारी भी खुशकिस्मती है, एक इंटरव्यू है, और हमारी विविध भारती के ही एक और अनाउंसर जो हुआ करते थे, खुद शायर अहमद वसी साहब, उन्होंने बातचीत की थी मजरूह साहब से। तो आइए इस बातचीत को भी हम आज सुनवाते हैं। तो श्रोताओं की खिदमत में पेश है ये रिकॉर्डिंग।
3: मजरूह साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप यूपी की फजा में पले बढ़े, जवान हुए, लखनऊ में आप बाकायदा हकीम की हैसियत से
4: जी
3: यानी जाने जाते थे, फिर बंबई कैसे आपने हिजरत की या माइग्रेट हुए, यहाँ आने की क्या वजह हुई?
4: साहब, मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादसों से गुजरी है
3: जी।
4: मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे
3: जी।
4: मगर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो किसान की हालत रह गई। सुल्तानपुर में हमारी पैदाइश जो किसानों की जिंदगी और समाजी हैसियत से हुई, और कांधे पर लाठी लेके चलना
3: जी।
4: और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, लाठी लेके चलना। अब
3: शायद यही बागपन जो है आपकी शायरी में है, और आपका ये शेर की सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ, शायद ये उसी का
4: वो हम लोगों का
3: नतीजा है
4: जी। हाँ, हम लोगों का मिजाज वो है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजिया किया। तो साहब, ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बायकॉट शुरू हो गया था
3: जी।
4: और तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने यह तय किया कि साहब, मैं उनका अकेली औलाद उनकी
3: जी,
4: उन्होंने ये कहा कि साहब, मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। चुनाचे मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की। अब वो हवादिस की बात कर रहा हूँ। अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी न बन सका, और वहां से रिस्ट्रिकेट हुआ अपनी आजाद अरबी पर
3: जी।
4: और रिस्ट्रिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ, और वहां मैंने तिब की तालीम हासिल की। तिब की तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ दिन तबाबत की भी, और कामयाब तबाबत की। लेकिन साथ ही साथ मेरे सुल्तानपुर में, जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी शेर शायरी का माहौल रहता था तकसीम से पहले, मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी, और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। तो जाहिर है कि ये दाद जो है ऐसी रिश्वत और ऐसा ढोस है
3: जी।
4: चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा, और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा।
3: यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने लगा।
4: हकीम पे हावी होने लगा और हो गया आखिरकार
3: जी।
4: चुनाचे ऐसे ही घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना, और उन्होंने कहा मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब, सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश है नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके दिन जी में क्या आई, हालांकि उनके पास मुझ जैसे हजारों पहुंचा करते थे, इसमें कोई शुबाई नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी जो ऐसे तलबा जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देखरेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए एक ड्यूटी सोसाइटी थी।
3: अच्छा,
4: उसके चेयरमैन
3: थे।
4: तो उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते, मगर किसी से ना कहा, मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए।
3: अच्छा।
4: तो मैं वहां तीन साल रहा सन 44 के आखिर तक
3: जी।
4: सन 45 में एक मुशायरा बम्बई में हुआ तो जिगर साहब वहां से गुजरे, और मैं उनके जेरे साया शेर तो पहले कहता ही था
3: जी।
4: लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके जेरे साया राजे हुआ, हालांकि मुझसे किसी ने कहा नहीं कि तुम गजलें कहो। लेकिन वहां पर जो सुनने वाले आते थे, मौलाना असद मोहाली, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन,
3: दानिश्वर
4: बड़े बड़े आते थे, और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जज्बी को दो को बुला लिया करते थे, और हमें शेर सुनाने पड़ते थे
3: जी।
4: तो पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप बहुत मुशायरे के चौरा को देखते हो, मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी। मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है तो फिर ये मुशायरे उशारे का चक्कर छोड़ो, जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मगज आना शुरू हुआ मेरी शायरी में, थोड़ा बहुत
3: शऊर आया।
4: हाँ, शऊर आया, लेकिन उस शऊर की कोई संत मुहैया नहीं थी। और بس شعور ایک ایسا کہ کوئی مثبت بات، کوئی اچھی بات، کوئی چاہے وہ عشق کی ہو، جمالیات کی ہو، سماجی ہو، اخلاقی ہو، لیکن سیاسی ہو، لیکن وہ مثبت ہو، منفی بات نہ ہو،
5: نگیٹو نہیں ہو،
4: ہاں لو اتنا تو ضرور رہا،
5: پازیٹیو ایٹیٹیوڈ.
4: اچھا تو جگر صاحب جب تشریف لائے وہاں ایک دن تو کہنے لگے بھائی تم میرے ساتھ مشاعرے میں چلو گے بمبئی. میں نے کہا چلیے. 1944 میں مجھے لے کے بمبئی کے ایک مشاعرے میں، اس زمانے میں یہاں اور وہ اقبال ڈے بنایا کرتے تھے اور ہندوستان کا بہت بڑا مشاعرہ ہوتا تھا، اس میں لے کے آئے مجھے. اور یوں رات کو مشاعرے میں کچھ میری ہوا بند گئی. وہ جیسے ہوتا نا ایک شاعر کی ہوا بن جاتی ہے. تو مولانا حضرت موہانی پریسائڈ کر رہے تھے، جگر مراد آبادی اس محفل میں موجود، یگانا موجود، بڑے بڑے شعرا موجود، لیکن وہ ایک گویے لڑکے کی چل گئی میری آواز. بڑی
5: نہیں صرف گویے نہیں ہے، شاعر بھی اچھے ہیں.
4: اینی وے کاردار صاحب اس زمانے میں فلم، ایک شاہجہاں فلم بنانی چاہتے تھے مغل پیریڈ سے کے متعلق سے کے تعلق سے، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو نیا لکھنے والا جو گیت لکھے اور اس ماحول کی زبان کو کہا ادا کر سکے، اس کی تلاش تھی. اچھا نئے وہ یوں ڈھونڈتے تھے کہ پرانے زیادہ پیسے لیتے ہیں،
5: جی
4: نیا کم پیسے لے گا.
5: جی
4: چنانچہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور لیمیٹلی مجھے 500 روپے ماہوار پر 1945 میں نوکر لکھے. اس زمانے میں 500 روپے بہت ہوتے تھے. تو جو گویا یوں میں فلم لائن میں آیا.
5: اب دیکھیے گانے بڑے مشہور ہوئے تھے.
4: جی ہاں
5: جب دل ہی ٹوٹ گیا،
4: جب دل ہی ٹوٹ گیا ان کو سیگل مرحوم پسند تھا، کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ گیت میری ارتھی کے ساتھ جائے بچتا ہوا. چلا چلا اور میں ایسا ہی ہوا تھا کہ یہ گیت ان کی ارتھی کے ساتھ گیا تھا جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے.
5: اس سے تو اور بھی شہرت،
4: جی ہاں شہرت ہوئی، بہت کافی شہرت ہوئی. لیکن فوراً ہی میں دلچسپ بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ میری دیکھیے تین چار موڑ ہماری زندگی کے دیکھے آپ نے، وہ سب بڑے دلچسپ ہیں اور پلانڈ نہیں ہے.
5: جی
4: پلانڈ کوئی نہیں ہے، سب خوشگوار حادثے کے حصے سے. اچھا پھر جب اس سے میں کچھ فائدہ اٹھا سکتا تو 47 کے فسادات شروع ہو گئے. 6-8 مہینے تک ہماری انڈسٹری بند رہی. پھر اسی زمانے میں ہمارا یہاں کی ترقی پسند مصنفین جو ایسوسیشن تھی، ان کے مصنفین جو وہاں رائٹر ہوتے ہیں، ان سے ہمارا لنک پیدا ہوا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک شعوری رویہ جو اب تک ہمارے شعور کو کوئی راہ نہیں ملی تھی، وہ ایک سمت ملی ہمیں. اور میں نے پھر یہ دیکھنا شروع کیا کہ آج جب سے ہمارے اسٹیٹس میں جمہوریت کا لفظ آیا ہے، یعنی ہر شخص کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے. پہلے مغل پیریڈ میں یا شاہی کے پیریڈ میں ہوتا یہ تھا کہ سیاست تو اس وقت بھی ہوتی تھی مگر شاہی سیاست ہوتی تھی، جمہوری نہیں ہوتی تھی. اس لیے کوئی شخص آزادی سے سوچ نہیں پاتا تھا. اب یہ ضروری ہوا کہ ایک شاعر کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عشق و محبت کی باتیں کرے اور چپ ہو جائے، بلکہ اس کا ایک سماجی رویہ بھی ہونا چاہیے، اس کا سیاسی رویہ بھی ہونا چاہیے. چنانچہ میرا ایک شعر تھا کہ دل سے ملتی تو ہے ایک راہ کہیں سے آ کر، سوچتا ہوں یہ تیری راہ گزر ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں کا جو کوئسچن مارک تھا، میں اس راستے پہ کھڑا تھا،
5: وہ یقین اور شک کے درمیانی راستے پر.
4: یقین اور یقینی کے درمیانی راستے پر.
5: لیکن ایک سوال یہیں یہ اٹھتا ہے کہ کیا کوئی بھی شاعر بغیر کسی آئیڈیولوجی، بغیر کسی عقیدے، بغیر کسی نظریے سے وابستہ ہوئے کیا اچھی شاعری نہیں کر سکتا؟
4: کر سکتا ہے. مثلا آپ دیا شنکر نسیم کی مصنوعی لیجیے، گلزار نسیم.
5: جی
4: اس میں کون سا آئیڈیا ہے؟ کوئی آئیڈیا نہیں، صرف اخلاقیات پر مبنی ہے.
5: جی
4: کہ نیکی کرو،
5: جی
4: نیک بنو، الٹیمیٹلی اسی پہ اینڈ ہے اس کا، یہ ہیومن اپروچ ہے. ویسے تو کسی بھی مثبت آئیڈیولوجی کے بغیر کوئی بات کوئی معتبر ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ جب ہماری دنیا نے جمہوریت کے نام سے اپنے آپ کو جانا پہچانا، اس وقت فرد کو جب آزادی ملی تب اس کا اپنا سیاسی نظریہ ہوا، اپنا سماجی نظریہ ہوا، اپنا اخلاقی نظریہ ہوا. اس میں سے اخلاق کے بہت سے پرانے اقدار جو ہیں ان کو توڑ پھوڑ ڈالا گیا
5: اور نئے اقدار بنے.
4: ہاں انگارے لکھ ڈالا ہمارے ادیبوں شاعروں نے، جس میں بہت زیادہ جھنجھوڑنے والی باتیں تھیں اور ظاہر ہے کہ وہ جذباتی زیادہ تھیں، تعقل کم تھا ان میں، لیکن اس وقت وقت کا رد عمل تھا اور اس وقت وہ ضروری تھی اس طرح کی باتیں. اس میں مطلب لحاف لکھ ڈالا، منٹو نے بو لکھ ڈالی، تو اس طرح کی چیزیں تھیں.
5: لیکن وجو صاحب آپ کی شاعری کا جو ایک مجموعی اثر ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک مسافر ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے. مثلا آپ کا یہ شعر کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ،
4: جی
5: جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے، یا یہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
4: جی
5: لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا.
4: جی یہ آپ
5: اس قسم کے بیشتر اشعار ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو جس کا سفر جاری ہے.
4: ہمارے ایک بہت بڑے نقاد تھے
5: جی
4: احتشام حسین صاحب،
5: جی
4: انہوں نے بالکل یہی بات کہی تھی جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں.
5: جی
4: اتفاق
5: تو اس کے پیچھے کیا کوئی شعوری کوشش ہے یا یہ ایک अंदर से
4: शऊरी कोशिश तो देखिए जनाब
5: जी,
4: किसी एक नुक्ते नजर के जैसे मैंने बताया सामाजिक सियासी वगैरह उसको सामने रख के शऊरी कोशिश तो सिर्फ रही अच्छे शेर कहने की।
5: अच्छा,
4: लेकिन अकेलापन जो मेरा रहा उसकी हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता हुआ तो गजल का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जिगर और फानी और इनके साथ चलता था जिसमें शकील मजानी कुमार अवर बंकी इस तरह के ग्रुप थे उनसे मैं कट ऑफ हुआ। अब वहां से मैं गालियां पड़ी साहब ये जो है तरक्की पसंद हो गया, तो ये हो गया जिसकी वजह से मैं तनहा रहा दोनों तरफ से। और मैं एक अजीब बात बताऊंगा आपसे कि उस जमाने में सन 45 से लेके सन 52 तक जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं तनहा मैंने कहे हैं, और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे लेकिन मेरी उम्र के और मेरे उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो वो साथ करेंगे मेरी इस बात की। 7 साल मैं अकेला रहा हूँ, उस वक्त मैंने आपको शेर दिया मैं अकेला ही चला था जाने के मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवां ने सहार न हो।
1: ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है जो स्टैंडर्ड होता है जो एक उसका मयार होता है वो अलग ही होता है।
0: बिल्कुल,
1: वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है और फिर बातचीत में अगर मजरू साहब हो तो फिर क्या कहने।
0: क्या बात।
1: अब मजरू साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरू साहब का लिखा गाना सुनता हूँ, हम है मताए कूचा बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक

0: आ जाता है हम थे वो थे और
1: समारंगीन समझ गए ना।
0: हाँ, उसके बाद याद आता है चलती का नाम गाड़ी का दूसरा गाना।
1: हाँ।
0: हाल कैसा है जनाब का,
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना, इस तरह के जो
1: क्या
0: गाने
1: रेंज, क्या रेंज,
0: क्या रेंज है, देखिए ना। और भी कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया था, जॉय मुखर्जी के साथ एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब। अब मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूँ।
1: आईएस जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप, कमाल के कलाकार। और श्रोताओं आपको जरूर याद आ रहा होगा हम किस गाने का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, शागिर्द का बड़े मियां दीवाने।
0: आप गाना सुनिए।

0: सुनो।
1: मजरूह साहब की कलम से निकला ये एक मजाहिया गीत और बहुत दिलचस्प गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। अमर जी अब
2: आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
3: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आपटे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ट पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया।

मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकोड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एमवी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: तुमको भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलिया एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
3: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
4: साथिया, साथिया।
1: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: मेरे लिए।
1: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नागाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाए का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है भगत

0: घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं।
1: फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सह

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वही

0: और माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाना आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो?
4: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
5: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म एबीसीडी 2।
2: जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है। रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
2: दादा आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
3: हाँ, कुछ होगा अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता मैंने, मेरे मेरे हाथ में किधर है।
2: जी जी।
3: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मुझे खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल

0: जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत। अमर जी, तो अब करें अपने श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा।
1: बिल्कुल लेंगे,
0: तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में ₹1 की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर ₹80.09, गाजियाबाद और नोएडा में ₹88.70 और गुरुग्राम में ₹85.12 हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में ₹2 की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। प्रकाश मेहरा के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में गुलशन बावरा की रचना आपने सुनी। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना।

0: अख्तर रोमानी की लिखे इस गीत की तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी हसीना मान जाएगी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

आप सुन रहे थे दयावान फिल्म का गीत पंकज उदास अनुराधा पौडवाल के युगल सुरों में। अजीज काजी का लिखा यह गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। साजन फिल्म का यह गीत है पंकज उदास की आवाज में, समीर के बोल नदीम श्रवण की तर्ज।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म नाम में आप सुन रहे थे पंकज उदास और साथियों को, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। मेला फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के स्वरों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है राहुल देव बर्मन की तर्ज।

0: आशा भोसले किशोर कुमार की आवाजों में ये युगल गीत आप सुन रहे थे फिल्म रल्ला वारिस से। अनजान के बोलों को सुरों में ढाला था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओ, यादों की महफिल इस कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश।
1: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर इस प्रोग्राम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, तो अपने रेडियो सेट को जरा करीब लाइए, क्योंकि आपके रेडियो सेट पर अब इंतजार खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। दूर दूर से आपकी भेजी गई बातें हम तक पहुंच रही हैं, जिनमें कभी खुशी, कभी थोड़ी सी तलखी नजर आ रही है, कभी मुस्कुराहट है तो थोड़ी मायूसी भी नजर आती है। यानी हवाओं की पालकी पर सवार संचार के माध्यम से हम तक और आप तक जो संवाद पहुंचते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, है ना? ये भी एक कमाल की बात। ऐसी ही प्यारी प्यारी भावनाएं गीतों की शक्ल में ढल जाती हैं, जिसे आप तक पहुंचाती है आपकी प्यारी प्यारी विविध भारती। जरा सोचिए ना श्रोताओं, कि अगर ये संचार, ये दूर संचार के माध्यम हमारे बीच ना होते तो क्या हम और आप जुड़ पाते? अपना प्यार, अपनी नाराजगी और खूबसूरत गीतों का ये फसाना क्या गुनगुना पाते? तो मौका है अपने आप में लाजवाब, और देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से श्रोताओं के जो गीत हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में मिलते हैं। वैसे आपकी प्लेलिस्ट जो है वो बहुत सारे श्रोताओं की हम तक पहुंच चुकी है। मुझे देखकर ये बड़ा अच्छा भी लगा कि कुछ श्रोताओं के गीत तो लगभग पूरी पूरी तरह आज के कार्यक्रम से मिल रहे हैं। तो जल्दी से बता देते हैं आज की इबारत। वैसे ये इबारत आप फेसबुक पेज पर भी हमारे पढ़ सकते हैं। आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते से जुड़कर अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक भेज सकते हैं। तो इबारत आपको बता देते हैं, दूरी चाहे जितनी भी हो, हवाओं की पालकी पर सवार परदेसियों के सलाम आ ही जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि गीतों में छुपी प्यार की दास्तान कोई सुनता है, कोई कहता है। अगर मामला लिफाफे का हो तो पते की भी जरूरत होती है। रेडियो तरंगों पर बजते वो गीत तो जिंदगी भर नहीं भूलते, जो कुछ खास पलों के गवाह होते हैं। बेतार के तार से बंधे आते गीत कभी गम उठाने के लिए जीने का हौसला देते हैं, कभी ख्याल बनकर उभरते हैं। देश विदेश में अपनों से जो वीडियो कॉल पर होती बातचीत भी इन्हीं तरंगों पर सवार होकर हम तक पहुंचती है, फिर चाहे देहरादून हो या रंगून। सुरों का ऐसा साज जैसे चंचल नैन बात करें और छुप जाएं, सुर लहरियों पर सुनाई देते नगमे जैसे मन का नगर लूट लेते हैं। आह तूने कहा कोई मतवाला लगता है, मन कहता है सुनो। रेडियो तरंगों के लय पर ये गीतों की महकती खुशबू है, इसे बस महसूस करो। वैसे आज जो गीत इस कार्यक्रम में हमने पिरोए हैं श्रोताओं, उनमें कुछ खासियत भी है जो आपको पहचाननी है और साथ ही बताना है कि हवाओं की पालकी पर सवार जब ये गीत आपके घर आंगन तक पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है? इन्हीं तरंगों पर सवार अपनों की तो कभी किसी अजनबी से जो नजर नहीं आते उनसे बातें होती हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा हो पाएगा, है ना? कितनी अजीब सी बात। तो ये बात आपको बतानी है, बातें और जो आपकी लिखी हुई बातें हैं, आपकी खट्टी मीठी बातें हैं और विविध भारती की सुर लहरियों पर झूमते गाते ये गीत जो आपके रेडियो सेट पर दस्तक लगभग दे चुके हैं। श्रोताओं, सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: गौशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार गौशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद सभी विभागों को सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग और ईंधन बचाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुरूप हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने दोनों विभागों में सरकारी वाहनों के उपयोग के संबंध में प्रभावी कार्रवाई शुरू करके एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्री ने अपने काफिले से पायलट वाहन को भी हटा दिया है। समीक्षा के बाद मंत्री के कार्यालय से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से 9 वाहन और लोक निर्माण विभाग से 8 वाहन तत्काल वापस लेने के आदेश जारी किए गए। श्री रणवीर गंगवा ने कहा कि सरकारी वाहनों का उपयोग केवल आवश्यक सरकारी और जन कल्याण के कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी संभव हो वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा दें, अनावश्यक यात्रा से बचें और ईंधन बचाने के लिए वाहन पूलिंग को अपनाएं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को वाहनों की लॉगबुक और ईंधन के खर्च की नियमित रूप से निगरानी करने के भी निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिसार केंद्र द्वारा संगीत कार्यक्रम व मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हिसार केंद्र का संचालन करने वाले सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष बहुत ही गौरवपूर्ण रहे हैं। एक समय में आकाशवाणी ही हमारे पास सूचना, जानकारियों व मनोरंजन का माध्यम था। बदलते परिवेश में आज भी आकाशवाणी उतनी ही प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम भी आकाशवाणी के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। कैबिनेट मंत्री ने मैराथन को झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने कहा कि आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि आज मैराथन में हिसार से बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों, खेल प्रेमियों सहित आम लोगों ने भाग लिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई को अर्हता तिथि मानकर हरियाणा में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। पंचकुला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि बीएलओ 15 जून से 14 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन का कार्य करेंगे तथा प्रारंभिक प्रकाशन 21 जुलाई को सभी प्रकाशन स्थलों व मतदान केंद्रों पर निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान दावे और आपत्तियां 21 जुलाई से 20 अगस्त तक जमा करवाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फरीदाबाद के सेक्टर 3 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार देर रात एक गर्भवती महिला का प्रवेश द्वार के निकट प्रसव होने की घटना की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। पूरे मामले की जांच फरीदाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जयंत आहूजा और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रचना की अध्यक्षता में गठित जांच समिति कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी और इमरजेंसी के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परिजनों को इमरजेंसी द्वार से प्रवेश होने की जानकारी नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
0: धड़कन कहीं महसूस नहीं होती या कहीं खो सी गई है जो जब खत आते थे उनमें रहती थी, बशर्ते जो बातें होती थी वो तो बड़ी कम लिखी होती थी, लेकिन जो दिल में एक वेदना सी महसूस होती थी वो कहीं गहरी होती थी। तो ऐसी कोई चिट्ठियां अगर आपने सहेज रखी हैं तो आप हमें बता सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने, वैसे तो बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को पहचाना है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरे पिया गए रंगून और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, और बाकी गीतों को भी देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखेंगे बाकी गीतों को भी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की बातें गीतों के होने वाली हैं, कि कैसे गीत हमारी हर बात को हमारे अपनों तक पहुंचा देते हैं। हमारे दिल की बात कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें हम गुनगुनाते हैं किसी और के लिए, मगर सुनते वक्त सबसे ज्यादा खुद महसूस करते हैं। गीतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूर बैठे इंसान को भी हमारे दिल का हाल बता देते हैं। किसी को अपना कहना आसान नहीं होता, इसलिए लोग अक्सर अपनी मोहब्बत गीतों में छुपा देते हैं। एक पसंदीदा गीत, कई बार पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोबाइल के बिना जीना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल है। ये दुनिया का अजूबा रिश्ता, ये जिंदगी का सफर, आज रेडियो से मोबाइल के बिना चैन कहाँ। और एक और श्रोता ने लिखी है कि जो आज की इबारत है वो संभावित गाने पालकी में होके सवार चली, और फिर इन्होंने और भी बहुत सारे जो गीत हैं उन्हें चुना है। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत बजते हैं इस कार्यक्रम में। वैसे जो आज हमारी प्लेलिस्ट है वो आपकी प्लेलिस्ट से, मैं बताऊं श्रोताओं, कि लगभग मैच कर रही है। और कुछ श्रोता ऐसा भी लिख रहे हैं कि भाई एक या दो गीत हैं उनके लिए क्या परेशानी उठाई जाए। जी हाँ, ऐसी बात भी आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि वायरलेस उपकरण जैसे फोन और रेडियो से उठती तरंगों की बातें होंगी। रेडियो तो पहले से ही था, उसमें भी बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन आज हाथ में एक छोटे से फोन ने सभी कुछ एक मुट्ठी में कर दिया है। साधारण कॉल से लेकर वीडियो कॉल पर देश विदेश में बैठे परिजनों से बातचीत, रेडियो का जुड़ाव, मनोरंजन, दुर्लभ जानकारियों का जो वरदान दिया है उसका कोई हिसाब नहीं। ये सब तकनीक और आधुनिकता का दिया हुआ तोहफा है बदलती दुनिया को। जी हाँ, ये जो आधुनिकता है जो बातचीत के दरमियान हमें देखने को मिलती है, ये आपको कैसे लगती है ये आपको बताना है। साथ ही अगर आप एक बात बताना चाहें तो ज़रूर बताएं कि जब कोई नई चीज़ आती है हमारे घर में तो बड़ा कौतूहल होता है, बड़ा रोमांच होता है। तो एक ज़माने में जो टेलीफोन था वो, यानी कि जो वायर वाला टेलीफोन था वो आया, तो आपको कैसा लगा अगर आपके घर आया? या फिर अगर हम मोबाइल की ही बात करें तो आपने पहला फ़ोन किसको लगाया?

फिल्म शक्ति का ये प्यारा सा गीत श्रोताओं जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। वैसे एक सवाल आपसे पूछने का जी चाहता है कि क्या कोई खत ऐसा भी था जो आया नहीं और आज भी आपको उस खत का इंतजार है, या फिर इंतजार खत्म हो चुका है? यानी कभी कभी हम दिल हार जाते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये खत नहीं आएगा या अब तो ये मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जब अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि किसी के मैसेज का या किसी की बातों का हमें इंतजार रहता है, ना वो खत आता है ना वो मैसेज आता है, तो क्या आप उदास हो जाते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि भाई ये जिंदगी है और आगे यूं ही चलती रहे? यानी आप गमगीन होते हैं या फिर गमों के समय भी मुस्कुराते हैं? वैसे हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि गीत हमारे मित्र हैं, हवाओं की पालकी पर सवार रेडियो से जो गीत बजते हैं वो हमारे सुख दुख के गहन साथी हैं। जीवन में जब प्रेम आया तो इन गीतों में विस्तार खोजते रहे और आश्चर्य कि हमें गीत में वो सब मिला जो हम मन से कहना चाह रहे थे, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, वो रेडियो से झरते इन गीतों में था। सुरों का ऐसा साज ये गीत कि अब हमारे अस्तित्व से जुड़ गए हैं, ये मन को लूट लेते हैं। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, आज भी इस गीत को सुनती हूँ तो मन किसी अनदेखी अनजानी दुनिया में पहुंच जाता है जहां कोई नहीं होता सिवाय इस गीत के। एक सवाल आप हमें बता दें श्रोताओं कि फिल्म आरती का एक गीत है जिसमें जो ये गीत जब शुरू होता है तो ये ग्रामोफोन के सेट पर नजर आता है, यानी इसकी शुरुआत ग्रामोफोन के सेट पर होती है। तो आप इस गीत को अगर पहचानते हैं तो आप जरूर लिखें। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि मेरे पिया गए रंगून, चिट्ठी आई है वतन से और परदेसी, तुम कहाँ चले गए? फिर इन्होंने जो कुछ गीत लिखे हैं शायद वो गीत बहुत ज्यादा मैच नहीं करते हैं। तो इसके लिए तो ये जरूरी है श्रोताओं कि जो इबारत होती है ना उसे आप दो तीन बार अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हम स्कूल में एग्जाम देते थे, कॉलेज में एग्जाम देते थे, तो जब हमारे सामने सवाल आता था तो यकायक लगता था कि नहीं भाई इसका तो जवाब हमें नहीं आता है, लेकिन फिर ये होता था कि मन होता था कि भाई शांत बैठ जाओ और इसे कई बार, यानी कि कम से कम एक दो बार तो जैसा समय रहे उस हिसाब से पढ़ लीजिए, तो फिर ये समझ में आ जाता था कि नहीं ये तो जरूर उत्तर हमें आता है या आंसर हमें आता है। तो ऐसा ही है ये टेक्स्ट भी, हमारी इबारत भी, ये मजमून भी ऐसा ही है। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन से नगमे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है सुरीला सफर में कुछ शब्दों गीत बज सकते हैं जैसे दूरी हवाएं, परदेसी पालकी, रंगून, प्यार की दास्तान, सलाम मेरे पिया गए रंगून, दूरी न रहे कोई, तुम इतने करीब आओ, दूरियां नजदीकियां, परदेसियों से इन हवाओं इन फिजाओं में लिखे जो खत तुझे, बहुत सारे गीत हैं। तो एक और श्रोता लिखती हैं आज के शब्दों से पता लग रहा है कि दूरी की बातें होंगी और गाने भी बजेंगे। जी हाँ, जहां तक दूरी की बातें हैं श्रोताओं, जब दूरियां नहीं होंगी तो नजदीकियों का क्या मजा, इसलिए दूरियां हैं तो नजदीकियां हैं, और जब नजदीकियां हैं तो उन नजदीकियों को हम बनाए रहें, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें दूरियां ना आ पाए। ठीक ऐसे ही जैसे हमारी विविध भारती है, कभी ना नाराज होती है ना कभी बहुत ज्यादा खुश होती है, बस श्रोताओं को लेकर साथ हम सफर की तरह चलती रहती है। तो ये आगे लिखती हैं कि दूरी की बात होगी और गाने भी बजेंगे, जब कोई हमसे दूर होता है पर दिल के करीब होता है, और प्रदेश में होकर थी जो दिल को जोड़ रखता है वो फोन होता है, हम फोन पर बातें करते हैं, दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, हाल चाल भी पता चलता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है श्रोताओं कि जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो आज जो विश्व दूर संचार दिवस यानी टेली कम्युनिकेशन डे है, तो ये जो दूरियां हैं यकीनन इन संचार माध्यमों से कम तो हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कम हुई हैं या फिर और बढ़ गई हैं? आपको संगीतकार और अदाकारा बताने हैं।

यकीन मानिए श्रोताओं, जब रेडियो तरंगों की ताल पर बजते हैं तो जाने कितनी ही जो अपनी यादें होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, दिल में अंगड़ाइयां लेती हैं, और जाने कितनी सारी बातें जो होती हैं जहन में ताज़ा हो जाती हैं। ये गीत चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, बेशुमार हो, दिल के बेहद करीब होते हैं। वक्त के सांचे में ढले ये गीत नायाब हैं श्रोताओं, जिन्हें हम और आप इनकी कीमत को बिल्कुल चुका नहीं सकते, हाँ इन्हें प्यार जरूर दे सकते हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दें कि बरसात की रात फिल्म का ये गीत था। बेहद खूबसूरत अभिनेत्री वीनस क्वीन मधुबाला पर फिल्माया गया, भारत भूषण भी नजर आते हैं। साहिल लुधियानवी के बोल हैं रोशन की तर्ज है। वैसे हमने आपसे शुरुआत में ये कहा था कि आज के गीतों की कड़ी में कुछ एक खास बात है, इसका जवाब अब तक मुझे नजर नहीं आया है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि क्या आप इस कड़ी को या इस बात को पहचान पाते हैं क्या कि आज किस तरह के नगमे हैं। आज की भारत संचार माध्यम से जुड़ी लगती है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के जरिए पत्रों का आदान प्रदान, बाद में पोस्ट डॉक खाने में चिट्ठियां पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल, उसके बाद डाकिये का साइकिल पर चिट्ठियां बांटना, बाद में टेलीफोन पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सन 2000 से तो मोबाइल का ऐसा जबरदस्त दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। पत्रों की जगह मैसेज टेक्स्ट ने ले ली, कुछ ही सेकंड में एक दूसरे से जोड़ देती है, चाहे कितना भी संचार क्षेत्र में हम तरक्की कर लें, लेकिन जो मज़ा पत्र चिट्ठी लिखने में आता है वो मज़ा मोबाइल में बातचीत में या टेक्स्ट में नहीं आता। श्रोताओं, ये बात जरा सोच कर देखिए कि अगर एक मिनट में या कुछ सेकंडों में हमारे तक किसी की बातें पहुंच जाती हैं या हमारी बातें किसी तक पहुंच जाती हैं, तो इतना ही समय लगता है रिश्ते जोड़ने में भी, और इतना ही समय लगता है रिश्ते तोड़ने में भी। तो क्या इन रिश्तों के बीच कुछ जो मकाम है या कुछ समय जो है उसकी उसका महत्व है? यानी जो चिट्ठियां होती थी वो थोड़ी देर से पहुंचती थी, लेकिन ये जो मैसेज होते हैं तुरंत दोस्ती और तुरंत बिल्कुल कट्टी बट्टी हो जाती है। तो क्या आपकी आजकल किसी से नाराजगी चल रही है यानी कट्टी हो गई है? कोई आपकी सहेली, कोई आपका दोस्त आपसे बातें नहीं कर रहा, तो बस मौका है जल्दी से मना लीजिए, क्योंकि आप भी इसी संचार से जुड़े हुए हैं। और तुरंत तुरंत मैसेजेस भेजने में बिना सोचे समझे भी हम कई बार मैसेजेस भेज देते हैं, तो इस पर भी जरा सोचने की बात है। एक और श्रोता ने लिखा है, दूरी चाहे कितनी भी लंबी हो क्यों ना, भावनाएं हमेशा अपने रास्ते खोज लेती हैं। कभी हवाओं की पालकी पर परदेसियों के पैगाम आते हैं, तो कभी बेतार तरंगों पर बहते दिलों को जोड़ देते हैं। रेडियो की सुर लहरियां केवल संगीत नहीं लाती, वो अपने साथ यादों की खुशबू, अपनापन और जीने का हौसला भी लेकर आती हैं। हमने आपसे पूछा था आरती फिल्म का वो कौन सा गीत है श्रोताओं जो ग्रामाफोन पे बजता हुआ जिसका शुरुआती मुखड़ा नजर आता है, यानी जो इंट्रोडक्शन गीत का है वो। एक और श्रोता ने लिखा है कि हाथ के छोटे से फोन में अब दुनिया समाई हुई है, एक मिनट के लिए फोन नहीं मिलता या किसी वक्त बंद हो जाए तो बड़ी बेचैनी सी होती है। कोई भी विशेष समाचार आना, किसी को पेमेंट करना हो या किसी का पैसा मोबाइल पर आने की न्यूज हो, किसी का फोन आना हो, ये बहुत मुश्किल हो जाती है बगैर तार के, बगैर किसी बिजली कनेक्शन के, इस छोटे से फोन से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्य में इबादत की इबादत से निकले शब्द में दूरी चाहे रंगून देहरादून हवाओं पालकी सवार चंचल नैन और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्रोता हैं वो टेक्स्ट को इतनी खूबी से पढ़ते हैं और उनमें से शब्दों का चयन करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि संचार साधनों में आए क्रांतिकारी परिवर्तन ने पुराने साधनों को लगभग मानव स्मृति पटल पर केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है। प्राचीन काल में संदेश जब कपड़े पेड़ों के पत्ते पर लिखकर भेजे जाते थे, इस प्रथा में जो संदेश वाहक पत्र आदि लेकर आता था कहीं कहीं पर इस कार्य में प्रशिक्षित पक्षियों बहुधा बाज कबूतर से भी इस कार्य को अंजाम दिया जाता था। कोई एक ऐसी फिल्म आपको याद आ रही है क्या जिसमें कबूतर जो हैं वो पत्र लेकर जाते हैं? मुझे तो कई सारी फिल्में याद आ रही हैं, और एक फिल्म जो दिलीप कुमार साहब की है उसमें तो इसे बखूबी दिखाया गया है। अगर आपको ये फिल्म याद

0: आ रही है, तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज समय बदल गया है, देश विदेश में बसे अपने लोग वीडियो कॉल की तरंगों पर सवार होकर पल भर में हमारे सामने आ जाते हैं। मुस्कानें, आवाजें और भावनाएं स्क्रीन पर पार होकर भी दिल को छू जाती हैं। तकनीक ने दूरियों को छोटा कर दिया है, पर रिश्तों की मिठास वही पुरानी बनी रहे। सच तो ये है कि प्रेम, अपनापन और यादें किसी तार या सीमा की मोहताज नहीं होती, वो बस महसूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत की मधुर खुशबू जो मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती है। ऐसी जो खुशबुएं हैं, ऐसी जो बातें हैं, उसको जीवित ही रहने दें, इसे दर्द ना बनाएं, क्योंकि दर्द भी गीतों में समाया है जो कहीं कहीं हमारे दिल में दस्तक देता है।
1: आए, ओ देने वाले।

हुजूर, फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे जितेंद्र पर फिल्माया गया। मोहम्मद रफी की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही अच्छा है। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी में एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द है चंचल नैन, जिसका अर्थ है अस्थिर या चुलबुली आंखें, रेस्टलेस और फ्लिकरिंग आईज। ये आमतौर पर खूबसूरती, चंचलता और आकर्षण को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये शब्द न केवल हिंदी साहित्य बल्कि बॉलीवुड गानों में भी बहुत लोकप्रिय है। चंचल नैन वाले कुछ प्रसिद्ध गाने चंचल नैन, नजरें मिली, दिल धड़का, कुछ एक गीत इन्होंने पसंद किया है। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पैराग्राफ में ही कई चर्चित गानों के मुखड़े लिखे नजर आ रहे हैं, यानी दिखाई दे रहे हैं। बेतार के तार रूपी ध्वनि तरंगों पर बजते हुए प्यार की दास्तान लिए आज सुंदर गाने सुनने को मिलेंगे, जिन्हें सुनाने कोई मतवाला वीबीएस के स्टूडियो में आने वाला है। गानों को सुनकर ऐसा महसूस होगा कि दूरी न रहे कोई, बिल्कुल करीब से सुन रहे हैं और प्यार से, दिल से महकती खुशबू महसूस कर रहे हैं। उनके ख्याल आए तो बस दीवाना बनाकर चले गए। उम्मीद है आज रेडियो पर बजते हुए गाने सुनने को मिलेंगे। और कुछ गीतों को इन्होंने पसंद किया है, यानी कि अपनी जो बात है उसमें लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी प्यार की दास्तान, गम उठाने के लिए लूटी कोई मन का नगर, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। क्या बात है श्रोताओं। वैसे अगर हम ये कहें कि हमारे कुछ श्रोता भी इबारत लिखने में काफी अच्छा एक मुकाम रखते हैं, तो ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, सुरीले सफर में आज हम रेडियो की सुरीली तरंगों के साथ गीत संगीत का आनंद लेंगे। संगीत से हर किसी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जीवन के महत्वपूर्ण पल संगीत से होकर गुजरते हैं। जब चाहे जैसा चाहे मूड जो बदल देता है, संगीत जब भी हम बेहद खुश होते हैं तो दिल से निकलता है, संगीत जब कभी उदास होते हैं तो खुश कर देता है, पलों में भावुक कर देता है और मन में सब अपने संजोने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो आगे और भी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता कितनी मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं कि ये कार्यक्रम है, इसमें किस तरह से शिरकत की जाए। और इन्होंने भी बहुत सारे गीत जो हैं वो चुने हुए हैं और ये गीत मेल खाते हैं यकीनन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो आपने बहुत अच्छी लिखी और आपके लिखे पोस्ट या कहे गए वाक्य हमेशा दिल को छू जाते हैं। यही सब कारणों से हम सब के तार विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और आपकी भी बातें बहुत अच्छी होती हैं श्रोताओं, जिससे हम भी आपसे जुड़े हुए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि दूरी की धुंध में लिपटे वो पुराने दिन आज भी रेडियो की धीमी सरगम बनकर दिल के किसी कोने में बज उठते हैं। जब शामें इतनी तेज नहीं भागती थीं और इंतजार में भी एक मिठास होती थी। किसी अपने का सलाम हवाओं की पालकी पर बैठकर आता था, कभी खत बनकर तो कभी किसी फरमाइशी गीत की आवाज में। वो छोटा सा रेडियो जिसकी जाली पर उंगलियां फेरते हुए हम जाने कितनी दूरियों को छू लेते थे। तरंगों पर तैरते गीत कभी उदास रातों का सहारा बनते, तो कभी भीगी आंखों में किसी बिछड़े चेहरे की रोशनी जगा देते। ये गीत उन परदेसियों के नाम बस इतना सुनते ही दिल की धड़कनों में पुरानी गलियां उतर आती थी। लगता था जैसे देहरादून से रंगून तक फैली दुनिया एक ही धुन में सांस ले रही है। अब वीडियो कॉल में चेहरे तो दिख जाते हैं।

0: फैंटेसी अभिनेत्री अमिता पर फिल्माया गया ये गीत था गूंज उठी शहनाई फिल्म का। और आप अगर संगीतकार बता दें तो क्या ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है, दूरी कितनी भी क्यों ना हो, दूर दूर बिखरे हुए रेडियो मित्र एक परिधि में आ ही जाते हैं। जब विविध भारती से सुरीला सफर शुरू हो जाता है, ध्वनि तरंगों की पालकी से आता हर परदेसी अपना सा लगने लगता है और अपनी दास्तां बयां करता है। और धन्यवाद भी इन्होंने लिखा है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं, दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों की आवाज और अपनापन कभी नहीं रुकता। हवाओं, तरंगों और सुरों के सहारे भावनाएं एक जगह से दूसरी जगह तरंगों से पहुंचती रहती हैं। कभी यादें बनकर, कभी संदेश बनकर, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि उन अनकहे एहसासों का साथी है जो लोग एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। बदलते समय में चिट्ठियों की जगह वीडियो कॉल ने ले ली है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वही है। अपनापन, यादें, संवाद, दूरियों के बावजूद रिश्तों की नजदीकी और सुरों की मिठास को बहुत खूबसूरती से महसूस रेडियो से किया जा सकता है। जी हाँ, और ऐसा ही टेलीफोन से भी होता है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का मेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।

श्रोताओ, फिल्मी दुनिया के एक बड़े दिग्गज सितारे थे जो रेडियो से ताल्लुक रखते थे। क्या आप उन सितारे को पहचानते हैं? तो हमें जल्दी से लिख भेजिए।

पतंगा फिल्म का ये गीत और जो टेलीफोन आया वो रंगून से आया। शमशाद बेगम चितलकर की आवाजें थी। श्रोताओं, एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे दूर हो या पास हो, विविध भारती मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो, जहां हर रोज हवाओं पर लिखा जाता है सुरीला सलाम हम अनजान श्रोताओं के नाम। फिर वो बरसात की भीगी रात हो या दिन की फुहार, जिंदगी भर भुलाई नहीं जा सकती। सुरों की बरसात जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जब उसे रूबरू देखा दिल बोल उठा, कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, रेडियो से कर गया अजब इशारे, बस और कुछ नहीं कहना, दूरी न रहे कोई, तुम रेडियो के इतने करीब आ जाओ। आइए मिलते हैं 1 बजे, सुरीला सफर की बागडोर संभाल रही हैं। इन्होंने लिखा है हमारा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और हाँ, ये बात तो जरूर है, आरती फिल्म का ये गीत है जिसे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये गीत था कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, जो रिकॉर्ड पर शुरू होता है। और आज जो कड़ी थी वो ये थी कि हमने रेडियो माइक और टेलीविजन स्क्रीन के गीत चुने थे, ग्रामोफोन भी आरती फिल्म में दिखाई दिया, टेलीविजन स्क्रीन का जो गीत है कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, ये आज हम नहीं आपको सुनवा पाए। अगले कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि आप तक ये गीत जरूर पहुँचे।

हमारी एक शोधा ने लिखा है, श्रोताओं की देखना है आपके टेक्स्ट से मेरे कयास लगाए हुए गीत कितने मिलते हैं, उसी हिसाब से मैं अपने आप को मार्क्स दूंगी। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, तो भाई आप अपने गीत देखिए, और ये भी गीत आप सुन चुके हैं तो बस मार्क्स दे दीजिए।

0: श्रोताओं नमस्कार, आज है विश्व दूर संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। विश्व दूर संचार दिवस प्रत्येक वर्ष के 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानव सभ्यता के संचार के महत्व, उसकी प्रगति और उसके भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए समर्पित है। आज का युग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, यानी सूचना और प्रौद्योगिकी का युग, जहां दूर संचार ने दुनिया को एक छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को दूर संचार के महत्व के प्रति जागरूक करना है, डिजिटल विभाजन को कम करने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

दूर संचार का अर्थ है दूरी पर स्थित व्यक्तियों का या स्थानों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना। पहले के समय में संदेश पहुंचाने के लिए दूत, कबूतर या डाक का सहारा लिया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था। परंतु आज के मोबाइल फोन, इंटरनेट, उपग्रह और अन्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कुछ ही सेकंड में संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी आसानी से भेजा जा सकता है। यह परिवर्तन ना केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि मानव जीवन को सरल और गतिशील बनाने का आधार भी है। विश्व दूरसंचार दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा की गई थी और 17 मई 1865 को इस संगठन की स्थापना हुई। दूरसंचार का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन कक्षाएं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय ज्ञान को कितना सुलभ बना देते हैं। चिकित्सा के लिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों से सलाह ली जा सकती है। व्यापार उद्योगों के लिए ई कॉमर्स और डिजिटल लेन देन से आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। सामाजिक जीवन में भी सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? Karo kya dial number?
2: हालांकि दूर संचार के विकास के साथ कई सारी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता की समस्या, डिजिटल असमानता, ऐसी कई सारी गंभीरता से विचार करने वाली बातें भी समक्ष आती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी सुविधाओं का अंतर एक बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है, इसे भी दूर करना है। तो इन्हें दूर करने के लिए बहुत सरल सी बात है कि हम अपने आप को साइबर अपराधों से बचा कर रखें। यानी हमारे पास अगर कोई OTP नंबर पूछता है तो वह हम उसे ना दें, या फिर हमारी कोई अपनी गोपनीय बातें या गोपनीय जानकारी सभी के समक्ष प्रस्तुत ना करें। इसके साथ ही और भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत हम हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस हमें अवसर प्रदान करता है कि हम इस क्षेत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन कर लें, भविष्य की दिशा तय कर लें और अपने जीवन को डिजिटलाइज करके तकनीकी रूप से निर्माण कर सकें। दूरसंचार आधुनिक जीवन की धड़कन बन चुका है और यह सूचना का ही नहीं रह गया माध्यम केवल, यह बन चुका है माध्यम प्रगति का, विकास का और वैश्विक एकता का। इसके महत्व को समझते हुए विवेकपूर्ण और सकारात्मक तरीके से हमें इसका उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और अधिक जुड़ी हुई दुनिया में जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसा समाज देना है। आज के दिन का यही उद्देश्य है।

आधुनिक तकनीकी युग में चार कदम संभल कर चलिए और चार कदम आत्मविश्वास के साथ और जी लीजिए अपने जीवन को पूरी पूर्णता के साथ में। आज की त्रिवेणी से आज्ञा दीजिए, विधि जैन को नमस्कार।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
4: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
3: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब यटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
5: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
6: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
2: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
7: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
8: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर

0: को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर के युगल सुरों में। गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म थी गंगा की लहरें। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

महेंद्र कपूर की आवाज में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत था, राजन कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओं, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़्मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलो, नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और अभिजीत गवाणकर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर की ये फरमाइश थी। मंचा गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देवबर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओं, लेकिन अपना अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहां से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती, ये फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से आप दीजिए संगीत।

यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला?
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
1: जी,
2: अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप,
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुईया, देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ, चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचाए।
1: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुईया, चली गई
0: तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक तो यहाँ उपस्थित है
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा चलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य

0: तुम हरे अधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
1: ये क्या कर रहे हैं आप?
2: अरे चक्री, अब अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
1: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रही हैं। आर्या, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
0: ठीक है।
2: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
1: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
2: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
1: अच्छा,
2: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
1: हाँ चलो माँ। चलना ही होगा, अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है। मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
0: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब इस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
3: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए, यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मुगलाने लगे हैं। तपोवन की पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
4: ओ, इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया, मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कण्व को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और सहयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसल, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसे तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: अनर्थ हो गया, लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा ले, तब तक मैं अर्ध का जल लेकर आती हूँ। जा जल्दी जा।

0: फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो, इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर लें।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए। बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: ये तो दिन निकल आया। कितना मनोहर दृश्य है, एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ये अनुसुया उठ ना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू ही तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
2: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे आकाशवाणी हुई।
3: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
2: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
2: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
1: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
4: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
2: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखता अनुसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, ये पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है, तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ, माँ,
3: प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो। अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवन।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो, और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
1: तपोवन से बिछड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो और उन्हें नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणिया भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा बाबा बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुया मेरी सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
2: बेटी निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप वर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
3: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
4: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
2: हाँ शारंग्रह, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
4: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करे भगवान।
2: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
0: बाबा बाबा,
2: पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
0: बाबा,
2: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
3: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा।
0: प्रियमता
1: आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
0: सखी तो क्या
1: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
2: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
1: अनुसुया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी? बोलो।
2: इतनी अधीर न हो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
1: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
3: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो मैं ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
1: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
3: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
1: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
4: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
2: हाँ शरण करो, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहाँ के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

0: कन्या सचमुच परायधन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जहां पे सवेरा हो।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त क्या कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
0: जी जी जी।
1: हाथ वाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म, एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं, जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह था भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई,
0: हाँ,
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
0: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई, आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में सिटिंग था ना मैं,
1: जी जी,
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो जो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था, मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटा एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं कहूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। हाँ। जी जी,
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके,
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था, तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी,
0: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है, तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए, बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले, तो मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखे अगर तो ये स्टोरी आइडिया है, तो उन्होंने सुनो ने कहा ये आठ फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ, जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें, तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे तीन चार साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले, और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई औरत, और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे, तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी ही दोस्त उनका ही करना है ये सब, तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए, तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी,
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। हाँ, मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी,
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला अरे ये तो है देख ले तू, तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे हम, और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया।
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना।
1: हाँ।
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा क्यों छोटा है, फला क्यों नहीं, मेरा रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं थी
1: जी जी जी।
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँ।

0: वाह,
1: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
0: अरे वाह,
1: असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई।
0: हाँ।
1: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
0: बहुत बड़ी बात,
1: नया बन रहा था।
0: पहली फिल्म थी आपकी?
1: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से। वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना बोले जाओ भाई दूसरे के पास, हम नहीं करेंगे
0: जी।
1: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर, जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
0: हाँ हाँ।
1: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे, वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है यश जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन राय जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहा है। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरे आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिकर बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा,
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे। ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली
1: भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप।

0: उसको अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया मैंने जैसी चीज़ कहा ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं उससे मिलने गया, बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया करेगा पिक्चर, बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे, बोला करूँगा। और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छे गाने चले।
0: बहुत नहीं, फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास
1: अच्छा
0: करने के लिए, तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा।
1: ओ
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था घर में, वो कुछ हुआ था ऐसा।
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, ऐसा तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है, मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर,
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है?
0: भाई इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर, कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो, तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर ने कह दिया था क्या मेरे साथ करो पिक्चर, एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, साइन में रहता था, तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था, उसे का शॉर्ट वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरे एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर, मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अगली,
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर एक पिक्चर, दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा तब मेरी अपनी नहीं होगी, तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था, ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है रमेश तलवार को ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: मराठी में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया, तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया, तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदतें फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे,
0: हाँ।
1: एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छः महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
0: यस
1: ये था, रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ एक महीने बाद आऊँगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था, तो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए, तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया, जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी है ये है, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा,
0: वाह वाह
1: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आ जा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे, आपका और आर डी बर्मन का वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप,
0: बाबा
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लग रहा डायलॉग एंड मोरिंग करना, तो मैं स्क्रीन प्ले लिख स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग्स ऐसा, तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगेगा कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया, तो उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था
0: आइडिया,
1: मद्रासी फिल्मों की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, और गाने लिखे और हो गया, अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं,
0: हाँ ये कौन आए,
1: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ,

0: मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो।
1: उन्होंने ही बोला?
0: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी और मूडी किस्म की है मेरे को। बोले मैं अभी फोन करती हूँ। उन्होंने फोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
1: हाँ।
0: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर। एल्बम वेल्बम देख रहे पुराने किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों के एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा जी ऐसा सुना लो लंच खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी। मैंने कहानी पूरी सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश बहल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया। रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब साहब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा? शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे। हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक इलस्ट्रेटेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तो उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, वो मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पर, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया सुबह उनके फ्लैट पे, उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी। रोल छोटा था, 420 की, मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊँ लोग कहे शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है,
1: हाँ,
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके,
1: हाँ,
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे आ जाओ, सुबह हाँ, नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे।
0: और फिर कर अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे, करूंगा तेरी। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहां पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ हो गई। और मतलब ये है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी से निकल, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया, वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करो, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून

हाँ ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है कि बोलो ठीक है थोड़ी, वैसे भी तू एक सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो और दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं
1: नहीं बहुत अच्छे रहते मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी, इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया, स्पेशल डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूंगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है, सेट पे आओ शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी,
0: वाह वाह,
1: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है। या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड, ट्यूसडे नहीं करूंगा सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता हूँ।
0: और
1: शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहां पहले शिफ्ट करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम,
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की,
0: हाँ,
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार,
0: हाँ,
1: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूँगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता हूँ, ऐसे नहीं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन तू भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर वोट सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर,
0: बाबा
1: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, वही क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा? वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बार बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडी करके आया, ठंडी में कांप रहा हूँ, साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कोनियाक पी, नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन भी डाला हुआ है।
0: अच्छा,
1: यश जी को मैंने सुनाया था कोनियाक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनियाक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था बियर पीनी है, तो मैं गर्म बियर पीता हूँ।
0: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5 बजे हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए।

शाम 5:30 बजे युवाणी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे विश्व दूर संचार और सूचना समर दिवस पर। इसके अलावा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस विषय पर भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप सुनेंगे युवा फरमाइश।

गीता संदेश कार्यक्रम में शाम 6:20 पर आज आप सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 16 से 19 तक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर विशंभर दास।

आज शाम 6:30 बजे थारे संदेश मारे गीत कार्यक्रम प्रसारित होगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय जवान सुनिए शाम 7:30 बजे। गैर फिल्मी रचनाएं हम सुनेंगे गुलदस्ता कार्यक्रम में शाम 7:45 पर। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रस्तुति अमरिक सिंह की होगी। रात्रि 8:30 बजे हम लेकर आएंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज रविवार है तो आज रात 10 बजे आप सुनते हैं फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो FM, प्रस्तुतकर्ता विनय श्री खुराना। विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित होंगे 9:15 पर, कार्यक्रम आपके लिए। छाया गीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:30 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने विविध भारती केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समाचार रिले होंगे 6:00 बजे, 6:05 पर, रात्रि 8:45 पर, रात्रि 9 बजे, रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। प्रादेशिक समाचार रिले होंगे 6:10 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है, एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है शाम के 5:05। सुनते हैं कार्यक्रम गाने नहीं पुराने।

गाने नए पुराने कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। दोस्तों, हम फिर से ले आए हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में पुराने और नए गीतों का एक ऐसा संगम जो आपको लुभाएगा, और उम्मीद करते हैं कि कानों के रास्ते आपके दिल में एक खुशी महसूस होगी। इस कार्यक्रम में हम वो गाने सुनते हैं जो अक्सर हम गुनगुनाते हैं। आइए सबसे पहले शोले फिल्म का गीत सुनते हैं, और ये गाना बहुत मकबूल हुआ अपने दौर में। आर डी बर्मन साहब ने बड़ी शिद्दत से गाया है इस गाने को। आनंद बख्शी ने गीत लिखा, संगीतकार खुद आर डी बर्मन ही हैं।

और दोस्तों, इस बहुत ही मनभावन गीत के बाद सुनते हैं ताल फिल्म का ये गीत, आशा भोंसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

दोस्तों, ताल फिल्म का ये बहुत मनभावन गीत आपने सुना। और आइए अब सुनते हैं हमसे है मुकाबला, इस फिल्म का ये दो गाना, मनो और स्वर्णता की आवाज में। पी के मिश्रा का लिखा हुआ गाना ही, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

और आइए दोस्तों, अब लौटते हैं पुराने दौर में। अंधा कानून फिल्म का ये गाना सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

दोस्तों बंधा कानून फिल्म के इस गाने के साथ है आज का गाने नए पुराने अब समाप्त होता है। प्रदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुने थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 बजे हैं। आइए सुने युववाणी कार्यक्रम।

युववाणी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को प्रदीप का नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपसे आज के दिन की खास जो जानकारी है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि आज है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। इस विषय पर हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। साथ ही हम आपके साथ चर्चा करेंगे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस विषय पर, यानी हाई ब्लड प्रेशर डे है आज, और इस विषय पर भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही युवा फरमाइश आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम फरमाइशी गाना सुनते हैं। मुन्ना माइकल फिल्म का ये गीत है, प्रणय रिजा और राहुल पांडे के स्वर में। और इस गीत को सुनने के लिए ये सभी श्रोता हैं जिनकी फरमाइश हमारे पास आई। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चना ताई गोड़ाने, हीरावन शेड़े, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोड़ाने। पटना से नेहा कुमारी, हरिशंकर की फरमाइश है। गांव टोरवाल से गगनदीप थाड़ी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रेम थाड़ी, बेबी वामिका और वाणी थाड़ी। शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनु साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी इस गीत को सुनना चाहे। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह राहुल। गांव जगूड़ी यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेज, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन और मनराज इस गीत को सुनना चाहते हैं। दरियापुर भामली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, सुशील येले। श्री वडनेर अकोला से आदित्य दामोदर, अरुणा दामोदर। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। आइए आप सभी सुनिए मुन्ना माइकल फिल्म का ये गीत, आपकी नजर।

0: छह स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: दोस्तों आज यानी 17 मई और आज के दिन पूरी दुनिया में विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों हर साल 17 मई को ये दिवस मनाया जाता है यानी 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। ये दिन मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को संचार तकनीकों और सूचना के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। आज मोबाइल इंटरनेट वीडियो कॉल सोशल मीडिया और डिजिटल सेवाओं ने दुनिया को बहुत ही छोटा बना दिया है यानी आज हमें दूरियों का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज मोबाइल और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। सोचिए जरा, एक ज़माना ऐसा था कि जब संदेश पहुंचाने में बहुत दिन लग जाते थे और उसके बाद डाक का दौर आया, उसके बाद टेलीफोन ने दूरियों को कम किया और आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हमारी हथेली पर ला दिया है। किसी ने कहा कि तारों से शुरू हुआ था सफ़र कभी, अब हर दिन ऑनलाइन नज़र आता है। दूरी चाहे लाखों मीलों की हो, एक क्लिक में अपना घर नज़र आता है, है ना? भाई दूरसंचार ऐसी ही बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है और दूरसंचार केवल बातचीत का माध्यम नहीं रहा बल्कि शिक्षा स्वास्थ्य व्यापार बैंकिंग और आपदा प्रबंधन तक हर क्षेत्र की ताकत बन चुका है। अब देखिए ना, आज गांव में बैठा हुआ किसान मौसम की जानकारी मोबाइल से हासिल कर रहा है, है ना? एक विद्यार्थी अपने घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर रहे हैं और परिवार वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हमें इंटरनेट का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। फर्जी खबरों से, साइबर अपराधों से, डिजिटल धोखाधड़ी से हमें बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। किसी ने कहा है कि ज्ञान का दीप जलाए रखना, तकनीक को सही दिशा मिलाना, सूचना का हो ऐसा समाज जहाँ हर चेहरा मुस्कुराना जानता हो। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के अवसर पर हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों यही कहना चाहते हैं कि कोई भी तकनीक दूरसंचार के क्षेत्र में तभी सफल है जब हम उस तकनीक का इस्तेमाल सावधानी से करें और वो तकनीक हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो हमारे देश के किसी भी कोने में रहता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, हर व्यक्ति तक दूरसंचार की पहुंच होनी जरूरी है। आज हमें जरूरत इस बात की है कि डिजिटल साक्षरता, जिसकी समझ हर व्यक्ति तक पहुंचनी बहुत जरूरी है और हमें सूचना तकनीक का, दूरसंचार तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षा के साथ करना है, सावधानी के साथ करना है। और कार्यक्रम के माध्यम से हम तो अपने श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं कि संचार से जुड़े दिलों के तार, ज्ञान बने हर घर का आधार, तकनीक का हो सुंदर उपयोग, तभी बनेगा भविष्य हमारा शानदार, है ना? तो भाई सूचना तकनीक के साथ जुड़े रहिए और फिलहाल आप ध्वनि तरंगों के

हमारे साथ जुड़े हैं, और क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। और ये गाना बधाई हो फिल्म से है, गुरु रंधावा नेहा कक्कड़ की आवाज है, मेलोडी का लिखा हुआ गाना है, संगीतकार हैं तनिष्क बागजी। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश हमारे पास आई है। हमारे श्रोता हैं गांव पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलखंड वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी, राजिम और रजमत वर्मा। फरमाइश की है गांव पीपल और सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। दरियापुर भामली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, सुशील येले, शेरी वडनीर अकोला से आदित्य दामोदर, अरुणा दामोदर। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा, नूर। दुर्गा कॉलोनी हाथी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पदमपुरा गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। फरमाइश की है गाड़गी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षता लोखंडे। मालियन सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीव्यम जैन। सुनते हैं बधाई हो फिल्म का ये गीत मोरनी बन के।

0: मोरनी बनके।
1: जी हाँ दोस्तों, इस गीत के बाद आइए आप एक और जानकारी हम आपको देते हैं। श्रोता दोस्तों, आज जैसे कि 17 मई है और पूरी दुनिया में आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जा रहा है। श्रोता, आज का जो ये दिन है, ये इस विषय पर बहुत गहराई से चिंतन करने का दिन है, क्योंकि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान सब कुछ जीत लेना चाहता है। आज का इंसान नाम चाहता है, पैसा चाहता है, सफलता चाहता है, लेकिन इस दौड़ में कहीं पीछे छूट जाती है उसकी सेहत, और जब दिल पर दबाव बढ़ने लगता है तो जिंदगी चुपचाप हमें चेतावनी देने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उच्च रक्तचाप की। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर हम बात करेंगे इस बीमारी की, जो अक्सर बिना आवाज किए शरीर को कमजोर करती रहती है, यानी उच्च रक्तचाप, यानी हाई ब्लड प्रेशर। किसी ने कहा है कि गुस्से की आग हो या चिंता का भार, धीरे धीरे बढ़ा देता है रक्त का दबाव अपार। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर केवल एक बीमारी ही नहीं बल्कि कई गंभीर रोगों की शुरुआत भी हो सकता है। दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, किडनी की समस्या, इन सब की जड़ बन सकता है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप। और जब हमें इस तरह की दिक्कत परेशानियां महसूस होने लगती हैं तो शरीर बार बार हमें संकेत देता है। किन बातों का? शरीर में थकान महसूस होती है, सिर दर्द होता है, बेचैनी रहती है, नींद कम आती है। ये सब अगर कारण हमारे सामने होते हैं तो उच्च रक्तचाप के संकेत हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल हमेशा मुस्कुराता रहे तो सुबह की सैर को आदत बनाइए, संतुलित भोजन अपनाइए, नमक हम कम खाएं, तनाव को खुद पर हावी मत होने दें, धूम्रपान और शराब जैसी चीज़ों से दूर रहें, समय समय पर रक्तचाप की जांच जरूर कराएं। दोस्तों, अब देखिए ना कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि स्वस्थ दिल और उसकी सबसे प्यारी होती है धड़कन। जो अपने दिल का ख्याल रखता है वही जिंदगी को खुशहाल रखता है। ना तनाव को दिल में बसाएं, ना सेहत को नो भुलाएं, हर धड़कन को सुरक्षित रखकर स्वस्थ भारत अपना बनाएं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, यानी रोज कम से कम 30 मिनट हम एक्सरसाइज करेंगे, भोजन में नमक और तैलीय चीज़ें कम लेंगे, हरी सब्जियों का हम सेवन करेंगे, फल ज़्यादा खाएंगे, तनाव कम करेंगे, नींद भरपूर लेंगे, यानी हम लोग रात को देखते हैं ना कि अपने मोबाइल को हम देखते रहते हैं और समय का पता नहीं चलता, और समय का पता नहीं चलता तो नींद हमारी ख़राब हो जाती है। नींद हम अगर हम कम लेंगे तो इसका हमारी सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमें समय समय पर अपना चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हम अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो हमें अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना होगा और जागरूक रहना भी चाहिए। समय समय पर हमें अपने रक्तचाप की जांच करानी चाहिए, और अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद ना करें, स्वस्थ आदतें अपनाएं। और अगर हम अपनी आदतों को सुधारेंगे, अपनी आदतों को संवारेंगे तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस विषय पर हम सभी संकल्प लें कि तनाव को दूर भगाएंगे, स्वस्थ जीवन अपनाएंगे, दिल की धड़कन मुस्कुराएगी जब सेहत को हम प्राथमिकता देंगे, है ना। तो आइए अपने दिल को सुकून देते हैं और ये बहुत प्यारा गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए घराना फिल्म से। अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में ये गाना है और भाई ये गाना पसंद किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद गांव दुल्लापुर से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसराहत नरगिस खातून, कुमारेडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। इसी गीत की फरमाइश आई है खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बोडाना। हिंगोली महाराष्ट्र से साजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े। सल्लार पहलगांव कश्मीर से फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा सतबीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्य बिजारनिया। जोगीवाला गंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका, मनीष सहारन। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रांझ, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमा, पाली, सुनील पाठा, वीकेपुरी और विनोद। सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर घराना फिल्म का ये गीत और ये गीत जरूर इस बात के लिए भी आपको सुकून देगा क्योंकि आज विश्व रक्तचाप दिवस है। और आइए अपने धड़कते दिल की ये प्यारी सी जो एहसास है वो महसूस करें।

तो दोस्तों, धड़कते दिलों की इन खूबसूरत धुनों के साथ अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है प्यार, एहसास और जज्बातों से सजे इस सफर ने आपके दिल को कहीं ना कहीं छू लिया होगा। दिल की धड़कनें यूं ही मुस्कुराती रहें, जिंदगी हर पल नए गीत गुनगुनाती रहें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और इस गर्माहट भरे मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखें। जुड़े रहें आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ। प्रदीप को दीजिए इजाजत। नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम एफएम 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ क्षण में हम सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi arrived in Gothenburg, Sweden this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. He was received at the airport by the Swedish Prime Minister Ulf Kristersson. During his two-day visit to Sweden, Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart and review the entire gamut of bilateral relations. The two sides are also expected to explore new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Two prime ministers will also jointly address the European Round Table for Industry, a leading pan-European business forum, along with the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Before departing for Gothenburg, Dutch Prime Minister Rob Jetten personally came to Amsterdam Airport to bid farewell to Prime Minister Modi. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals, and other key sectors. Both leaders also expressed deep concern over the situation in West Asia and its implications for global energy supplies and trade networks. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design NID in Gandhinagar, Gujarat. Speaking on the occasion, Mr. Shah highlighted the importance of the National Institute of Design, saying it is an institution that connects creativity with entrepreneurship. He said institutions like NID provide youth with the right platform for innovation and professional development. Mr. Shah, who is on a two-day visit to Gujarat, also inaugurated a newly built 5 lakh litre capacity plant of Madhur Dairy in Gandhinagar today. Union Railway Minister Ashwini Vaishnav today virtually flagged off a new express train service between Bengaluru and Mumbai, boosting rail connectivity between Karnataka and Maharashtra. Speaking on the occasion, Mr. Vaishnav said the long-pending demands of people in South and North Karnataka are now being fulfilled. He also announced that the Vande Bharat sleeper service between Bengaluru and Mumbai is expected to begin soon. Highlighting railway infrastructure growth, the minister said, Karnataka currently operates 12 pairs of Vande Bharat trains. He added that bullet train corridors connecting Bengaluru with Hyderabad and Chennai have also been approved. India has strongly condemned attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz, calling them unacceptable. India's permanent representative to the UN, Parvathaneni Harish, said targeting civilian crew and disrupting freedom of navigation cannot be justified. He was speaking at a special meeting of the United Nations Economic and Social Council on safeguarding global energy and supply flows. Mr. Harish's remarks came days after an India-flagged commercial vessel was attacked off the coast of Oman. In the United Arab Emirates, a drone strike triggered a fire outside the Barakah nuclear power plant in Abu Dhabi today. According to the Abu Dhabi Media Office, the blaze broke out in an external electrical generator located outside the plant's perimeter. Authorities said there were no injuries and no impact on radiological safety levels. The UAE's nuclear regulator confirmed that the fire did not affect the plant's operations or safety systems, adding that all reactor units continue to function normally. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru have set a target of 223 runs for Punjab Kings in Dharamshala. Chasing the target, Punjab Kings were 62 for 4 in 7.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Royal Challengers Bengaluru posted 222 runs for the loss of 4 wickets in their allotted 20 overs. In badminton, India's Shreyansi Vali Shetty clinched the silver medal in women's singles at the Baoji China Masters in China today. She went down to local favourite An Chi Yuan in straight sets 14-21, 6-21 in the summit clash of the Super 100 event at Baoji City Gymnasium. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप के नाम पर अध्ययन केंद्र और चेयर स्थापित करने की घोषणा की। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना के गांव हरनामपुरा में करीब 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव मानकौल में करोड़ों रुपयों के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिसार केंद्र द्वारा संगीत कार्यक्रम एवं मैराथन का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने हरियाणा विज्ञान रत्न और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप के नाम पर अध्ययन केंद्र व चेयर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं आज अंबाला के शहजादपुर में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत आयोजित महाराणा प्रताप जयंती के राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहजादपुर के बड़ागढ़ में स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय का नाम बदलकर महारानी पद्मावती राजकीय महाविद्यालय किया जाएगा।
1: साथियों, आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र खोल करके वहाँ पर महाराणा प्रताप के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी। साथियों, अभी मांग पत्र में एक बात और भी कही गई है कि राजकीय महाविद्यालय बड़ागढ़ सजादपुर का नाम भी रानी पद्मावती राजकीय महिला महाविद्यालय बड़ागढ़ सजादपुर रखा जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इस महिला राजकीय महिला विद्यालय का नाम महारानी पद्मावती राजकीय महाविद्यालय के नाम से वो किया जाएगा।
0: उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए, राजपूत छात्रावास के निर्माण कार्य के लिए 31 लाख रुपए देने तथा शहजादपुर के कच्चे नाले को पक्का करवाए जाने की भी घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की नवीकृत प्रतिमा का अनावरण भी किया। समारोह में मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धा थे जिनका नाम लेते ही रोम रोम में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगती है। इनका नाम सुनते ही हृदय गर्व से और आंखें श्रद्धा से भर जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें ये संदेश देता है कि जब तक स्वाभिमान जीवित है तब तक हमारी आत्मा जीवित है। देश की सभ्यता व संस्कृति पर कोई आंच न आने देने उनके सिद्धांत आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज नरवाना उपमंडल के गांव हरनामपुरा में करीब 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा,
2: गाँव के सरपंच और पंचायत ने यहाँ पर 11 लाख रुपए की लागत से HRDF के बजट से एक बहुत ही सुंदर गली जो दादा खेड़े के लिए रास्ता नामपुरा में नहीं था, आज उसका उद्घाटन करने का हमने काम किया। और तो महिलाओं की मांग है, हमारे पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो मैंने अधिकारियों से भी बात की है और जो इनकी माइनर है वहाँ पर अभी एक ट्यूबल कनेक्शन करा के इन्हें 1 महीने के अंदर अंदर इनको पानी देने का हम काम करेंगे, ऐसा मैं आपके बीच विश्वास देता हूँ। और लगभग 18 लाख रुपए की लागत से इन्होंने एक दादा खेड़ा कमेटी ने और महिलाओं ने यहाँ पर एक शेड की मांग की है, उसको भी आज घोषित करके जा रहा हूँ, 1 महीने के अंदर उसको भी भरवाने का काम करें।
0: ईंधन की कीमतों को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बेवजह दुष्प्रचार करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है।
2: कांग्रेस के लोगों का बेवजह दुष्प्रचार करना आदत है। इस प्रकार की परिस्थितियां और हालात है पूरी दुनिया का, इस सारी देशों के युद्ध के कारण उसके अनुसार देश की सरकार को निर्णय लेना पड़ रहा है। किसी को ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले 12 रुपए डीजल पर 10 रुपए पेट्रोल पर टैक्स लगाने का भी काम किया है, लोगों को युद्ध के दौरान भी हमने राहत देने का काम किया, आगे भी देने का काम।
0: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ संदेश का समर्थन करते हुए आमजन से सामूहिक यातायात के साधनों जैसे मेट्रो बस और रेल का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत और सामूहिक संसाधनों का उपयोग देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने में मददगार साबित होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज पलवल के गांव मानकौल में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें करीब 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित भगवान परशुराम भवन, 85 लाख रुपए की लागत से बनाए गए विभिन्न रास्तों, 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित विलेज नॉलेज सेंटर तथा करीब 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित बघेल धर्मशाला शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भगवान परशुराम को नमन करते हुए कहा,
3: एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपने समय में कमजोरों के लिए, निर्धनों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा शस्त्र उठाया। उन्होंने शस्त्र उठाया अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ।
0: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि गांव मानकौल में इन विकास कार्यों से गांव की आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी तथा सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों को नया विस्तार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि गांववासियों की अन्य मांगे भी पूरी की जाएंगी।
3: कुछ मार्केटिंग की है, कुछ पब्लिक हेल्थ की है, कुछ बिजली की है, तो तमाम डिपार्टमेंट से जल्दी से जल्दी उसको कराएंगे। तो हरियाणा सरकार लेवल के उनसे कराएंगे और जो मेरे स्तर पर हो सकती है वो करेंगे। उन्होंने पहले भी उनको करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए दिए हैं, अब भी उनको करोड़ रुपए विकास के लिए, गांव के विकास के लिए हम और देंगे, ये मैंने उनको भरोसा दिलाया है।
0: उन्होंने गांव के विकास के लिए सांसद निधि कोष से 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हिसार केंद्र द्वारा संगीत कार्यक्रम व मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष बहुत ही गौरवपूर्ण रहे हैं। एक समय में आकाशवाणी ही हमारे पास सूचना, जानकारियों व मनोरंजन का माध्यम था। बदलते परिवेश में आज भी आकाशवाणी उतनी ही प्रासंगिक है।
4: आकाशवाणी के आज 90 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं आकाशवाणी को इससे जुड़े हुए सभी जो संसाधन करने का काम करते हैं, इसके लिए तुमको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आकाशवाणी हमारे पास चाहे वो सूचना का माध्यम होता था जिससे हम समाचार सुनते थे, चाहे एंटरटेनमेंट का ये गाने सुनने की बात हो, चाहे इन तमाम चीजें केवल और केवल एक माध्यम हमारे पास होता था, ये आकाशवाणी रेडियो से हम सुनते थे। और आज तमाम माध्यम प्रधानमंत्री जी की जब मन की बात सुनते हैं तो वो भी आकाशवाणी से हम सुनने का काम करते हैं।
0: कैबिनेट मंत्री ने मैराथन को भी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने कहा कि आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस मैराथन दौड़ का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2026 के लिए घोषित इन पुरस्कारों के तहत हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार में चयनित वैज्ञानिक को 5 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। ये पुरस्कार उन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के लिए है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसी प्रकार हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार में 40 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को 1 लाख रुपए की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। ये पुरस्कार युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और राज्य में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हरियाणा में चल रही जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं आवास गणना के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, नगर निगम आयुक्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक कर इस राष्ट्रीय कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की तैयारियों का आकलन किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नारसिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप के नाम पर अध्ययन केंद्र और चेयर स्थापित करने की घोषणा की। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना के गांव हरनापुरा में करीब 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव मानकौल में करोड़ों रुपयों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
5: FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। गीता संदेश कार्यक्रम में आज सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 से लिए गए श्लोक 16 से 19 तक की व्याख्या। व्याख्याकार हैं डॉक्टर विशंभर दास।
6: श्रोताओं, आज गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 15 से आगे के श्लोकों की व्याख्या प्रस्तुत है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानो वर्तयति हयः अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र और प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों के वश में रहकर ही जिंदा रहता है, जीता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीने और मरने का कोई प्रयोजन नहीं होता। चारों वेदों, पुराण आदि शास्त्रों में सृष्टि क्रम आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उन्हीं के अनुसार हमें जीवन यापन करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में चक्र शब्द का अर्थ है घटनाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अपने कर्तव्यों को करते हुए सृष्टि क्रम को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देती है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे अपनी इच्छा से अपने कार्यों को चुनने की शक्ति प्रदान की गई है। जब मानव समाज के अधिकांश लोग सृष्टि प्रक्रिया में योगदान देते हैं और उसमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक विकास होता है। इसके विपरीत जब मानव जाति इस व्यवस्था का उल्लंघन करती है तो प्रकृति उसे दंडित करना शुरू कर देती है, शांति और समृद्धि की कमी हो जाती है। ईश्वरीय नियमों का पालन न करने वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है और पापपूर्ण जीवन जीता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों को करे। यस्त्वा आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और अपने आप में तृप्त एवं संतुष्ट है, उनके लिए इस संसार में कुछ करने योग्य नहीं है। यहाँ आत्मा में रमण, अपने आप में तृप्त व संतुष्ट से तात्पर्य ज्ञानी जन से है, जिसने अपने आप को पहचान लिया है या उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिए इस संसार में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि केवल वे ही लोग संतुष्ट हो सकते हैं जिन्होंने बाहरी वस्तुओं की इच्छा छोड़ दी हो। बंधन का कारण हमारी इच्छाएं होती हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही इच्छा सभी पापों का कारण है, इसलिए उसे त्याग देना चाहिए। हमारे मन में भौतिक इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? जब हम अपने आप को एक शरीर के रूप में पहचानते हैं तो हम शरीर और मन की इच्छाओं को स्वयं की इच्छा के रूप में पहचानते हैं। जब आत्मा ने स्वयं को ईश्वर से अलग मान लिया तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि वह एक शरीर है, और यह भ्रम मनुष्य के दुखों का कारण होता है। जो आत्मा को दिव्य और अविनाशी मानता है उसे अपने अंतःकरण में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, और इसी अवस्था में आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। अर्थात उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वस्तुतः ऐसे महापुरुष जो आत्मा को और सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता ही नहीं। ऐसे महापुरुष कर्म बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं। इनका इस अवस्था में स्वार्थ से कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। इसलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से बिल्कुल अलग हैं। इन पर सांसारिक कोई भी नियम लागू नहीं होता, जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे हुए लोगों पर घटित होते हैं। इसलिए जिन्होंने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, उन्हें अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन वे उसे करने के लिए बाध्य नहीं हैं। भक्त प्रहलाद, ध्रुव, जनक आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन किया। वे सभी कर्मयोगी थे, वे केवल अपने शरीर द्वारा ही कर्तव्यों को निभा रहे थे, पर आंतरिक रूप से तो उनका मन भगवान से जुड़ चुका था। तस्मात् सक्तः सततम् कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित कार्य करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपनी आसक्ति और अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को अच्छे से करते रहो। अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लग जाओ, क्योंकि आसक्ति से या लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आज के चुनौतीपूर्ण समय में आसक्ति रहित कर्म करना अति आवश्यक है। हर कोई व्यक्ति आज प्रत्येक कर्म किसी न किसी इच्छा से ही करता है और उस फल के प्रति उसकी इतनी आसक्ति हो जाती है कि उसे प्राप्त करने के लिए वह बुरे से बुरे कर्म करने से भी नहीं घबराता, जिसका परिणाम हिंसा, भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि के रूप में समाज में घटित होते हैं। आसक्ति मनुष्य को अंधा बना देती है। ऐसा व्यक्ति सही गलत की पहचान भूल जाता है, फिर प्रशंसा, धन या यश की चाह में न करने योग्य कर्मों को भी कर बैठता है और फिर उसका दुखदायी परिणाम भोगता है। एकदम धनी बनने की इच्छा से व्यक्ति चोरी, डकैती आदि भयानक कार्यों में लग जाता है और इस लोक व परलोक में दुख भोगता है। इस प्रकार से समाज में असामाजिक तत्वों की वृद्धि होती है। आज मात्र थोड़े से धन के लालच में भाई भाई की, पुत्र पिता की, दोस्त दोस्त की जान ले लेता है। समाज में फैली हिंसा एवं भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण सकाम कर्म ही है। आज के युवा वर्ग की भौतिक विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो रही है। वह पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध से प्रभावित होकर उन्हीं विषयों में आसक्त हो उनकी प्राप्ति का चिंतन करता रहता है। तत्पश्चात इन्हीं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कम से कम समय में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वह चोरी, डकैती आदि निकृष्ट कार्यों में लग जाता है। आसक्ति का यही आकर्षण अंत में उसके पतन का कारण बनता है। आसक्ति युक्त कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति न होने से युवा वर्ग आज तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। प्रतिदिन न जाने कितने विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक आने से, मनपसंद नौकरी न मिलने से आत्महत्या कर लेते हैं। इस समस्या का एक ही समाधान है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वह है आसक्ति को छोड़कर कर्म करना। जो ऐसा करता है वह स्वयं को उन्नत कर समाज के कल्याण में योगदान देता है। श्रोताओं, आज आपने गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 16 से 19 तक की व्याख्या सुनी।
5: ये था हमारा आज का गीता संदेश कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के श्लोक संख्या 16 से 19 तक की व्याख्या। व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर विशंभर दास। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 बजे आइए सुनते हैं थारे संदेश, मारे गीत कार्यक्रम।

कार्यक्रम थारे संदेश मारे गीत सुनने वाले सारे बहन भाई ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, आज रविवार है और हमेशा हम ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं इसमें आपकी वो सभी पसंद जरूर करते हैं, चाहे भजन हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे रागणी हो, जिससे आपका अति जुड़ा हो और जो आपको बेहतर लगते हैं। क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती साथियों जो हमारी बोली में होती है वो मन को ज़्यादा भाती है, और जब हरियाणवी लोक संगीत की जब हम बात करते तो साथियों जो बोल होते गीत के, भजन के या रागणी के, वो ऐसा लगता भाई जैसे मैं ही गा रहा हूँ या कोई मेरे लिए इन गीतों को में जो शब्द है वो प्रस्तुत करे तो मेरे लिए है। तो एक अच्छा लगना लाजमी है, क्योंकि जब बात अपनी बोली की आती है और बोली में कोई चीज़ कही जाती है और उसमें संगीत परोया जाता है तो भाई सोने पर सुहागा ज़रूर हो जाता है। ऐसा ही हमारा जो कार्यक्रम है थारे संदेश मारे गीत, और इस कार्यक्रम में साथियों हम आपकी सभी पसंद ज़रूर लेते हैं। और ये आपके जो SMS या WhatsApp है उन के जो नाम आप लेते हो परिवार के, उनके भी ज़रूर लेते हैं और पसंद भी ज़रूर शामिल करते हैं। तो साथियों बिना किसी देरी के आप हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कीजिए, 9466021336, यानी 9466231336 पर आपके जो भी SMS या WhatsApp संदेश आते हैं उन पर आपके नाम भी ज़रूर लेंगे और आपकी पसंद के गीत भी ज़रूर शामिल करेंगे। तो भाई बिना किसी देरी के आज आप 1 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जो भी संदेश आएगा WhatsApp या SMS के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सभी पसंद को हम इसमें शामिल करें और नाम भी ज़रूर ले। तो साथियों आज कार्यक्रम की शुरुआत इसे लोकगीत से ज़रूर कर लेते हैं और फिल्म लंबरदार से हमने इसको लिया है। और हमारा फ़ोन नंबर आप ज़रूर नोट कीजिए, 9466231336 पर आप हमारे को SMS या WhatsApp ज़रूर कीजिए, 9466021336 पर। तो इंतज़ार रहेगा और ये प्यारा सा भजन सुनते हैं फिल्म लंबरदार से।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो साथियों, ये अपने फिल्म नंबरदार से भजन सुना, और अब हम आपके जो SMS या WhatsApp पे जो संदेश है उनको भी हम जरूर शामिल कर रहे हैं। और ये जो संदेश हमारे पास भाई, हम इसको ले रहे हैं, जो भाई ये सबसे पहला संदेश हमने भाई ये लिया है रणधीर सिंह बांगड़ मेजो देवी गौरव पारो योगिम वीरेंद्र गांव जगुड़ी यमुनानगर से। इसको हमने जरूर लिया है रणधीर सिंह बांगड़ के परिवार से। और इसी तरह साथियों, एक और संदेश को हम ज़रूर ले रहे हैं, और जो ये संदेश हमारे पास साथियों आया है, और ये है हमारे पास, ये भाई पहले तो इन्होंने राम राम ज़रूर करी है, भाई आपको भी राम राम। और पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से भाई बंसीलाल संधु और परिवार के सभी सदस्य ये जो नाम लिख रहे हैं, भाई कबीर और जबीर संधु, और इसी तरह भाई वर्णित और पवनित कौर संधु, सारा संधु और परिवार के सभी सदस्य, इनका भी हमने जो मैसेज ज़रूर शामिल कराया। इसी तरह साथियों, SMS भी हम एक और ले रहे हैं इस कार्यक्रम में, और ये जो नाम है गांव भाई नथाणा पंजाब से है, हरजिंदर छिंदा जस वीर जस्सी, और भाई इसमें सीता और गीता और परिवार के सभी सदस्य। और इसी तरह साथियों, बिहार से भी हम इसको ज़रूर ले रहे हैं वली उल्लाह अंसारी, और छत्तीसगढ़ से भी इस मैसेज को ज़रूर ले रहे भाई प्रभा जयपुरिया, और गोरैया जालंधर से अशोक जाटव और परिवार के सभी सदस्य। तो साथियों, इन सभी की मिलीजुली फरमाइश हम ये रागनी ले रहे हैं रणधीर सिंह और साथियों द्वारा ये गाई गई है 11 करोड़ की 11 नजाकत। तो सुनते हैं कार्यक्रम थारे संदेश मारे गीत में ये रागनी।
6: न बोलिया रे 11 करोड़ की 11 धजाक दे फरक

0: दी, हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: साथियों, कार्यक्रम में थारे संदेश मारे गीत और मैं आपका साथी विनोद मोरवाल, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप हमारा ये कार्यक्रम जरूर सुन रहे हैं, आपने हमारे को ट्यून किया है FM बैंड 101.4 आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से। और संदेश जरूर ले लेते साथियों, ये जो संदेश हमारे पास आया भाई कुरुक्षेत्र से है, राजीव कुमार, विवेक, रितेश और परिवार के सभी सदस्य। और इसी तरह साथियों एक और संदेश हम जरूर ले रहे हैं भाई, इनके नाम है राजकुमार निरंकारी, अंशुल, अवनी, जोध और ये इंद्री से हमारे पास संदेश जरूर आया है। और इसी तरह एक और संदेश हम जरूर ले लेते भाई, ये भाई ध्यांगला से मांगेराम सैनी, राजपाल सैनी, बलबीर सैनी और भाई इन्होंने भी गीत की फरमाइश जरूर करी है और कुरुक्षेत्र से ही हमने इसे जो संदेश को जरूर लिया है। और इसी तरह साथियों कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से भी इस संदेश को ले रहे हैं, रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, मुरकित राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। और अब इन सभी की मिलीजुली फरमाइश साथियों हम फिल्म पियर सासरा से इस गीत को ले रहे, सुनते हैं ये लोकगीत।

0: साथियों, ये जो आप संदेश सुनेंगे यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
2: ये देख कैसे?
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना,
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: बहनों और भाइयों, कार्यक्रम है थारे संदेश मारे गीत, और अब संदेशों को जरूर हम शामिल कर लेते हैं। और भाई, ये जो संदेश है गांव फरासी जिला हिसार से, जिनके नाम है राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी और परिवार के सभी सदस्य। और एक और संदेश है चौधरी सुल्तान सिंह और भाई उनके बेटे अंकित और पोते का भी नाम जरूर ले लेते, भाई हिमांक और चार्विक और गाँव मुंदड़ी जिला कैथल से ये संदेश हमारे पास आया था। और एक और संदेश भाई खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और परिवार के सभी सदस्य। और ये मिली जुला जो इन सभी की फरमाइश है, हम इस गीत को ले रहे हैं फिल्म चंद्रावल से, इसको हमने लिया है जिसके बोल है जी जत्तू काला। तो सुनते हैं कार्यक्रम थारे संदेश हमारे गीत में ये लोकगीत।

0: बहनों और भाइयों, ये जो आप संदेश सुनेंगे यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: भारत में जल संकट के कारण 60% से अधिक लड़कियां हर महीने औसत 2 दिन स्कूल नहीं जा पाती, जबकि राजस्थान में अनुपस्थिति 5 दिन तक होती है, जो अक्सर लड़कों की तुलना में 2 से 10 गुना अधिक होती है।
0: बहनों और भाइयों, कार्यक्रम है थारे संदेश मारे गीत, और अब जो संदेश आपके SMS या WhatsApp के माध्यम से आए उनको भी जरूर हम शामिल कर रहे हैं। और ये जो भाई संदेश हमारे पास आया है, ये भाई ब्रिजपाल, श्यामवीर, पूजा देवी और मोनी देवी, सोनम देवी, उन्ती देवी और गांव राम सावला, जिला सहारनपुर, UP से ये संदेश आया। भाई गीत की फरमाइश जरूर करी थी इसी गीत की, तो भाई पहले ही हमने ज़रूर ये भाई सुना दिया है। और इसी तरह साथियों, ये जो खुर्जा उत्तर प्रदेश से भी संदेश जरूर आया था, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, ये भी भाई हमने इस गीत की भाई इन्होंने बधाई दी और बहुत अच्छा बताया, ये SMS हमने ज़रूर शामिल करा। और इसी तरह साथियों, ये जो संदेश गांव ठोल कुरुक्षेत्रा से राजीव कुमार, विवेक, रितेश का ये हमारे पास संदेश आया है, और कुरुक्षेत्रा Sector 30 से ही हमने भाई संदेश को ज़रूर शामिल करे हैं, जिनके नाम है पारस, भारत, बबीता, बीना और परिवार के सभी सदस्य। और एक और संदेश हम ज़रूर शामिल करे हैं Sector 30 से ही, जिनके नाम है मनोज, रेखा और निधि, निशा और रेखा और धर्मपाल, मूर्ति देवी और इंद्रावती, और इन सभी की मिली जुली फरमाइश इस गीत को हम शामिल करें। और ये जो

बहनों भाइयों, अब संदेश हम ज़रूर शामिल कर लेते हैं। और ये जो संदेश हमारे पास आया है, ये भाई हमारे पास नाम है जिनके, तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा शर्मा शिवी, मधुबाला प्रजापति, ये भाई चिट्ठा मंदिर रोड यमुनानगर से इस संदेश को हमें शामिल करा है। इसी तरह भाई जो गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से भी ये हमारे पास संदेश ज़रूर आया है। और भाई इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन नाम भाई गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से इसे को शामिल करा। इसी तरह खांसी से भी हमारे पास संदेश ज़रूर आया है, गांव ढाणीपाल से, और आशीष अटकान और परिवार के सभी सदस्य। और अब ये जो भाई रागणी हम इस कार्यक्रम में शामिल करे हैं, आगा लेकर चल पड़ा और राम निवास साथी और द्वारा ही प्रस्तुत की गई है, सुनते हैं ये रागणी।

बहनों भाइयों, कार्यक्रम है थारे संदेश मारे गीत। और हमारा जो फोन नंबर है 9466021336 यानी 9460216336 पर हम आपके SMS और WhatsApp पे दोनों संदेश प्राप्त जरूर करते हैं और उनको शामिल भी जरूर करते हैं। तो बिना किसी देरी के साथियों, आप जो SMS या WhatsApp करते हैं उसके संदेश को जरूर लेकर हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और ऐसे ही संदेश हमारे पास भी जरूर अब आए हैं। और गाँव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से हमारे पास ये संदेश आया है। सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, नवीन, मंदीप, प्रियंका, सपना, नीतू, कार्तिक व वेदांश जांगड़ा और परिवार के सभी सदस्य। इसी तरह एक और मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान और कृष्णा धीमान और धीमान फैमिली की तरफ से संदेश हमारे पास आया है। और अब एक और संदेश हम ले लेते हैं भाई। ये जो दादरी गेट भिवानी से हमारे पास संदेश जरूर आया, जिनके नाम है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। और भाई सारे श्रोताओं को भाई राम राम भी इन्होंने बोले। भाई आपको भी राम राम और स्वास्थ्य का आप सभी जरूर ध्यान रखें। और अब ये जो लोकगीत हम शामिल कर रहे फिल्म चंद्रावल से, इसको हमने लिया है और बहुत ही बेहतरीन गाना और अपने टाइम का भाई सुपर डुपर हिट था। तो सुनते हैं ये लोकगीत।

बैनर भाइयों, कार्यक्रम थारे संदेश मारे गीत। और अभी आपने जो ये गीत सुना फिल्म चंद्रावल से, इसको जरूर लिया था। और भाई, जब गीत हमारी जब बोली में होते हैं तो उसका तो आनंद ही अलग है। और इन गीतों में साथियों हमारी भावनाएं, हमारे शब्द, वो तमाम सभी अतीत है जिसमें भाई जीवन हमारा भरा है। और

का आग्रह भाई, कुछ महत्वपूर्ण जो दिन होते हैं साथी, वो ऐसे बिताए होते हैं, उन पूरी जिंदगी पार हो जाती है। ऐसे ही अतीत के अंदर इस गीत के अंदर हम आपको जरूर ले गए। एक उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आए, और इसी तरह साथियों आपके हमारे मैसेज भी आपके आते रहे। आप हमारा जो फ़ोन नंबर है 9466021336, और आप फ़ोन के माध्यम से भी हमारे से जुड़ सकते हैं। और भाई प्ले स्टोर से न्यूज़ ऑन AIR या फिर अन्य जो FM के ऐप है आप उसको डाउनलोड कीजिए। जब आप कुरुक्षेत्र लिखते हैं तो आप हमारे से सीधे लाइव जुड़ जाते हैं। इसी तरह हमारा AIR आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के नाम से भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को हम उसमें ज़रूर अपलोड करते हैं। और भाई अंतिम संदेश जरूर ले लेते हैं भाई। गांव चौटाला हरियाणा से भाई दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने भी इस गीत को ज़रूर पसंद करा। और इसी तरह साथियों जो ये भाई जो गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से भाई ये जो संदेश जरूर आया था, और भुवेश कुमार कंबोज और परिवार के सभी सदस्य भाई इनका भी संदेश को हमने जरूर शामिल कराया। ऐसे ही आपके हमेशा संदेश आते रहे, और अपना गर्मी में ज़रूर ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का भी, स्वयं का भी। इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, और अपना ध्यान जरूर रखिए। और एक आपसे निवेदन जरूर करते, जब भी आप मैसेज करें या तो मैसेज कीजिए SMS या फिर WhatsApp कीजिए। आप कई बार हम देखते हैं भाई WhatsApp भी आ जाता है, मैसेज और SMS भी आ जाता है, तो एक को हम ज़रूर शामिल कर लेते हैं, और सीधे आप नाम लिख दिए और गीत के बोल। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों भाइयों, राम राम।

अभी आप सुने थे थारे संदेश मारे गीत कार्यक्रम FM बैंड 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय शाम के 7:30 बजे हैं। आइए सुने कार्यक्रम जय जवान।

जय जवान कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हमारे सैनिक साथियों को हमारा सलाम। सैनिक भाइयों, हमारा देश भारत सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि भावनाओं का संगम है। हमारे यहाँ ना मंदिर की घंटियां भी गूंजती हैं, मंदिर इसके अलावा मस्जिद की अजान भी सुनाई देती है, गुरुद्वारे की वाणी भी मन को शांति देती है और चर्च की प्रार्थना भी प्रेम का संदेश सुनाती है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग वेशभूषाएं हैं हमारी, लेकिन हम सब उस देश के वासी हैं जिनकी पहचान होती है अनेकता में एकता से। किसी ने लिखा भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा, यही तो हमारी पहचान है। अब देखें ना, जब देश पर संकट आता है तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई नहीं रहता, सबके दिल में बस एक ही आवाज गूंजती है, भारत माता की हमेशा जय हो। हम हिंदुस्तानी मेहनत करना जानते हैं, मुश्किलों से लड़ना जानते हैं और सबसे बढ़कर रिश्तों को निभाना भी जानते हैं। तभी तो हम अपने देश का गान बड़े प्यार से करते हैं।

0: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सैनिक भाइयों, किसी ने कहा है कि मिट्टी की खुशबू में बसा है प्यार पुराना, हर दिल कह उठता है ये मेरा भारत बहुत महान। जी हाँ दोस्तों, नफ़रत की आंधी चाहे जितनी भी तेज चले, मोहब्बत का दीप यहाँ हर बार जले। रंग अनेक सही पर दिल एक जान, दुनिया से प्यारा अपना हिंदुस्तान।

जी हाँ दोस्तों, मिट्टी की खुशबू हो, सीमा पर जवानों का साहस हो या मेहनतकश लोगों का संघर्ष, भारत की पहचान हमेशा उसकी अड़िग हिम्मत रही है। आंधियां चाहे कितनी भी आए राहों में, हमने हर तूफान को मुस्कुराकर देखा है। ये तिरंगा यूं ही नहीं शान से लहराता, इसके पीछे लाखों वीरों का चेहरा देखा है। दोस्तों, देश प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अब देखिए ना, सरहदों पर हमारे सैनिक मुस्तैदी से खड़े हैं, तपती धूप में, कड़कड़ाती हुई ठंड में या फिर मुश्किलों भरे रास्तों में। हम अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाएं, उन्हें ताकत दें अपनी और अपने देश को मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारा देश ना तो कभी झुका है ना झुकेगा। ये हमारा संबल है।

0: 一不心。
1: जी हाँ, हम अपने सैनिक साथियों के साथ संकल्प लें, ईमानदारी से हम काम करेंगे, देश की एकता बनाए रखेंगे और हर परिस्थिति में अपने भारत देश का मान बढ़ाएंगे। भारत को कभी

झुकने न देंगे और मजबूती से अपने देश को आगे ही आगे बढ़ाते लेते जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का जय जवान कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे जय जवान कार्यक्रम एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी रचनाओं का कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे गायक कलाकार हैं बड़ाली बंधु। आइए सुनते हैं इनकी आवाज में कुछ रचनाएं।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
1: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
1: विश्वास की आवाज।
2: श्रोता गुलदस्ता कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं वडाले बंधों को।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी रचनाओं कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में हमारे आज के गायक कलाकार थे वडाली बंधु। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रस्तुति अमरीक सिंह की।

0: आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के आज के संक में श्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, महामहिम राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत की साइकिल यात्रा, जिला स्तरीय बाढ़ आपदा मोक ड्रिल, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। पर साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर पिहुआ कुरुक्षेत्र में। साथियों, जहां पे दिनांक 11 मई को श्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथियों, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, विशिष्ट अतिथि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज। साथियों, श्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा,
1: हर हर महादेव। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष पूरे हुए हैं हमारी संस्कृति को। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ समय में हम सब के बीच में वहां से लाइव होंगे। आज इस अवसर पर हमारे बीच में परम श्रद्धे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, अखाड़ा परिषद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी जी महाराज, जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, महंत विश्वनाथ गिरी जी महाराज, महंत बंसीपुरी जी महाराज, महंत धीरजपुरी जी महाराज, पंडित सतपाल जी पीठाध्यक्ष माँ भद्रकाली मंदिर, हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धे स्वामी जी, हमारे पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तजेंद्र गोल्डी जी, इस क्षेत्र के हमारे नेता जय भगवान शर्मा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, भूषण नरोत्तम जी और हमारे सरपंच सोमलता जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, उपस्थित सभी परम श्रद्धे संतजन, पूजनीय महंतगण तथा धर्म प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, आज हम सब के लिए ये गर्व का दिन है। आज मुझे खुशी है, देवों के देव महादेव के गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के ये पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है। साथ संगत जियो, यह पर्व गत 11 जनवरी से शुरू हो गया था और 11 जनवरी 2027 तक ये पूरा होगा। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि जहां हम संगमेश्वर महादेव मंदिर में आज सोमनाथ मंदिर के साथ जुड़ेंगे,

0: और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज उस इतिहास के बारे में हम सबको अवगत कराएंगे। हम आज यहाँ वैदिक नदी अरुणा व सरस्वती के संगम पर यह पर्व हम यहाँ मना रहे हैं। यहीं स्थित श्री संगमेश्वर मंदिर इन नदियों के संगम की याद सदियों से दिलाता रहा है। ऐसे पावन स्थल पर ऐसे ऐतिहासिक पर्व में शामिल होना ये हम सब के लिए गर्व की और सौभाग्य की बात है। मैं सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में मैं दोनों हाथ जोड़ करके कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सबको सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। साथियों, इस वर्ष देश के दौरान पूरे देश के श्रद्धालुओं की सोमनाथ मंदिर जा करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। विभिन्न प्रदेशों से भक्तों की यात्राएं वहां पहुंच रही हैं। हरियाणा से भी श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन आगामी 8 जून को यहां से रवाना होगी। हमने ऐसे आर्थिक रूप से जो कमजोर हमारे बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना वो चलाई हुई है। यह विशेष ट्रेन इस योजना के ही तहत वहां सोमनाथ में उस पवित्र भूमि पर यहां से जाएगी। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को जन जन का उत्सव बनाने के लिए आज सोमनाथ मंदिर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में राष्ट्र का स्वाभिमान पर्व तो लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने हमारे अनेक तीर्थों का जीर्णोद्धार भी कराया है। हम सब श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर्व के तो साक्षी रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम का दिव्य और भव्य स्वरूप भी हमारे सामने आया है। साथियों, जिससे प्राचीन काशी की गरिमा पुनर्जीवित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भयंकर बाढ़ के कारण केदार बाबा धाम में हुए नुकसान का भी पुनर्विकास वो करवाया है। आज देश के तीर्थ स्थलों का विकास, चार धाम परियोजनाओं का प्रसाद योजना और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के माध्यम से भारत अपनी जड़ों से जुड़ रहा है। यह नए भारत का वह कालखंड है जहां विकास और विरासत साथ साथ चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। जीर्णोद्धार करने की बात हो, चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे महाकालेश्वर साथियों उसके कॉरिडोर बनाने की बात हो, और जिस स्थल के ऊपर स्वयं गुरु नानक देव जी ने वहां पर रह करके समाज को एक दिशा देने का काम किया है, वहां पर करतारपुर कॉरिडोर बनाने की बात हो, और चाहे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण पर आधारित अनुभव केंद्र बनाने की बात हो, काशी की विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी इस संस्कृति को एक अलग जो विलुप्त हो रही थी एक पहचान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, गांव-गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शिव महापुराण और गीता पाठ हो, युवाओं में साथियों इतिहास के प्रति जागरूकता हो और समाज एकता एवं सद्भाव का संदेश हमें हर हर घर तक पहुंचाना है। साथियों अंत में मैं भगवान सोमनाथ जी और देवादिदेव भगवान महादेव के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं तथा इस भव्य आयोजन से जुड़े सभी आयोजकों संत महात्माओं और श्रद्धालुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और साथियों आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। साथियों दिनांक 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और दोस्तों हम आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में, जहां पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथियों इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं श्री सुरेश कुमार सोनी, परियोजना समायोजक कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र। सर आज दिनांक 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहे हैं और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र में बहुत से कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
2: जी नमस्कार। आज हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, पॉपुलर साइंस टॉक जो कि प्रोफेसर फकीर चंद जी की रही और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हैं, वो फिजिक्स डिपार्टमेंट के भूतपूर्व चेयरमैन रहे हैं, वो उनके द्वारा एक पॉपुलर टॉक दिया गया। उसके साथ साथ अलग अलग तरीके के कंपटीशंस करवाए गए, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन हुआ अपना, क्विज कंपटीशन हुआ इसी तरीके के। और अच्छी बात यह है कि इस बार जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी उत्साहजनक रहे। कुल 28 स्कूलों से 28 स्कूल से हमारे पास स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स रहे और टोटल जो नंबर है वो 500 प्लस चला गया जी, इतने पार्टिसिपेंट रहे। तो ये उत्साह दिखाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे को लेकर के। फिर अभी अगर हम बात करें कि ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब और क्यों मनाया जाता है, तो 11 मई इसको मनाया जाता है और 1998 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उसी टाइम आपको याद होगा कि पोखरण में जो हमने परीक्षण किया था उसी को याद करने के लिए, क्योंकि वो एक माइलस्टोन है। आज के संदर्भ में अगर हम देखें किसी भी देश का जो स्वाभिमान है वो उसकी ताकत बहुत दिखाई देने के तरीके हो सकते हैं। आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, आप सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत राष्ट्र हो, आप तकनीकी रूप से मजबूत देश हो, और ये जो अलग अलग हमको दिखाई देते हैं पैरामीटर, ये कहीं ना कहीं आपस में मिल भी जाते हैं। अगर कोई देश तकनीकी रूप से बहुत आगे निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो आर्थिक स्तर है वो अपने आप सुधरेगा, कहीं ना कहीं उसकी जो बाकी जो पैरामीटर्स है, जो मजबूती है, वो उसमें धीरे धीरे अपने आप आएगी। आज भी अगर हम देखें काफ़ी हमें ऐसे कंट्रीज़ के उदाहरण देख सकते हैं जो तकनीकी रूप से स्ट्रोंग होने के कारण बहुत आगे हैं, भले ही उनके पास भूभाग की कमी हो, भले ही उनके पास ऐसी ज़मीन नहीं हो जिनसे कि वो बहुत उपजाऊ चीज़ें लेकर के आ सके, लेकिन तकनीकी रूप से बहुत आगे है। तकनीकी ज़रूरत है आज के समय, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इसको लेकर के हम कैसे आगे बढ़ें, किस तरीके से आगे बढ़ें, तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको लेकर के मोटिवेटेड हो, अभी की जो पीढ़ी है वो डेडिकेटेड हो, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो पैनोरमा जैसे विज्ञान केंद्र जो है वो आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का काम करती है। आने वाली जो पीढ़ी है वो इनोवेशन को लेकर के आए, और इस साल की अगर आप थीम भी देखेंगे वो भी इसी तरीके से है कि इनोवेशन से हम दिसंबर में हमने विगत जो दिसंबर है उसमें हमने एक नई फैसिलिटी लॉन्च की थी नॉलेज ऑन स्फीयर, वो भी अगेन कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर से खेल सकते हैं, किस तरीके से हम एक साथ चार प्रोजेक्टर को जोड़ करके एक सिंगल स्फेरिकल स्क्रीन क्रिएट करके और उसमें एजुकेशनल चीज़ों को आगे डिलीवर कर सकते हैं, तो इसको लेकर के बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात मैं यहाँ रखना चाहूँगा, नॉलेज ऑन स्फीयर की अगर हम बात करें तो वो हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया, वो हमने खुद अपने यहाँ डेवलप किया। अगर हम बात करें सिमुलेटर की तो वो भी स्वदेशी रूप से हमारे द्वारा डेवलप किया गया। तो ये एक चीज़ होती है कि हम खाली इम्पोर्ट के जरिए तकनीकी को लेकर के आए, ज़रूरी नहीं है, हम अपने दम पर भी उन चीजों को लेकर के आ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें जो कॉस्ट है वो हमने 75% से ज्यादा रिड्यूस करके दी। तो हम नई नई फैसिलिटीज लेकर के आ रहे हैं, तो एक तो पहला ये हुआ कि हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। तो हम इम्प्लीमेंट ऐसे कर रहे हैं कि हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के जरिए उसमें अपनी जो पावर है उसको इन्वेस्ट करके और हम खुद के दम पर क्या डेवलप कर सकते हैं वो चीजें लेकर के आ रहे हैं। जैसे अभी नॉलेज ऑन स्फीयर टेक्नोलॉजी इस फैसिलिटी की हम बात कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया ये हमारा कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर दूसरा सेंटर बना जिसने इस फैसिलिटी को लॉन्च किया। सिमुलेटर जो फैसिलिटी है स्वदेशी तरीके से इसको डेवलप करके इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के थ्रू और किसी साइंस सेंटर में इसको लॉन्च किया जाए, इस तरीके से हम जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है पूरे भारतवर्ष में ये पहला सेंटर बना। अभी फिर से हम और आगे क्या कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी का समय है और ये जो टर्म्स है वो एक बजवर्ड बना हुआ है, इसके बारे में हम सब बार बार बात करते हैं लेकिन इसको हम महसूस करें, इसको हम देखें, इसके लिए एक पूरा का पूरा वर्चुअल रियलिटी थिएटर जो है उस फैसिलिटी को हम लॉन्च कर रहे हैं और वो भी विजिटर्स के लिए विद इन वन वीक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको लॉन्च कर दें। और बच्चों के लिए संदेश की अगर हम बात करें तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि स्वदेशी तकनीकी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और हम अपनी जो पूरी एनर्जी है वो उसमें लगाएं कि टेक्नोलॉजी हमारी हो, उसकी जो क्वालिटी हो वो वर्ल्ड लेवल की हो, पूरी दुनिया उसको पसंद करे, पूरी दुनिया उसको अपनाए और पूरी दुनिया उसका मार्केट बने। तो मार्केट पूरी दुनिया हो, टेक्नोलॉजी हमारी, ये जिस दिन हम कर पाएंगे उस दिन हम नो डाउट डेवलप्ड कंट्री बन चुके होंगे।
3: तो सुरेश कुमार सोनी जी, परियोजना संयोजक कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
2: जी धन्यवाद आपका और आपके सभी श्रोताओं का।
1: और दोस्तों आपको जानकारी देंगे, दिनांक 14 मई को महामहिम राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत ट्रेन के माध्यम से कुरुक्षेत्र स्टेशन पर पहुंचे और साथियों कुरुक्षेत्र स्टेशन से गुरुकुल तक महामहिम राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत ने साइकिल यात्रा निकाली, साथियों जिसमें आमजन को संदेश दिया कि हम कम से कम अपने वाहनों का प्रयोग करें और साथियों कुछ ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें जिसमें पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो और प्रदूषण भी कम हो। साथियों कुरुक्षेत्र स्टेशन से गुरुकुल साइकिल पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल गुजरात श्री आचार्य देवव्रत ने आमजन को संदेश दिया।
4: ये अभी 3 दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से जो युद्ध स्थिति बनी और अमेरिका ईरान आदि देशों का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और हमारे देश में जो तेल का आयात होता था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हम अपने देश में उस रास्ते पर चले जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च पर कर पाए और जिस खरीद से हमारी मुद्रा स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ऐसी कोई भी विदेशी वस्तु हम ना खरीद, स्वदेशी की ओर बढ़े ताकि देश आत्मनिर्भर सशक्त और मजबूत हो सके। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित भारत के रूप में तेजी से आगे बढ़ा रहे और पूरे देश का पिछले सालों में हुआ विकास इस बात का प्रबल प्रमाण। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया कि गुजरात में जब तक ये तेल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती मैं हवाई जहाज का प्रयोग नहीं करूंगा, हेलीकॉप्टर का नहीं करूंगा और ज्यादा मेरी यात्राएं रेल के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा और बहुत छोटे से कारकेट के द्वारा, 3 गाड़ी से ज्यादा मैं कारकेट में नहीं रखूंगा। और ये प्रेरणा जनमानस को मिले और हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निश्चित रूप से आएंगे और अपने देश की समृद्धि विकास को बराबर उसी गति से आगे बढ़ाते हैं।
1: और दोस्तों अब आपको जानकारी देंगे जिला स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल की। साथियों जिला कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल की गई, साथियों जिसमें मुख्य रूप से स्थान रहे तंगोर और झांसा। साथियों जिला स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं उपायुक्त कुरुक्षेत्र विश्राम कुमार मीणा।
5: आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण और स्टेट हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देशन में फ्लड रिलीफ बाढ़ राहत के लिए जो है मॉक एक्सरसाइज की गई और उसके लिए सबसे पहले 6 मई को पहले हमारी बेसिक ब्रीफिंग हुई थी, उसके बाद 12 मई को टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई थी जिसमें विभिन्न विभागों को दिशा निर्देश दिए थे उनके रोल के, उनके मोबिलाइजेशन के, और आज 14 मई को वो वास्तविक सिनेरियो के हिसाब से फ्लड की जो है ड्रिल्स हुई हैं कि कैसे बाढ़ आ जाती है रियल टाइम में, कैसे लोग फंस जाते हैं, पशु फंस जाते हैं, आप प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है तो उसमें कैसे जो है रिस्पॉन्स हो, कैसे एक विभिन्न विभागों का जो सामंजस्य है वो दिखे। तो आज हमारी 2 जगह पे सुबह 7:30 बजे हमें अलर्ट आया कि भी फ्लड का लेवल मारकंडा रिवर में बढ़ गया है, पानी का जो इस तरह बढ़ने की वजह से फ्लड आ गई है। तो हमने झांसा और तंगौर विलेज में फ्लड सिनेरियो को दिखाया और हमारे वहाँ पे इंसिडेंट कमांडर दोनों जगह SDM पे हुआ झांसा में और SDM शाहबाद जो है तंगौर में, उन्होंने अपनी टीम के साथ वहाँ स्टेजिंग एरिया सेटअप किया और इसकी रिस्पॉन्स को प्रॉपर वहाँ लोगों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद सारे विभागों की कौन क्या चीज़ की कमी रही, क्या चीज़ अच्छी रही, क्या हम अच्छा कर सकते हैं जब वास्तविक में ऐसी आपदा आ जाती है, उन पे परिचर्चा हुई और परिचर्चा के बाद वो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो कंट्रोल रूम हमारे यहाँ पे NIC रूम में बनाया गया, जहाँ खुद मैं 9 बजे से मेरी टीम के साथ मौजूद था, सभी विभाग अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद थे, वो रियल टाइम वहाँ से अपडेट ले रहे थे। यहाँ पे आज हमारा 1 बजे फीडबैक सेशन हुआ जिसमें DMA से ब्रिगेडियर गुरुंग ने हमें गाइडेंस करी और विभिन्न जिलों में 14 जिलों में ये जहाँ पे हरियाणा में फ्लड प्रोन जो जिले हैं उनमें एक्सरसाइज एक साथ हुई थी जिसका टेलीकास्ट भी हुआ था ताकि कंट्रोल रूम से हम देख सकें कि क्या चीज़ें चल रही हैं। जो यहाँ पे फीडबैक में आया वो फीडबैक में जो चीज़ें निकल गई है उसको हमने नोट किया है, सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि आगामी जब हमारा जून से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और हमने पिछले 3 वर्षों में 2 बार फ्लड हमने मारकंडा रिवर में देखी है जिससे काफ़ी जो है हानि भी हुई है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो 2 साल के अनुभवों को लेते हुए हम बेटर करें। साथ ही इस ड्रिल से हमने और जिलों से भी सीखा है, हमने आपस में भी सीखा है और जो सुझाव आए हैं उनको हम अमल में लाएंगे ताकि आगे जो है हमारी टीम पूरी तरह तैयार रहे। और इस तरह की जो एक्सरसाइज है उससे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम आगे लगातार सीखते हैं और लगातार हमारी जो कैपेसिटी है वो बिल्ड होती है ताकि कहीं भी किसी भी पोजिशन पर हम रहें इन चीज़ों का हमें पहले से रहे कि ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज रही, इसके लिए मैं जो हमारी FCR मैडम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ।
3: साथियों, दिनांक 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और साथियों हमारे जीवन में परिवार का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि जब भी इंसान पे कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहला जो सहारा है वो उसका परिवार है। लेकिन आज बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं और उसका जो प्रभाव है, उसका हमारे जो परिवार का प्रभाव है वो मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, पूरे जीवन पर पड़ता है। तो आज साथियों अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर हम बातचीत कर रहे हैं
1: डॉक्टर सुरेंद्र मंडान, पूर्व मनोरोग विशेषज्ञ, लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल कुरुक्षेत्र।
3: सर बहुत स्वागत।
6: जी नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए।
6: देखिए, जो परिवार की महत्ता को दर्शाने के लिए, उसको समझाने के लिए जो दिवस मनाया गया है ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य का जो पहला जो स्कूल होता है उसका परिवार होता है, वहीं पे उसके सारे टीचर होते हैं, पैदा होते ही उसकी माँ होती है, उसके दादा दादी होते हैं। परिवार भी कई तरीक़े के होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, आजकल एकल परिवार हो गए हैं। संयुक्त परिवारों की महत्ता तो किसी से नहीं छिपी है। संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार। जो पहले का टाइम था संयुक्त परिवार, उसकी महत्ता सबसे ज़्यादा मानी गई है क्योंकि जो संयुक्त परिवार होते हैं, एक तो उसमें बहुत सारे परिवार मिलके इकट्ठे रहते हैं, उसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, आपके पेरेंट्स, भाई बहन सब मिलके इकट्ठे रहते हैं। तो सबसे बड़ी तो इसमें आपकी वो होती है, सबका एक अपना रोल डिफाइंड होता है कि किसको जो जो भी काम करना होता है वो सबको रोल डिफाइंड होता है। किसी को कोई तनाव वगैरह हो तो सब बैठ के उसको सुलझाने की, कोई मुसीबत आ जाए तो उसको सॉल्यूशन देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जबकि एकल फैमिलियों में ये देखा गया है कि आदमियों का रोल इतना डिफाइन नहीं होता, कुछ ही लोगों को सारे काम करने पड़ते हैं। तो इससे क्या हुआ, जब हमारे संयुक्त परिवार थे, लोगों के पास काम बटे हुए थे, बहुत ज़्यादा हाथ थे काम करने को, तो इतना ज़्यादा तनाव नहीं होता था। कोई मुसीबत आ भी गई तो मिल बैठ के सब हल कर लेते थे। बच्चों की परवरिश करने में भी आप देख लीजिए कि बच्चों की जब परवरिश करनी हो तो माँ बाप का तो नंबर ही नहीं आता था उनको पालने में। दादा दादी, चाचा चाची की गोद में रह के बच्चा पल जाता था, पता ही नहीं लगता था। इसलिए 2-3 बच्चे पल जाते थे तो पेरेंट्स को इतना तनाव भी नहीं होता था। यहाँ पे आज के टाइम में क्या हो गया, एकल फैमिली का थोड़े जनों पे सारा बोझ पड़ गया, अपना एक जो तनाव है वो कहीं निकाल नहीं पाते, अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए किसी को बोल नहीं पाते जिस पे वो विश्वास कर सके, तो तनाव वहीं घर कर जाता है। मानसिक समस्याएं बढ़ गई हैं, झगड़े बढ़ गए हैं, तलाक के केसेस बढ़ गए हैं, और बच्चों में भी आप देखोगे उतनी अच्छे से परवरिश नहीं हो पा रही, क्योंकि माता पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, और कामकाजी माता पिता हुए तो और मुसीबत है, बच्चों को पालना बड़ी मुसीबत हो जाता है उनके लिए, तो जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन, उदासी, ये सारी चीज़ें जल्दी आने लग गई हैं। और बच्चों को फिर क्या करते हैं, पेरेंट्स काम में लग रहे हैं, बच्चों को फ़ोन दे दिया या टीवी लगा के दे दिया, कार्टून लगा के दे दिया, बच्चों को फिर उसकी हैबिट हो जाती है, जिससे उनको फिर क्या, उनको छुड़वाने के लिए हमें अलग से दवाइयाँ वगैरह देनी पड़ती है, काउंसलिंग वगैरह बच्चों की करनी पड़ती है। तो ये कुछ एक प्रभाव जो देखे गए हैं जो पहले के संयुक्त परिवार की महत्ता को हमें बड़े अच्छे से समझाते हैं, और जो थोड़ी सी कमियां हैं एकल परिवार की ये उजागर हुई हैं आज के तनाव वाले टाइम पे।
3: डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि आज जो मानसिक जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले। तो शुरुआती अगर लक्षणों की हम बात करें, हम देखा कि जैसे परिवार टूट गए एकल परिवार में, लेकिन एकल परिवार में भी कोई समझाने वाला नहीं, कोई बात सुनने वाला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याएँ हमारे सामने हैं। तो मानसिक जो स्वास्थ्य समस्याएं जब हमारे सामने आ रही हैं तो किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं?
6: देखिए, एक तो मैं इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो एकल परिवार में ज़्यादातर मानसिक समस्याएं बढ़ी उनका मेन कारण है वेंटिलेशन होना। वेंटिलेशन मतलब अपने दिल की दिमाग की बातें, जो जो अंदर तनाव है वो शेयर करना। संयुक्त परिवार में वो शेयर कर लेते थे, कुछ भी हुआ झगड़ के बैठ के शाम को इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते थे। एकल परिवार में ऐसा नहीं है, वो इतना अच्छे से नहीं शेयर कर पाते, शेयर कर भी पाते हैं तो इतना अच्छे से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, तो उसकी वजह से वो बात दिमाग में घर कर जाती है, मानसिक उसके लक्षण आने लग जाते हैं जिसमें चिड़चिड़ापन होना, नींद डिस्टर्ब होना बहुत कम हो जाना या बहुत ज़्यादा हो जाना, भूख कम हो जाना, एंड किसी से बात करने की इच्छा ना होना, काम पे जाने की इच्छा ना होना, सुस्त रहना, ये सारी शुरुआती लक्षण है जो हमें डिप्रेशन की शुरुआत में दिखाई देंगे। तो हमें इनको नोटिस करना चाहिए, और जैसे ही ये दिखें तो या तो अपना कोई ऐसा दोस्त हो जिससे हम शेयर कर सकें, अपने घर का कोई बड़ा बुज़ुर्ग हो, माँ बाप हो, उनसे शेयर करें इनको, ताकि वेंटिलेशन हो माइंड का, ये बातें दिमाग में घर ना करें या बाहर निकलें। कोई सॉल्यूशन मिलता है आपको ठीक है, नहीं तो हमारे पास काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं यहाँ पे, हम ट्राई कर सकते हैं उनकी मदद करने की, हम करते भी हैं यहाँ पे।
3: डॉक्टर साहब, एक विदेशी रिपोर्ट का जिक्र मैं करना चाहूँगा, पिछले कुछ वर्ष जो पहले प्रकाशित हुई, उसका मुख्य मकसद ये देखना था कि इंसान की खुशी का कारण क्या है, किस तरह से वो खुश रह सकता है। तो उन्होंने वो रिसर्च की कि क्या जिसके पास जो बंगला गाड़ी है वो खुश है, तो उन्होंने कहा वो भी खुश नहीं नज़र आ रहा है। किसके पास नौकरी है वो खुश है, वो भी नहीं पा रहा। जिसका सब कुछ है क्या वो खुश है, वो कुछ नहीं पा रहा। तो अंत में रिपोर्ट वो कहते हैं कि अगर आपके पास आपका परिवार है तो शायद आप खुश हैं। तो ये कितना ठीक मानते हैं आप इस बात को?
6: जी, बिल्कुल ठीक कहा गया। देखिए, महत्वाकांक्षाएँ आदमी की कभी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, आप छोटी गाड़ी से चल रहे हैं, आप सोचोगे कि मेरे पास 10 लाख वाली गाड़ी हो, वहाँ चलेंगे तो आप 20 लाख वाले की डिमांड कर, ये तो इच्छाएं हैं जी, इनका कोई पैमाना नहीं है। खाना आदमी वही खाता है, हो सकता है सब्जी एक के बजाय दो हो जाए, पैसे आ जाए तो, लेकिन खाना वही है, पेट उसी से ही भरता है, उतनी रोटी, दो रोटी, तीन रोटी। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती तो आदमी उसके लिए अपने अंदर तनाव लेता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन इन द एंड आदमी को खाना, रहना सब बेसिक सही है, कपड़े वही, पैसे आ जाएंगे तो वो ब्रांडेड डालने लग जाएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, बेसिक जो आदमी की ज़रूरतें हैं, साथ, एक अच्छे दोस्त का साथ, अच्छे रिश्तों का साथ, वो परिवार में ही बन पाता है या कुछ अच्छे दोस्तों के साथ ही बन पाता है। तो मेरा यही है लोगों से सुझाव कि अपना परिवार में बातें शेयर करते रहें, जो जो आपके मन में तनाव है अपने जीवन साथी, अगर नहीं आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, अपने जीवन साथी से, अपने माँ बाप से एटलीस्ट शेयर करें उनको, आपको समाधान मिलता है, वेल एंड गुड है। नहीं, साथ साथ अपना योगा, एक्सरसाइज ये साथ करें जिससे मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर से जाके, यहाँ सिविल हॉस्पिटल्स में सब जगह उपलब्ध रहते हैं, आप उनसे जाके मिलिए, क्योंकि परिवार आदमी की देखिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, परिवार हुए, दोस्त हुए। तो हमें उन बातों पे बेसिक जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे पहले मुसीबत आएगी तो आपका परिवार आपके साथ आएगा, हमें उन बातों का महत्व समझ लेना चाहिए कि परिवार आदमी की पहला रक्षा कवच है, परिवार ही होता है, तो हमें बड़े संभाल के अपने परिवार को रखना चाहिए।
3: सब आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहे हैं, क्या संदेश अंत में आपकी तरफ से रहेगा?
6: देखिए, मेरा सबसे यही कहना है कि आदमी का सबसे अच्छा दोस्त उसका शरीर होता है, दूसरे नंबर पे सारी चीज़ें आएंगी, आपका साथी आएगा, आपके जो भी आएंगे वो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अपने माइंड को स्वस्थ रखें, उसको एक्सरसाइज करें, जो भी आपको तनाव हो रिश्तों में, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, वहाँ खुल के बातचीत करें, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं और

0: ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें तो बंदा स्वस्थ रहेगा और बेफालतू में दवाइयां खाने से बचेगा।
1: तो डॉक्टर सुरेंद्र मढान जी, पूर्व मनोरोग विशेषज्ञ, लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल कुरुक्षेत्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
0: जी धन्यवाद।
1: साथियों, कार्यक्रम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र के आज के अंक में सिर्फ इतना ही। साथियों, आज के अंक में वाचन संकलन और संपादन रहा आपके दोस्त अमरीक सिंह का, प्रस्तुति सहायक दीपक और प्रस्तुतकर्ता विनय श्री। साथियों, इसके साथ ही अनुमति दीजिए अपने दोस्त अमरीक सिंह को, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुने थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, प्रस्तुति अमरीक सिंह की थी। FM बैंड 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हैं। आइए सुनते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसा शब्द लेकर आए हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रिश्तों की नींव है, भरोसे की पहचान है और दिलों को जोड़ने वाली डोर है। जी हाँ, वो शब्द है वादा। दोस्तों, वादा कभी माँ की आंखों में दिखता है, कभी पिता की मेहनत में, कभी दोस्त की मुस्कान में, तो कभी प्रेम की खामोशियों में। और भाई, सच तो ये है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके निभाए हुए वादों से होती है। जो बात जुबान से निकले उसे निभाया जाए। वादा अगर दिल से हो तो हर रिश्ता मुस्कुराए। दोस्तों, वादा छोटा हो या बड़ा, एहसास सच्चा होना चाहिए। रिश्ता कोई भी हो उसमें विश्वास होना चाहिए। और भाई, कई लोग तो ये बात कह देते हैं कि वादे तो टूटने के लिए होते हैं, लेकिन जो लोग वादों की कीमत समझते हैं ना, वो रिश्तों को टूटने नहीं देते।

भाई दोस्तों, वादा सिर्फ शब्द नहीं होता है, ये भरोसे की वो डोर है जो टूट जाए तो आवाज़ नहीं करती, लेकिन दिल बहुत कुछ सुन भी लेता है। अब देखिए ना, कभी किसी ने साथ चलने का वादा किया तो कभी मुस्कुराने का, और कभी हालात चाहे जैसे हों साथ ना छोड़ने का। और भाई वादे कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों, आंखें कह देती हैं और दिल समझ जाता है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है जानते हैं आप? जी हाँ, रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत होती है प्यार, अपनापन, भरोसा, और शायद ये तीनों ही हैं जो एक डोर में बन जाते हैं एक शब्द से, वो है वादा। और भाई, जब वही वादा टूट जाए तो सिर्फ शब्द नहीं टूटते, किसी का भरोसा टूट जाता है, किसी की उम्मीद टूट जाती है, और भाई किसी का दिल भी तो टूट जाता है। वादा करना आसान है, निभाना मुश्किल होता है। जो हर हाल में साथ रहे वही अपना होता है। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वक्त बदलते ही कई वादे भी बदल जाते हैं। मगर जो लोग रिश्तों की कीमत समझते हैं वो हालात बदलने पर भी अपने वादे नहीं बदलते। वादे टूट जाएं तो आवाज़ नहीं होती, लेकिन खामोशियां उम्र भर सवाल करती हैं कि हाँ, उन्होंने वादा किया था लेकिन निभाया नहीं।

तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए ही सही आज खुद से एक वादा हम कर सकते हैं कि किसी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, किसी की उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। और हाँ, जो वादा किया जाए ना, उसे दिल से निभाएंगे और अपने रिश्तों को सम्मान देंगे। इसी खूबसूरती के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त करते हैं। स्वीकार करें प्रदीप का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ क्षण में हम सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर और रात्रि 9:30। हमारे केंद्र से रात्रि 10 प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
4: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडली नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबुधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबुधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म देवा से। आवाज़ें मीका सिंह, विशाल मिश्रा और ज्योतिका टंगरी की थी। गीत के बोल राजेश शेखर के और संगीत विशाल मिश्रा का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: disco. छाया गीत हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बैंग बैंग से। आवाज़ें बेनी दयाल और नीति मोहन की, गीत के बोल अनविता दत्त और कुमार के, और संगीत विशाल और शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, एक गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से, आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दर हो।
1: ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ जाए।

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम,

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए, कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

अब बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

ये दिल लगी नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

दर हूँ। अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

अभी आप सुने थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम।

0: हेलो एफएम कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप की ओर से प्यार भरा नमस्कार। हम अपने तमाम सुनने वालों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम सभी सुनने वालों को बता दें कि ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है, फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे श्रोता हमें टेलीफोन पर सीधे फ़ोन करते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 221-322 और कुरुक्षेत्र के एसटीडी कोड हमारे श्रोता लगाते हैं 01744। और हमारा टेलीफोन नंबर 221-322 डायल करके सुनते हैं अपनी पसंद का गीत इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और देखते हैं कौन श्रोता इस समय टेलीफोन लाइन पर हैं। हेलो एफएम।
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं कोड़ा चौक बस स्टैंड गांव भूरे वाला तहसील नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला हरियाणा से मोहम्मद शाहनवाज आलम बोल रहा हूँ सर।
0: शाहनवाज आलम जी भूरे वाला से हमारे निमिष होता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आज तो डबल खुशी हो रही है कि आज पहला कॉल लगा मेरा,
0: वाह
1: बहुत ही खुशी हुआ। और बीच में मैं कॉल लगाने का मुझे समय नहीं लग पाता क्योंकि मैं जैसे ढाबे पे काम करता हूँ तो कस्टमर कैसे आ जाता है तो फोन लगाने का नहीं लगता इस टाइम।
0: अच्छा अच्छा शाहनवाज आलम जी आपने डबल खुशी बताई, एक खुशी तो आपने बता दी कि भाई आपका फोन कॉल लगा, दूसरी खुशी तो बता दीजिए।
1: दूसरी खुशी सर कि आज पहला कॉल लग गया प्रोग्राम में सर।
0: वाह वाह बहुत अच्छा।
1: और हम हमारे ढाबे पे किचन पे रखा हुआ है ट्रांजिस्टर, हम तो आनंद लेते हैं साथ में हमारे कस्टमर भी आनंद लेते हैं गानों का जो आकाशवाणी कुलचेत्र से चलता है।
0: वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कौन सा गीत सुनने के लिए फोन मिलाया जल्दी से बता दीजिए।
1: जी फिल्म का नाम है जी दुश्मन, गीत के बहुत बोल है बलमा सिपहिया।
0: अरे वाह ये तो
1: ये गाना बहुत जब रेडियो पर अभी चलेगा तो मेरे साथ साथ मेरे कस्टमर भी सुनेंगे और खाना भी खा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये गाना सुनकर।
0: क्या बात है। तो
1: साथ में मैं अपने परिवार वालों का नाम लेना चाहूंगा
0: जी। ना
1: जी मेरी वाइफ का नाम है सफरोज बेगम, मेरा बड़ा बेटा है शाह उमर आलम, छोटा बेटा शाहजहान आलम और मेरी एक छोटी बेटी है सिदरा परवीन।
0: वाह शाहनवाज आलम भाई आप खुश रहें अपने परिवार के साथ और सुने अपनी
1: जी। सर आपका जो मनोरंजन होता है जो आकाशवाणी कुलचित्र से वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और आप जो बातें करते हैं बहुत अच्छा अच्छा तो इसमें हमको सुनकर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
0: हमें भी बहुत खुशी होती है आप सबसे बात करके। तो सुनते हैं फिर इसी बात पर आपकी पसंद का गीत दुश्मन फिल्म से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: फोन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज
1: जी। शुक्रिया जी।

0: हेलो एफएम
1: हेलो असम जी।
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: हम गांव हिसार से ज्ञानी राम सुथार।
0: अच्छा जी, ज्ञानी राम जी, बहुत दूर से फोन मिलाया आपने। कैसे हैं आप सब?
1: हम ठीक है जी। आपकी रेंज क्यों कौन छोड़ रहे जी? आप ये रेडियो पे नहीं पकड़ता आप हमें।
0: अच्छा जी, तो ये ऐप के माध्यम से नहीं पहुंचता क्या आपके यहाँ?
1: नहीं जी, हमारे यहाँ पहुंचता नहीं है जी, इसकी रेंज बताओ जी।
0: अच्छा जी, देखिए दूर दूर के श्रोता, महाराष्ट्र के हों, चाहे वेस्ट बंगाल के हों या त्रिपुरा के हों, देखिए कितनी दूर दूर हमारे राज्य हैं, वहां से भी हमारे पास
1: जी
0: फोन
1: हमें
0: आते हैं।
1: AIR
0: और
1: वो कर रखी है जी, उससे करते हैं।
0: हाँ, ये AIR ऐप है, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको, तो उससे सुन
1: कर
0: सकते
1: रखी है
0: हैं।
1: जी, उसी से बात करते हैं जी
0: अच्छा
1: हम।
0: जी, तो फिर तो सही है। और सुनाइए, क्या करते हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: हम खेती बाड़ी करते हैं जी।
0: अच्छा जी, खेती बाड़ी करते हैं, तो आज कौन सा गीत सुनने के लिए फोन किया आपने?
1: हमें गीत सुनना जी, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत पद किया हुआ, फिल्म का नाम है अनजाना। अब गाने के बोल जी, मेरी मोहब्बत है तेरी जवानी।
0: जी, पसंद है आपको ये गाना?
1: बहुत पसंद है जी।
0: अच्छा जी, तो आप कितने पढ़े लिखे हैं या सीधे ही खेती करने लग गए?
1: नहीं जी, हम 10 पढ़े लिखे जी। हाँ
0: अच्छा जी, तो उसके बाद सीधे खेती का काम करने लग गए।
1: जी, खेती का काम करने लगे थे जी। पहले जी बैंक की नौकरी में थे, वो
0: अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी
1: रिटायर
0: बात
1: हो
0: है।
1: गए जी, फिर खेती में लग गए।
0: ये तो बहुत बढ़िया है। तो सब काम ठीक चल रहे हैं आपके?
1: हाँ जी, बढ़िया चल रहे हैं।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। सुनते हैं आपके पसंद का गीत।
1: ओके।

जाए संभल ओए मोच न आ जाए मारना ऐसे को कर तेरा पैर फिसल जाए है कितनी नाजुक तू है संभल ओए मोच न आ

0: हेलो एफएम।
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनिजा बोल रहा हूँ।
0: वाह, बहुत बहुत स्वागत है सतीश अनिजा भाई आपका, बहुत दिनों के बाद फोन मिला आपका।
1: बिल्कुल भाई, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के तो हम ऐसे लगा लो भी दीवाने हैं। हमारा घर का रेडियो स्टेशन में बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, आपका अपना केंद्र है और आपकी सहभागिता हमारे कार्यक्रमों में होती है, हमें बड़ी खुशी होती है जब जब आपकी फरमाइश आती है, आपके नाम हम पढ़ते हैं।
1: जी भाई,
0: और सुनाइए अपने बारे में, क्या काम करते हैं कुछ श्रोताओं को?
1: बस ठीक है भाई, यहाँ चंडीगढ़ में तो आपको पता है, यहाँ तो हम फ्री तो रह नहीं सकते, लेकिन आकाशवाणी के साथ भी जुड़े रहते हैं।
0: जी जी।
1: और अपना व्यवसाय है जिसमें व्यस्त भी रहते हैं और प्यार मुफ्ते भी बांटते रहते हैं। परमात्मा ने जिस हिसाब से रखा हुआ है भाई, बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे।
0: बहुत अच्छी बात है। और सुनाइए आपके यहाँ चंडीगढ़ का मौसम कैसा है?
1: मौसम चंडीगढ़ का भाई अभी तो ठीक है, अभी ऐसे लगा लो भी बाकी लोगों का तो पता नहीं, हमने तो अभी एसी भी ऑन नहीं की है क्योंकि टेम्परेचर जो है 32-33-34 ऐसे टेम्परेचर रहता है, और दिन में थोड़ी हल्की गर्मी होती है, शाम को ठंडी हवा चल पड़ती है।
0: तो क्या कहेंगे इस लू भरे मौसम में लोगों को, क्या संदेश देंगे आप?
1: बस यही कहूंगा भी जहाँ काफी हिंदुस्तान में तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का मौसम होता है, कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पे 50 के करीब जो टेम्परेचर है
0: जी,
1: तो हम बस यही कहेंगे भी अपनी सेहत का ध्यान रखो। दुआ तो हम करते ही है भी किसी को भी, कोई भी किसी को शारीरिक नुकसान ना हो, क्योंकि पशु हैं, जानवर हैं, मजदूर भाई खेतों में काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो सब मरी अपने महफूज रहे, परमात्मा सबको सुरक्षित रखे।
0: वाह, अगर ये जो चीजें
1: हिंदुस्तान की भाई, हिंदुस्तान की हमारी यही तो खासियत है, कहीं बर्फ पड़ रही है, अभी भी लाहौल स्पीति में 4-5 फुट डेली बर्फ पड़ रही है।
0: बिल्कुल,
1: और कहीं धूल आंधी है, कहीं मीडियम मौसम है, और कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर देश है वो है हमारा भारत, और यहाँ हर चीज है।
1: चंद्रमा पे भी जाके सबसे पहले राकेश शर्मा जी ने एक ही बात की थी इंदिरा गांधी जी को, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान जैसा कोई भी नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारा देश यूं ही तरक्की करता रहे और सभी के साथ, हम सभी स्नेह से, सहयोग से एक दूसरे के साथ रहें। तो आज बताइए,
1: बात ऐसी है, मैं बताता हूँ, बात ऐसी है जी कि हमारी जो संस्कृति है ना, जो हम बहुत अच्छी संस्कृति में रहते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए दुआ भी करते हैं और धार्मिक भावना भी रखते हैं, प्यार भाव सत्कार सब हमारे अंदर नियत है।
0: वाह जी,
1: उसकी वजह से ये वैसे लगा लो हमारा देश खुशहाल है।
0: कितनी अच्छी बात आपने कही, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। तो अपनी पसंद का गाना बताइए सतीश भाई। आप
1: सर जी, आज तो बस चुलबुला सा गीत है, लता जी और मीनू पुरुषोत्तम जी का गाया हुआ है।
0: कौन सा?
1: दाग फिल्म का गीत है, नी मैं यार मनाना नी।
0: आहा, क्या बात,
1: लोग बोलियां बोले।
0: अरे वाह वाह, बहुत बहुत अद्भुत और बहुत यूनिक गाना आपने चुना आज श्रोताओं के लिए, अपने लिए।
1: आज से मैं शायद, मैंने काफी टाइम के बाद मेरी कॉल आपसे मिली है, बात हुई है, रूबरू बात हुई है
0: जी,
1: तो यकीनन जी ये आने वाली रात जब मैं सोऊंगा ना, तो मेरी बड़ी चैन की नींद सोऊंगा, क्योंकि आप लोगों से इतनी प्यार मोहब्बत है।
0: वाह जी वाह, ये प्यार बना रहे, बहुत शुक्रिया आपने फोन मिलाया, और सुनते हैं आपकी पसंद का गाना।
1: भाई प्यार बना रही, इसलिए मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा।
0: हाँ जी कहिए ना।
1: जब तक है जान, जब तक है जान, आपके साथ ही रहेंगे भाई।
0: वाह वाह वाह, चलिए खुश रहें सतीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो एफएम, हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है।
0: अच्छा जी, आपकी आवाज़ तो हमें पहुंच रही है पूरी सही से। आप देखिए। अच्छा
1: हाँ, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है सर जी। हाँ,
0: जी, आप देखिए आ रही है।
1: आप आइए सर
0: अच्छा
1: जी।
0: जी, बोलिए ना, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन?
1: कस्बा कोरिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर जी। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, बहुत बहुत नमस्कार। क्या नाम बताया आपने?
1: राजेंद्र गंगवार जी।
0: जी, राजेंद्र गंगवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो फिल्म कार्यक्रम में। जी,
1: धन्यवाद सर जी,
0: अपने बारे
1: हमारा
0: में बताइए
1: कार्यक्रम में
0: राजेंद्र
1: इनको
0: भाई,
1: आज
0: क्या
1: कॉल लगी है सर
0: काम करते हैं आप?
1: जी। हम तो जरी का काम करते हैं,
0: अच्छा, तो जरी का काम कब से कर रहे हैं ये?
1: लगभग हो गए हैं 15-20 साल।
0: तो आपका अपना काम है या कोई और साथी आपने जोड़ रखे अपने साथ?
1: नहीं सर जी, हम तो दिल्ली काम करते हैं। अगर दिल्ली से घर आते हैं तो घर से काम करते हैं, पक्का काम
0: अच्छा
1: नहीं है सर जी।
0: अच्छा जी, तो हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, कब कब सुनते हैं?
1: नहीं सर जी, रेगुलर सुनते हैं आपके, रेगुलर सुनता है, अच्छे प्रोग्राम जाते हैं आपके, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे फिल्मी संगीत हो, चाहे हेलो आकाशवाणी हो, सभी
0: जी,
1: प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे बताइए ना।
1: हाँ जी, गीत सुनने से पहले सर जी दो लाइनें हैं। अंदाज हमें भी आते हैं, नजर अंदाज करने के दो।

0: मगर पूरी तकलीफ से गुजर हमें मंजूर नहीं है दोस्त। हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा फांसी। इसमें एक सॉन्ग है, जब आती होगी याद मेरी, मोहम्मद रफी की आवाज है। तो दोस्त है सर जी,
1: जी लीजिए नाम।
0: सबसे पहले हमारे भगवान सिंह परवार जी हैं, शारुनूर अंसारी जी हैं, गंगाधर सावंकर जी हैं, सोनू जी हैं, और लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और गौतम राय जी हैं, और साथ में आपको और पसंद है सभी को, और कांति पूनम जी हैं।
1: जी राजेंद्र भाई, सुनिए अपनी फरमाइश का गीत।
0: ठीक है सर जी, नमस्कार।

0: श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हेलो एफएम।
2: हेलो
1: हेलो
2: जी, नमस्कार सर।
1: जी बहुत बहुत नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी, कहाँ से?
2: जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से राजपाल बात कर रहा हूँ सर।
1: राजपाल बोल रहे हैं
2: जी।
1: जी स्वागत है राजपाल भाई आपका हेलो एफएम कार्यक्रम में।
2: जी,
1: जी आपने जो है इस कार्यक्रम में फोन मिलाया, तो कैसा लग रहा है आपको आज?
2: जी सर अच्छा लग रहा है कि हमारी कॉल लगी है आज।
1: अच्छा जी, अपने बारे में बताइए, क्या काम करते हैं आप?
2: मैं तो अभी पढ़ाई करता हूँ।
1: अच्छा, कौन सी क्लास में?
2: इंटर मैंने कर लिया, बीएससी कर रहा हूँ मैं सर।
1: अच्छा जी, वेरी गुड। तो इसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट ले रखे होंगे?
2: जी जी सर।
1: तो क्या काम करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में?
2: अभी तो सर ये पर ऑनलाइन की तैयारी चल रही है उसकी।
1: अच्छा जी,
2: आर्मी पुलिस की।
1: अच्छा जी, तो जी। कोई खास चीज अपने जिंदगी के लिए क्या सोची आपने, अभी क्या बनना चाहेंगे आप?
2: अभी तो यही सोची थी, अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई करके और यही बनना आर्मी।
1: अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपके मंसूबे, आप जो भी जिंदगी में बनना चाहते हैं उसे आप हासिल करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे आप?
2: जी गीत के बोल है पानी रे पानी तेरा रंग काला।
1: रंग कैसा?
2: जी हाँ, अच्छा
1: कैसा? शोर फिल्म का गाना है ये।
2: जी जी सर।
1: तो आप कब से रेडियो सुन रहे हैं आप?
2: मैं तो अभी फिलहाल भाई सुनते हैं तो मैं भी थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ उनके साथ में।
1: अच्छा जी, तो जी। आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है?
2: हाँ हल्का अच्छा लगता है उसमें।
1: अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल भाई, और सुनिए अपनी पसंद का गाना।

0: हेलो एफएम, हेलो हेलो।
1: हाँ जी
0: जी, नमस्कार
1: सर। नमस्कार,
0: बहुत बहुत नमस्कार। कौन बोल रहे हैं साहब?
1: सर टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, पासिया छिंदवाड़ा मत।
0: अच्छा जी, छिंदवाड़ा के इलाके से हैं। तो टेकचंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम हेलो एफएम कार्यक्रम में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: जी आप